सुप्रभात। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आश्विन मास की पहली तिथि, तदनुसार 23 सितंबर 2026। इस समय प्रातः के 5:58 और 44 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रथम सभा आरंभ होती है। इस सभा में हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अलका सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति वडोदरा में ब्रह्मा कुमारी के विश्व के नवनिर्माण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान की शुरुआत और ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस का उद्घाटन भी करेंगी।
1: 75वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति 12,600 से अधिक विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। समारोह के दौरान 160 विद्यार्थियों को कुल 201 स्वर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे। इसके बाद राष्ट्रपति वडोदरा में ब्रह्मा कुमारीज के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन करेंगी। इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति स्पिरिचुअल अवेकनिंग फॉर द वर्ल्ड रिन्यूअल परियोजना का भी उद्घाटन करेंगी। इसके साथ ही राष्ट्रपति यूथ फॉर विकसित भारत अवेकनिंग इनर स्ट्रेंथ फॉर नेशन बिल्डिंग अभियान का वर्चुअल शुभारंभ करेंगी। महेश सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, बड़ौदा।
0: इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल गुजरात के एकतानगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सिनेमा विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय दृष्टिकोणों और सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जोड़ने वाले सेतु का काम करता है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
2: सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती है। भारतीय फिल्मों में भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं, उनमें देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को प्रभावित

0: करने की असीम क्षमता होती है। जो सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के फायदे के बारे में बताते हैं तो करोड़ों बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं।
1: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारतीय उद्योग जगत से केवल कारोबार का आकार बढ़ाने की बजाय सुदृढ़, सुशासित और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी कंपनियां बनाने पर ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत के विकास का अगला चरण गुणवत्ता आधारित होना चाहिए और इसके लिए कॉरपोरेट क्षेत्र को अनुसंधान एवं विकास पर अधिक निवेश करना होगा। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के कार्यक्रम में कल वित्त मंत्री ने कहा कि कंपनियों को अपने यहां या शैक्षणिक संस्थानों के साथ साझेदारी के माध्यम से R&D पर खर्च बढ़ाना चाहिए। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को मामला लंबित रहने के दौरान न्यायालय के दस्तावेजों को सोशल मीडिया पर साझा न करने की चेतावनी दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत को बताया कि माल्या ने जांच एजेंसी का हलफनामा औपचारिक रूप से प्रस्तुत होने से पहले ही सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था। मिजोरम के लोंगतलाई जिले की एक स्ट्रॉबेरी उत्पादक महिला जेट टी लालरी थांगी को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन संस्था द्वारा FAO 100 वीमेन हीरोज इन एग्री फूड सिस्टम्स एंड रूरल डेवलपमेंट के रूप में सम्मानित किया गया है। ये सम्मान अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष 2026 का हिस्सा है जो संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा शुरू की गई एक पहल है। संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने पाकिस्तानी अधिकारियों पर विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए अत्यधिक बल प्रयोग और मनमाने ढंग से हिरासत में लेने का आरोप लगाया है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इस महीने की शुरुआत में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 63वें सत्र को संबोधित करते हुए वोल्कर तुर्क ने पाकिस्तान और भारत के सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनों पर सरकारों की अलग अलग प्रतिक्रियाओं को उजागर किया। जापान एशियाई खेलों में आज भारत की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और मीराबाई चानू पदक के लिए दावेदारी पेश करेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

भगवान के स्मरण मात्र से ही सभी पापों का नाश होता है, इसलिए तत्परता के साथ भगवान का स्मरण करना चाहिए। कलयुग में नाम जप के समान मुक्ति का कोई दूसरा उपाय नहीं है, एकमात्र भगवान नाम जप ही सार है जो हमें इस भव सागर से पार लगा सकता है।

आज की वंदना कार्यक्रम में आपने सुना पंडित कुमार गंधर्व हरिओम शरण और भाई हरि सिंह रागी की गाई ये भक्ति रचनाएं। आइए अब आपको सुनवाते हैं ये संवेद स्वरों में देशगान।

0: इस देशगान के साथ ही आज का वंदना कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन बिंदु। विषय है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार। आलेख और वाचन है श्री कृष्ण शरद का।
1: आधुनिक भारत के निर्माण तथा विकास की धारा को गतिशील बनाने में वैसे तो अनेक महापुरुषों का योगदान रहा है, जिनमें से डॉक्टर बीआर अंबेडकर का एक विशेष स्थान है, क्योंकि उन्होंने सामूहिक परोपकार को हमेशा ही महत्व दिया है। राजनीतिज्ञ लावेली का कथन है कि राष्ट्रीयता वह जन समूह है जो जन्म, वंश, भाषा, जातिगत परंपराओं, इतिहास, सामूहिक भावना पर आधारित हो, अर्थात अनेक जात भाषाओं की विभिन्नता होते हुए भी परोपकार की भावना उस राष्ट्र के वासियों में हो, तभी कोई राष्ट्र विषमताओं के होते हुए भी अपनी राष्ट्रीयता के विकास को चरम सीमा पर ले जा सकता है। बाबा साहब ने राजनीति में महान दर्शन का प्रयोग किया। कहने का तात्पर्य ये कि वे महान दार्शनिक थे। उनके शब्दों में ये कहा जा सकता है, वो कहते थे, मेरे निजी स्वार्थ और राष्ट्र को चुनने के विषय में यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं राष्ट्र को ही चुनूंगा, मेरे स्वार्थ से बढ़कर मेरा देश है। भारत में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एक पहले महापुरुष हुए जिन्होंने युगों युगों से पीड़ित शोषितों की समस्याओं को राष्ट्रीयता के परिप्रेक्ष्य में देखा तथा उनके उत्थान के लिए आजीवन संघर्ष किया। देश की स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक स्वतंत्रता में उनकी गहरी पैठ और रुचि रही। इसी कारण बाबा साहब के विचार देश की स्वतंत्रता

0: के लिए संघर्ष करने वाले अन्य नेताओं के समान नहीं रहे, क्योंकि सभी नेता अंग्रेजों की गुलामी से देश को मुक्त करवाना चाहते थे, जबकि डॉक्टर अंबेडकर देश की स्वतंत्रता के साथ साथ मनुष्य को मनुष्य की गुलामी से भी छुटकारा दिलवाना चाहते थे। वो ये मानते थे कि छुआछूत, जातिवाद, वर्गभेद, रूढ़ियां भयानक विष हैं जो समाज और राष्ट्र की प्रगति में बाधक बने हुए हैं। इनके रहते आधुनिक भारत का स्वप्न कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। भारत का सपना तभी पूरा हो सकता है जब हम इन रूढ़ियों से, भयानक विष से दूर रहें। समाजवादी होने के साथ साथ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक महान राष्ट्रवादी भी थे। बाबा साहब के विचार राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत रहे। उनका मानना था कि जब तक भारत के सभी वर्गों के लोग राष्ट्र के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक नहीं होंगे, तब तक राष्ट्रीयता की रक्षा कर पाना असंभव है, और ये तभी हो सकता है जब आधुनिक भारत में जातिवाद और छुआछूत का उन्मूलन हो जाए। उनका विचार था कि प्रत्येक मनुष्य को समानता, स्वतंत्रता और मैत्रीपूर्ण जीवन यापन के अवसर प्राप्त हों, तभी सच्चे रूप में आधुनिक भारत का निर्माण हो सकता है। राष्ट्रीयता की गरिमा बढ़ाने के लिए ही देश के संविधान की रचना करने जैसा कठिन कार्य उन्होंने अपने हाथों में लिया और पूरी निष्ठा के साथ विश्व में सर्वश्रेष्ठ विधान बनाकर उच्च कोटि के संविधान निर्माता के रूप में ख्याति अर्जित की। भारत का प्रत्येक नागरिक उनके ऊपर गर्व का अनुभव करता है। डॉक्टर अंबेडकर ने आधुनिक भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाकर राष्ट्रीयता के विकास को सुनिश्चित किया। इसी अमूल्य कृति के कारण ही आज भारत के प्रत्येक नागरिक को शिक्षा, समानता, धर्म की स्वतंत्रता जैसे समान अधिकार प्राप्त हैं। इस देश के समस्त वासी डॉक्टर अंबेडकर के बनाए सिद्धांतों पर चलने और अपनी सम्मिलित शक्ति को राष्ट्र के विकास में लगाने का संकल्प लें, यही बाबा साहब के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा होगी। बाबा साहब ने कहा, स्वतंत्रता और मानवाधिकार किसी को उपहार के रूप में नहीं मिलते, उनके लिए संघर्ष किया जाता है। गुलाम को इतना बता दो कि वह गुलाम है, वह विद्रोह कर देता है। अपनी दास्ता मिटानी है, शिक्षा, संगठन और संघर्ष इसके मूल मंत्र हैं।
1: चिंतन बिंदु कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार। आलेख और वाचन था श्री कृष्ण शरद का। और आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं श्री रामचरित मानस गान। स्वर है सुरेश वाडेकर और ए हरिहरन का, संगीत है सतीश भाटिया का।

श्री राम के सीता के साथ वन गमन का समाचार सुनकर लक्ष्मण को अपने तन मन की सुधि जाती रही। वे व्याकुल होकर अग्रज के चरणों में आ गिरे। उदास मुखमंडल, कांपता शरीर, आंखों में उमड़ते आंसुओं ने निशब्द उनकी पीड़ा प्रकट कर दी। श्री राम ने उन्हें धीरज बंधाया। प्रेमवश अधीर नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति माता पिता, गुरु और स्वामी की सीख मानकर आचरण करते हैं, उन्हीं का जीवन सार्थक होता है। हे भाई, भरत और शत्रुघ्न इस समय अयोध्या में नहीं हैं। वृद्ध महाराज मेरे वन प्रवास के कारण बेसुध हैं, अतः तुम्हें यहीं रहकर उनकी सेवा करनी चाहिए। यदि मैं तुम्हें अपने साथ वन में ले गया तो अयोध्या नगरी

एकदम अनाथ हो जाएगी। किंतु आसन्न वियोग की पीड़ा से अधीर लक्ष्मण पर श्री राम के शीतल वचनों का वही प्रभाव हुआ जो पाले का कमल पर होता है। लक्ष्मण की ये वेदना है कि वे दास हैं और यदि स्वामी उनका त्याग भी कर दें तो वे क्या कर सकते हैं। सच तो ये है कि वे श्री राम के स्नेह से सिंचित मात्र एक शिशु हैं जो श्री राम के अतिरिक्त गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानते। धर्म और नीति संबंधी उपदेश की आवश्यकता तो उसे होती है जिसे कीर्ति ऐश्वर्य और सद्गति की अभिलाषा हो, जो मन वचन कर्म से श्री राम के चरणों में प्रेम रखता हो। क्या उसका त्याग किया जा सकता है?

अभी आप सुन रहे थे श्री राम चरित मानस गान, स्वर थे सुरेश वाडेकर और ए हरिहरन के, संगीत था सतीश भाटिया का। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है संक्षिप्त रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:50 पर कार्यक्रम होगा खेती की बातें। बातें होंगी पशुओं में पाचन संबंधी रोग और उपचार, इस विषय पर वार्ताकार होंगे विजय सिंह नौलखा। भूले बिसरे गीत सुनेगा सुबह 7 बजे से।

सुबह 10 बजे से आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। दिन 11 बजे फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, प्रस्तुति होगी रश्मि शर्मा की।

ब्रज माधुरी कार्यक्रम का समय होगा सुबह 7:31 पर। आज सुनिएगा ब्रज की माटी तुहे प्रणाम, ये श्रृंखला। इसमें जानिएगा जन जन के आराध्य श्री बांके बिहारी जी। आलेख प्रस्तुति सहयोग होगा रश्मि शर्मा का, प्रस्तुत करता होंगे ओपी सिंह। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि सुबह 8:30 पर। 9 बजे हिंदी वार्ता के अंतर्गत मुद्दे की बात का विषय होगा दिनकर साहित्य के विविध आयाम। वार्ताकार होंगे डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा और इनसे भेंट करेंगे ओपी सिंह। कार्यक्रम आबोहवा का प्रसारण समय सुबह 9:25 पर। विषय होगा आर्थिक विकास और पर्यावरण। आलेख और वाचन होगा श्रीमती उषा गोयल का। ब्रज की समसामयिक गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम ब्रज दर्पण सुबह 9:30 पर।

अपराह्न 12:30 पर ब्रज लोकगीत कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं भगवान सिंह जोगी और साथी। दोपहर 1:15 पर वनिता लोक कार्यक्रम में चर्चा होगी अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस पर और खेल के क्षेत्र में नारी इस विषय पर। साथ ही कानूनी वार्ता में संविधान प्रदत्त हमारे अधिकार और कर्तव्य ये वार्ता सुनिएगा। वार्ताकार होंगे सुबोध कुमार शर्मा। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण समय अपराह्न 2:30 पर।

शाम 5:30 पर युववाणी कार्यक्रम में आज की बात में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस और रामधारी सिंह दिनकर जयंती ये विषय होंगे। साथ ही वार्ता सुनेगा जैसा मैंने उन्हें पाया श्री दिनकर, वार्ताकार होंगी पद्मा सचदेव। ब्रज साहित्य कार्यक्रम में ब्रज वार्ता सुनवाई जाएगी राधा अष्टमी की लीलाएं, वार्ताकार होंगे मदन मोहन शर्मा। संध्या वंदन कार्यक्रम शाम 6:30

शाम 6:50 पर कार्यक्रम होगा ब्रज ग्रामीण। आज ये कार्यक्रम होगा फोन इन, विषय होगा पशुपालन एवं पशु रोगों पर। वार्ताकार होंगे और विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर जितेंद्र सिंह गंधार। शाम सुहानी ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7:31 पर रात 8 बजे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा। सुहाने तराने कार्यक्रम रात 9:15 पर। रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा जिसमें आज आप सुनेंगे उस्ताद मुनव्वर अली खान का ख्याल गायन और साथ ही सुनेगा पंडित मोहित कुमार का गिटार वादन।

0: ये थी संक्षिप्त जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। और आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम खेती की बातें। विषय है पशुओं में पाचन संबंधी रोग और उपचार। वार्ताकार हैं विजय सिंह नौलखा।
1: किसान भाइयों, आज हम पशुओं में पाचन संबंधी रोग एवं निदान विषय पर चर्चा करेंगे। पशुओं में होने वाले सामान्य उदर रोग इस प्रकार से हैं। पहला है अफरा। जुगाली करने वाले पशु अधिक गीला हरा घास या चारा खाने से उनके पेट में दूषित गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन, अमोनिया आदि एकत्रित होकर उसका पेट तान देती हैं, जिससे पशु बेचैन हो उठता है। इस रोग का कारण है दूषित आहार, अधिक कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थों का सेवन, खाने में एकाएक परिवर्तन, व्यायाम या कार्य के बाद एकदम ठंडा पानी पीना, गले में रुकावट, पेट की मांसपेशियों की खिंचाव शक्ति कम होना आदि इस रोग का कारण है। र्यूमन में गैसें भरकर उसका फूल जाना, हाथ से दबाने पर ढोल जैसी डम डम की आवाज सुनाई देती है, श्वास लेने में परेशानी होती है, पशु खाना पीना तथा जुगाली करना बिल्कुल ही बंद कर देता है, पशु के मुंह से लार गिरती है, पशु बार बार उठता बैठता है तथा बेचैन रहता है, अंत में गोबर व पेशाब निकलना बंद हो जाता है। इस रोग की चिकित्सा हेतु गंभीर अफरा में तारपीन का तेल व मीठा तेल 30 मिलीलीटर तारपीन

0: का तेल तथा 400 मिलीलीटर मीठा तेल सीधे रूमन में प्रवेश कराया जाता है। पाचन संबंधी दूसरी व्याधि है र्यूमेन का गुम होना। अधिक सूखे कड़े और लंबे खाने में कभी कभी पशु का र्यूमेन तनकर गुम्बा बन जाता है। अफरा की भांति इसमें गैसें नहीं बनती हैं, लेकिन तनाव धीरे धीरे बढ़ता जाता है। कड़े तथा सूखे चारे, अधिक खाना, अतिशीघ्र बिना चबाए खाना, र्यूमेन में पानी का अभाव, र्यूमेन की दीवारों में संकुचन का अभाव तथा विषैले पदार्थों के शोषण से र्यूमेन की दीवारों का पक्षाघात आदि इस रोग के कारण है। रोग होते ही पशु चारा दाना तथा जुगाली करना बिल्कुल ही बंद कर देता है। कब्ज के कारण इसमें बेचैनी होती है। बाईं कोख तनी तथा बाहर व नीचे की ओर उभरी दिखाई देती है। पशु अपनी पीठ उठाता है, दांत पीसता है तथा थोड़ा थोड़ा बार बार गोबर करता जाता है। इसकी चिकित्सा हेतु पेट साफ करने के लिए दस्तावर नुस्खे दिए जा सकते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड 180 ग्राम, मैक्सल्फ 180 ग्राम, शीरा 450 ग्राम। र्यूमेनो टॉनिक गोलियां इस चिकित्सा में लाभकारी होती हैं। र्यूमेन की दीवारों में खिंचाव शक्ति कम होने पर रोगी को कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट का घोल देना चाहिए। पाचन संबंधी एक अन्य रोग है अजीर्ण रोग। यह एक रोग न होकर अपच संबंधी एक लक्षण है, जिसमें कि पशु बेचैन उठता है, जिसमें संपूर्ण भोजन प्रणाली पर इसका प्रभाव पड़ता है। अनियमित एवं दूषित आहार, पेट में परजीवी कीटों का होना, कम परिश्रम व अधिक आराम, शीघ्र बिना चबाए खाना खाना, कभी कभी दूसरी बीमारियों के कारण भी अपच हो जाती है। पशु चारा खाने में अरुचि रखकर जुगाली करना बंद कर देते हैं। रोगी को प्यास अधिक लगती है। पशु सूखा और सख्त थोड़ा थोड़ा करके कई बार गोबर करता है तथा पशु बहुत सुस्त रहता है। गोबर की जांच तथा रूमन की जांच के अनुसार चिकित्सा की जाती है तथा पशु 2-3 दिन में सामान्य हो जाता है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। विषय था पशुओं में पाचन संबंधी रोग और उपचार। वार्ताकार थे विजय सिंह नौलखा। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य गुजरातस्य वडोदरा नगरे महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालयस्य 75वें वार्षिके दीक्षांत समारोहे भागं भजिष्यति। समारोहावधौ राष्ट्रपति पदासीनया मुर्मू वर्यया 600-12,000 विद्यार्थिभ्यः उपाधयः प्रदास्यति। स्नातक स्नातकोत्तर कार्यक्रमेषु शैक्षणिकोपलब्धिभ्यः सा विद्यार्थिभ्यः सुवर्ण पदकानि अपि प्रदास्यति। तदनन्तरम् असौ वडोदरा नगरे ब्रह्मकुमारीज इति संस्थायाः ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर इत्यस्य उद्घाटनं करिष्यति। कार्यक्रमस्य अन्तर्गते सा विश्वस्य नवनिर्माणाय आध्यात्मिक जागरणम् इति परियोजनायाः उद्घाटनं करिष्यति तथा विकसित भारताय युवा राष्ट्र निर्माणाय आन्तरिक शक्तेः जागरणम् इति अभियानस्य दृश्य श्रव्य परान्तर्जालीय माध्यमेन शुभारम्भं करिष्यति। राष्ट्रपतिः गुजरातस्य त्रिदिवसीय यात्रायामस्ति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः ह्यः गुजरातस्य एकतानगरे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इत्यस्य भव्य पृष्ठभूमौ आयोजिते समारोहे भारतीय चलचित्र क्षेत्रस्य प्रमुख प्रतिभाभ्यः 24,000 वर्षस्य 270 राष्ट्रीय चलचित्र पुरस्कारान् प्रदत्तवती। चलचित्र जगतः जनान् सम्बोधयन्ती राष्ट्रपतिः मुर्मुः उक्तवती यत् चलचित्रं भारतस्य समृद्धां सांस्कृतिक वैविध्यतां प्रतिबिम्बयति तथा विभिन्न भाषाणां प्रादेशिक परिप्रेक्ष्यानां राष्ट्रियाभिलाषाणां च मध्ये सेतु रूपेण कार्यं करोति।
1: यहाँ अनेक भाषाओं एवं विभिन्न क्षेत्रों में बनी फिल्मों से जुड़े लोग उपस्थित है। सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती। भारतीय

0: फिल्मों में हम भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। उत्कृष्ट फिल्मों को सम्मानित करने का ये समारोह स्टैचू ऑफ यूनिटी के प्रांगण में वॉल ऑफ यूनिटी के समीप आयोजित हो रहा है। ऐसा लगता है कि भारत की सांस्कृतिक एकता के इस महोत्सव को स्वाधीन भारत की एकता के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वयं आशीर्वाद दे रहे हैं।
1: समारोहे सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव घोषितवान् यत् राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार समारोह अधुना देशस्य प्रमुखेषु पर्यटन स्थलेषु आयोजयिष्यते। सः राज्येभ्यः केन्द्र शासित प्रदेशेभ्यश्च भविष्ये पुरस्कार समारोहाणाम् आतिथ्याय प्रमुख स्थलानां चयनं कर्तुम् आह्वानं कृतवान्। समारोहे राष्ट्रपति वर्यया देशस्य आहत्य विभिन्नेभ्यः भागेभ्यः आगतेभ्यः द्विनवति पुरस्कार विजेतृभ्यः सम्माननं प्रदत्तम्। प्रसिद्धः कन्नड अभिनेता अनंत नागः भारतीय चलचित्र क्षेत्रे पञ्चदशकाधिक कालपर्यन्तं प्रदत्तस्य उत्कृष्ट योगदानस्य कृते प्रतिष्ठितेन दादा साहब फाल्के पुरस्कारेण सम्मानितः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ह्यः नवदिल्ल्याम् उडुपी इत्यत्र श्री पेजावर अधोक्षज मठस्य श्री श्री विश्व प्रसन्न तीर्थ स्वामिना अन्यैः गणमान्यैः च सह मिलितवान्। अस्मिन् अवसरे श्रीमोदिना पद्म विभूषण यतिकुला चक्रवर्ती श्री विश्वेश तीर्थ स्वामिनः जन्म शताब्दी समारोहस्य प्रतीकचिह्नस्य अनावरणं कृतम्। सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् सन्देशे प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् श्री विश्वेश तीर्थ स्वामिनः भक्त्या ज्ञानार्जनेन सेवया च परिपूर्णं जीवनम् असंख्य जनान् निरन्तरं प्रेरयति। सः उक्तवान् यत् तस्य जन्मशताब्द्याः उपलक्ष्ये क्रियमाणाः विविधाः उपक्रमाः तस्य महनीयादर्शान् अग्रे नेतुम् अधिकं साहाय्यं करिष्यन्ति। भारतर्तु विज्ञान विभागेन आगामिषु द्विदिवसेषु छत्तीसगढ़ ओडिशा तटीय आन्ध्रप्रदेश तेलंगानानां पृथक् पृथक् स्थलेषु प्रबलाति प्रबल वृष्टेः सम्भावनां दृष्ट्वा रक्त वर्णपरा संचेतना प्रसारिता अस्ति। इति वार्ताः।
2: FM 102.2 MHz पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। अगला कार्यक्रम भूले बिसरे गीत आप सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।

झनक झनक पायल बाजे। अभी आपने सुना इस फिल्म का गीत। आवाजें थी हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की, बोल लिखे थे हसरत जयपुरी ने और धुन बनाई थी वसंत देसाई ने।

चित्रगुप्त के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में भाभी फिल्म का ये गीत। शब्द रचना थी राजेंद्र कृष्ण की।

आन फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में। गीत को लिखा था शकील बदायूनी ने और धुन बनाई थी नौशाद ने।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
1: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
0: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
0: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।
4: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 11 सीटों और राज्यसभा के 10 सीटों के लिए अधिसूचना जारी। 23 और 16 अक्टूबर को होगा मतदान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 3,500 से अधिक अभ्यर्थियों को वितरित किए नियुक्ति पत्र। कहा, अगले 6 महीने में 1,00,000 युवाओं को देंगे सरकारी नौकरी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ के स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के नए क्षेत्रीय कार्यालय और आवासीय परिसर की वर्चुअली रखी आधारशिला। और विश्व बैंक के दक्षिण एशिया क्षेत्र के वित्त नीति विकास एवं सार्वजनिक उपक्रमों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से की शिष्टाचार भेंट। यूपी एज परियोजना पर हुई चर्चा। अब समाचार विस्तार से। भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद और उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सदस्यों की रिक्त होने वाली सीटों के लिए कल निर्वाचन कार्यक्रम घोषित कर दिया। विधान परिषद की 11 सीटों के लिए 23 अक्टूबर 2026 और राज्यसभा की 10 सीटों के लिए 16 अक्टूबर 2026 को मतदान होगा। एक रिपोर्ट।
1: उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 5 खंड स्नातक और 6 खंड शिक्षक सीटों पर चुनाव के लिए 29 सितंबर को अधिसूचना जारी होगी। 9 अक्टूबर तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकेंगे। मतदान 23 अक्टूबर को जबकि वोटों की गणना 27 अक्टूबर को होगी। वहीं उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए सदस्यों का कार्यकाल आगामी 25 नवंबर को समाप्त हो रहा है। आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन के लिए 29 सितंबर को अधिसूचना जारी की जाएगी। 6 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि होगी। 7 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 9 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकेंगे। 16 अक्टूबर को मतदान होगा। मतगणना उसी दिन शाम 5 बजे से प्रारंभ होगी। निर्वाचन प्रक्रिया को 19 अक्टूबर तक पूरा कर दिया जाएगा। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश

0: शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित 3,567 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये केवल नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा से जुड़े चारों स्तंभ, सहायक अध्यापक, प्रवक्ता, प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य को एक साथ जोड़ने वाला विशेष अवसर है।
1: ये केवल एक नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम नहीं है, 3,567 ऐसे लोगों का चयन करके जिनके हाथों में प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का एक गुरुत्वर दायित्व भी है और उस दायित्व के निर्वहन करने के लिए आप सब नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा का हिस्सा बनने के लिए आप सभी को हृदय से अभिनंदन करता हूँ।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 9 साल में 9.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है, अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख और युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि कैसे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम के माध्यम से इस दृष्टिकोण को व्यवहार में ला रही है।
2: गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम, जिसकी शुरुआत अगस्त 2016 में हुई थी, वह आज देश में सरकारी खरीद के लिए एक प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। यह प्लेटफॉर्म खरीदारों और विक्रेताओं को एक साथ ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर लाता है। 2023 में टेक्नोलॉजी के जरिए ईज ऑफ लिविंग पर बजट के बाद आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कैसे जेम पोर्टल ने छोटे कारोबारियों को सरकारी खरीद प्रक्रिया में शामिल होने के लिए सशक्त बनाया है।
3: हम भारत में आधुनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, साथ ही ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि डिजिटल क्रांति का फायदा समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। आज जेम पोर्टल जेम पोर्टल ने दूर दराज के छोटे दुकानदार या रेहड़ी पटरी वालों को भी ये अवसर दिया है कि वो सरकार को सीधे अपना प्रोडक्ट बेच सके।
2: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए जेम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने बताया कि जेम का कारोबार 2016-17 में 422 करोड़ रुपए से बढ़कर अब 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है।
4: इसने जो एक्सेस दिया है, डेमोक्रेटाइज किया है पूरे खरीदारी को, एक तो वो पहल रही है। और आंकड़ों में अगर देखें तो 422 करोड़ की शुरुआत थी हमारी 16-17 में और आज हम 20 लाख करोड़ से ज्यादा का व्यापार के थ्रू करा पाए हैं और इसमें 25 लाख सेलर्स हमारे साथ जुड़े हैं।
2: जेम प्लेटफॉर्म पर विक्रेताओं की संख्या लगभग 3,000 से बढ़कर 25 लाख से ज्यादा हो गई है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप्स और अन्य विक्रेताओं की बढ़ती भागीदारी के साथ जेम पूरे देश में डिजिटल सरकारी खरीद का प्रमुख मंच बनकर उभरा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुखों के 3rd राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। श्री शाह ने लखनऊ के स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के नए क्षेत्रीय कार्यालय और आवासीय परिसर की वर्चुअली आधारशिला भी रखी। एक रिपोर्ट।
5: 2 दिन के सम्मेलन का उद्देश्य मादक पदार्थों की समस्या से भावी पीढ़ियों को सुरक्षा प्रदान करने पर विचार विमर्श करना है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की ओर से आयोजित इस सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुख भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का विषय है एकजुट संकल्प, साझा जिम्मेदारी। सम्मेलन के दौरान गृहमंत्री ने स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की नई वेबसाइट का शुभारंभ किया। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कल लखनऊ में विश्व बैंक के दक्षिण एशिया क्षेत्र के वित्त नीति, विकास एवं सार्वजनिक उपक्रमों के प्रैक्टिस मैनेजर हुन सोह के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान विश्व बैंक के सहयोग से प्रस्तावित उत्तर प्रदेश इनेबलिंग डिस्ट्रिक्ट लेड इकोनॉमिक ग्रोथ UPS परियोजना पर विस्तृत चर्चा हुई। इस अवसर पर स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन उत्तर प्रदेश के CEO मनोज कुमार सिंह भी उपस्थित रहे।

0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 57वीं और महंत अवैद्यनाथ की 12वीं पुण्यतिथि समारोह के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में शुरू हो रहे 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ में शामिल होंगे। साथ ही चरगावा में करीब 8 करोड़ की लागत से बने राजकीय महिला शरणालय का लोकार्पण भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कल मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के दौरे पर रहे। श्री नवीन ने सहारनपुर में पश्चिमी यूपी के जनप्रतिनिधियों व पदाधिकारियों के साथ आगामी 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर संवाद किया। सहारनपुर में मीडिया से बातचीत में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि कार्यकर्ताओं का उत्साह और जोश देखकर विश्वास है कि वर्ष 2027 में प्रदेश में भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी।
1: कार्यकर्ताओं का उत्साह और उनकी ऊर्जा स्पष्ट रूप से संकेत दे रही है कि इस बार 2027 में भारतीय जनता पार्टी की फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। हर जगह जब कार्यकर्ता के साथ जनता भी सड़कों पर नजर आई तो स्पष्ट दिखा कि किस प्रकार से हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रति किस प्रकार से सभी लोग मिलकर आगे आए हैं, और मुझे लगता है कि 2027 के मिशन को हम पूरा करेंगे।
0: प्रदेश के पूर्वी एवं पश्चिमी क्षेत्र के कई जिलों में आज से फिर बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है। मौसम विभाग ने आगामी 4 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की से तेज बारिश होने की संभावना जताई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 11 सीटों और राज्यसभा की 10 सीटों के लिए अधिसूचना जारी। 23 और 16 अक्टूबर को होगा मतदान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 3,500 से अधिक अभ्यर्थियों को वितरित किए नियुक्ति पत्र। कहा, अगले 6 महीने में 1,00,000 युवाओं को देंगे सरकारी नौकरी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ के स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के नए क्षेत्रीय कार्यालय और आवासीय परिसर की वर्चुअली रखी आधारशिला। और विश्व बैंक के दक्षिण एशिया क्षेत्र के वित्त नीति, विकास एवं सार्वजनिक उपक्रमों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से की शिष्टाचार भेंट। यूपीएस परियोजना पर हुई चर्चा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

भैया, आज के यह कार्यक्रम में आपको सुनवाए रहे हैं श्रृंखला ब्रज की माटी तोहे प्रणाम। यह में आज आप सुनेंगे जन जन के आराध्य श्री बांके बिहारी जी। आलेख और प्रस्तुति सहयोग है रश्मि शर्मा को, प्रस्तुत करता है ओपी सिंह।

0: जय श्री कृष्णा। हमारे ब्रजमंडल में 7 बार और 9 त्योहार की परंपरा रही है। या परंपरा के अनुसार तो हम ब्रजवासीन को हर दिन ही उत्सव है, क्योंकि बांके बिहारी जी के भक्तन को तो उनको नित्य प्रति दर्शन कर पानो भी उत्सव ते कम थोड़ी ही है। आज भी जब कोई विशेष पर्व हुए है तो वृंदावन के बांके बिहारी से मिलवे वारी हर गली में एक ही स्वर सुनाई दे,
1: बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय।
0: और या उद्घोष के संगई सभी भक्तन को जन समूह अपने लाडले ठाकुर जी की एक झलक पाएवे के काजे ललक उठे और उनकी वाजहाकी को पाए के धन्य है जाए है। जैसे कि इन दिनन में बांके बिहारी जी के फूल बंगला को उत्सव चल रहे है, जो कि कामदा एकादशी ते आरंभ है के श्रावण की हरियाली अमावस्या पे या कु विश्राम दियो जाए है। या सेवा में ठाकुर जी नित्य प्रति प्रातः और सायकाल दोनों समय फूल बंगला में विराजित है के दर्शन दे में है। वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया में अक्षय तृतीया के पर्व पे बांके बिहारी जी के चरण दर्शन लेपन एवं सायकाल को सर्वांग दर्शन कराए जाए हैं। या संदर्भ में जानकारी देते भय सेवायत नितिन गोस्वामी बताए रहे हैं,
2: बिहारी जी का एक फेस्टिवल अक्षय तीज के दिन सिर्फ पूरे साल में सिर्फ एक ही ऐसा दिन है जिस दिन बिहारी जी अपने श्री चरणों के दर्शन देते हैं और सर्वांग दर्शन भी देते हैं। सर्वांग दर्शन का अर्थ क्या है कि आप जब शाम को अक्षय तीज पर आएंगे तो ठाकुर जी ने स्लीवलेस ड्रेस पहनी होती है, ठाकुर जी के तन पर ऊपर कोई भी कपड़ा नहीं होता है, हल्का सा एक ठाकुर जी को बस लगा दिया जाए, बाकी पूरा चंदन का लेप होता है। और अमूमन हमने चंदन अभी तक माथे पे लगाया है, लेकिन उस दिन चंदन के जो लड्डू बनाए जाते हैं वो बिहारी जी के श्री चरणों पे रखे जाते हैं और वो चंदन पाने के काम में आता है, बाकी चंदन हम लगाते हैं। उस दिन बिहारी जी साल में एक ही दिन स्वर्ण और रजत चरण पादुका के साथ साथ ठाकुर जी महाराज के स्वर्ण और चरण बिहारी जी पाजेब भी धारण करते हैं और बिहारी जी के बहुत सारी ऐसी चीजें उस दिन जो ठाकुर जी की साल में सिर्फ एक ही दिन होती है, कुछ उनके भोग हैं जैसे कि ठाकुर जी को उस दिन सत्तू के लड्डू का भोग लगता है, ये साल में सिर्फ एक ही दिन भोग लगता है बिहारी जी को, और येलो ड्रेस में पीताम्बर में ठाकुर जी रहते हैं।
0: श्रावण शुक्ल पक्ष की तीज को हरियाली तीज के अवसर पे बांके बिहारी जी महाराज स्वर्ण हिंडुलान में विराजित हुए के दर्शन दे में हैं। या संदर्भ में जानकारी दे रहे हैं गोपी गोस्वामी।
3: एकादशी से ठाकुर जी के हिंडोले की तैयारी हो जाती है, बिहारी जी हिंडोले में जगमोहन से भी बाहर आकर विराजते हैं और ये शुद्ध सोने और चांदी का जो झूला बना हुआ है ये बहुत प्राचीन झूला है और पहली बार 1947 में इस झूले को लगाया गया था। 1942 से ये झूला बनना तय हुआ, पहले इसके लिए एक लकड़ी का जंगल लीज पे लिया गया, फिर उसकी लकड़ी सुखाई गई, फिर उसके बाद ये झूला बनकर तैयार हुआ जो कि ठाकुर जी जिसमें विराजमान होते हैं। ये बहुत ही अद्वितीय झूला है, ऐसा पूरे उत्तर भारत में

0: ऐसा झूला नहीं है।
1: या दिना वेणी गुथन लीला भी होए है और सुख से जो सजाई जाए है, या संदर्भ में जानकारी दे रहे हैं नितिन गोस्वामी।
2: प्रिया प्रियतम को स्वामी हरदास जी ने जब झूला झुलाया तो वो साल में सिर्फ एक ही दिन फेस्टिवल होता है और वो है हरियाली तीज के दिन। और हरियाली तीज पर एक और चीज अनोखी होती है कि ठाकुर जी के आगे जब हम झूले में देखेंगे तो पूरा हरियाली हरियाली होती है, ग्रीन कलर की पोशाक होती है, सखियां भी सब ग्रीन में होती है, पीछे जो है उनकी सुख सेज तैयार करते हैं। उसका अर्थ ये है कि जब स्वामी हरदास जी प्रिया प्रियतम को झूला झुला रहे हैं तो क्योंकि वो बाल स्वरूप में तो वो थक जाते हैं, तो पीछे एक गुलाबी छटा में पूरी उनकी सुख सेज तैयार करी जाती है, जिस पर कि ठाकुर जी के लिए भोग भी रखा होता है, शीशा भी होता है जिसमें ठाकुर जी के लिए आयना दर्पण, जिसमें राधा रानी के वो चुटीला करते हैं, यानी बैनी गूथन जो लीला है वो आपको उसमें नजर आएगी कि बैनी गूथन लीला जो कान्हा जी हमारे कृष्ण जी हैं वो राधा रानी की चोटी बना रहे हैं, उनको पान का बीड़ा पवा रहे हैं और वो सारी सुख सेज में पीछे गुलाबी छटा में हरियाली तीज वाले दिन दर्शन हो।
1: भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर शयन आरती के पश्चात श्री बिहारी जी महाराज के चबूतरा पे श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत श्री कृष्ण जन्म की कथा के पश्चात रात्रि 12 बजे महा अभिषेक हुए है। लगभग 2 बजे के मध्य मंगला आरती करी जाए है, जो कि पूरे वर्ष में एक ही दिना हुए है। यह संदर्भ में जानकारी दे रहे हैं सेवायत राहुल गोस्वामी।
3: जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। दिन में नॉर्मल सब लोग व्रत अपना रखते हैं और रात के भोग की तैयारियां करते हैं, जिसमें विशेष पाग जो पंच मेवाओं से निर्मित है और मावा से बनाया जाता है, जो रात्रि को जब ठाकुर जी का जन्म होता है उसके बाद उसका भोग लगाया जाता है। रात्रि को शयन आरती के बाद तकरीबन 11:30 बजे से गोस्वामी समाज के सब बंधु बिहारी जी का अभिषेक करवाने के लिए आते हैं और पंच तत्वों से श्री बिहारी जी महाराज का अभिषेक किया जाता है। पंच तत्व दूध, दही, घी, बूरा और शहद। पहले ठाकुर जी को खूब अच्छे से अभिषेक करवाया जाता है। जो गोस्वामी लोगों के भक्त लोग हैं, जो बिहारी जी के भक्त लोग हैं, उनके नाम से अभिषेक करवाते हैं। अभिषेक कराने के बाद ठाकुर जी का जन्म होता है, गुलाब जल से स्नान कराया जाता है, सुंदर पाक का भोग लगाया जाता है। पाक का भोग लगाने के बाद फिर ठाकुर जी के श्रृंगार की तैयारी की जाती है। सुंदर मंदिर सजा हुआ होता है। जब तक ठाकुर जी श्रृंगार कर रहे होते हैं, मंदिर के चारों पांचों गेटों पर इतनी ज्यादा भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है, क्योंकि साल में एक बार मंगला आरती होती है और उस मंगला आरती का विशेष महत्व है। ऐसा बोला जाता है, जाने की मंगला कभी ना होगा कंगला, मतलब वर्ष में एक बारी वो आरती होती है जन्माष्टमी पर रात्रि 2 बजे के आसपास, और विशेष रूप से जो ठाकुर जी का जन्म होता है उसके बाद जो मंगल आरती की जाती है, उसको दर्शन के बाद जो ठाकुर जी का बाल रूप में हम लोग दर्शन करते हैं, उस चीज का इसमें महत्व माना गया। तो जब ठाकुर जी का यहाँ पर श्रृंगार चल रहा होता है, मंदिर के बाहर चबूतरा है, वहाँ एक भागवत का आयोजन भी होता है, 2 घंटे का भागवत, ताकि भक्तों का मन लगा रहे। उसके बाद तकरीबन 1:30-2 बजे द्वार जब खुलते हैं, भक्त लोग अंदर आते हैं, ठाकुर जी के दर्शन पाकर धन्य हो जाते हैं। इतना सुंदर स्वरूप ठाकुर जी का, और वास्तविकता में उस दिन ठाकुर जी बाल रूप में ही दिखते हैं, इतना सुंदर स्वरूप होता है। तकरीबन 1:45-2 बजे के आसपास मंगला आरती की शुरुआत होती है और भक्तों की तो इतनी ज्यादा भीड़ होती है, और उस समय भक्तों को कोई इस भीड़ से डर नहीं होता है, ना उनको कोई परेशानी, गर्मी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन ठाकुर जी की झलक पाते ही बस ठाकुर जी में रम जाते हैं और नंद के आनंद भाई जय कन्हैया लाल की धूम मच रही होती है, नारे खूब जोर जोर से ठाकुर जी के जयकारे लगाए जा रहे होते हैं। तकरीबन मंगला आरती के बाद मंगल छींटे मिलते हैं ठाकुर जी के जल के, और उसके बाद शुरू होता है मंगला दर्शन। जो लोग मंगला आरती के दर्शन नहीं कर पाते हैं वो 2 बजे से 5 बजे तक मंगला दर्शन कर सकते हैं, उसमें थोड़ी भीड़ कम भी होती है, और बड़े बुजुर्ग लोग आकर के मंगला दर्शन कर सकते हैं, जिसका महत्व मंगला आरती के दर्शनों के बराबर है। वर्ष में एक ही बार एक ही दिन

सारी रात दर्शन खुलते हैं और ठाकुर जी के मंगला दर्शन करने से सभी भक्तों को वही अपना मंगला आरती का जो सौभाग्य मिलता है वो सौभाग्य प्राप्त होता है। दूसरे दिन जो तैयारियां चल रही होती हैं उसे बोलते नंदोत्सव। नंदोत्सव जब ठाकुर जी का जन्म हो गया है तो अगले दिन नंदोत्सव की तैयारियां चल रही होती हैं। सभी भक्त लोग अपने यथाशक्ति अनुसार कुछ भोग के लिए फल, रुपए, कुछ कपड़े, कुछ मिठाइयां, टॉफी, बिस्किट, चॉकलेट, बहुत सारी चीजें लेके आते हैं, ठाकुर जी का भोग लगवाते हैं और इस प्रांगण में जितने भी भक्त लोग हैं सबको खूब लुटा लुटा कर देते हैं खुशी में कि नंद के आनंद भाई जय कन्हैया लाल की, और उनको इस बात की

0: कि नंद के आनंद भाई जय कन्हैया लाल की, और उनको इस बात की खुशी है कि आज हमारे लाला ने जन्म लिया है, और लाला का ये भोग सभी भक्तों को प्रसाद रूप में खूब लुटा लुटा कर दिया जाता है। क्योंकि जिस तरह भगवान अपनी कृपा को खूब बरसा रहे हैं और लुटा रहे हैं, तो भक्त भी बहुत खुश होकर उनके उस जन्म के अवसर पर जो यथावत उन पर होता है वो लाते हैं और खूब लुटाते हैं।
1: श्री राधाष्टमी के पावन पर्व पे रसिकाचार्य शिरोमणि श्री हरिदास जी महाराज को पाठोत्सव राजभोग आरती के पश्चात मनायो जाए है। मंदिर में साय 4 बजे के बाद रास लीला आरंभ है जाए है। सायकाल मंदिर ते चाव की दिव्य सवारी श्री निधिवन राज को पधारे है, जामे गोस्वामी जन समाज गायन करते हुए निधिवन राज को पधारे हैं, तथा संगीत सम्मेलन में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाए हैं। यह संदर्भ में बताए रहे हैं हिमांशु गोस्वामी।
2: तुम्हें हो राधाष्टमी का हमारे यहाँ विशेष महत्व है। राधाष्टमी का विशेष महत्व इसलिए कि उस दिन स्वामी श्री हरदास जी महाराज का प्राकट्य उत्सव है। उस दिन बड़ी धूमधाम से हमारे ठाकुर जी बधाई देने बिहारी जी महाराज चित्रपट के रूप में स्वामी जी के पास निधिवन जाते हैं।
3: अच्छा
2: जी, वहां से चाव जाती है, हम पद गाते हुए ठाकुर जी को स्वामी जी महाराज को बधाई देने, बिहारी जी महाराज अपने भक्त को बधाई देने जाते हैं।
3: यहाँ से यात्रा जाती
2: जी
3: है।
2: यहाँ से जाती है,
3: यहाँ से यात्रा निधिवन जाती,
2: निधिवन जाती है।
1: आश्विन माह की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के अवसर पे ठाकुर जी मोर मुकुट कटकाछनी वंशी धारण करे हैं।
4: शरद पूर्णिमा का जो फेस्टिवल है, शरद पूर्णिमा पर बांके बिहारी जी बंसी धारण करते हैं। आप कभी भी साल में आ जाइए, बिहारी जी को आप बंसी धारण करते हुए नहीं देखोगे, आप बिहारी जी को बंसी धारण करते हुए देखोगे सिर्फ और सिर्फ शरद पूर्णिमा के दिन। शरद पूर्णिमा के दिन ही ठाकुर जी महाराज का ये मान्यता है, यहाँ पर माना जाता है कि चंद्रमा की रोशनी में उन्होंने महारास किया था, और वो महारास था उनका प्रिय प्रियतम का, जिसमें उनके सखियां भी साथ में रहती हैं, पूरा पीछे निकुंज वन रहता है, जबकि निधिवन का स्वरूप ठाकुर जी के हम यहाँ पर बनवाते हैं, और उसमें व्हाइट कलर की पोशाक में यानी श्वेत वस्त्र में ठाकुर जी महारास करते हैं, जिस महारास को देखने के लिए देवी देवता भी लालायित रहते हैं कि देख पाएं, लेकिन उनको भी गोपी रूप में ही आना पड़ता है। तो वो महारास के दर्शन और बंसी धारण के दर्शन और कटकाछनी उनकी कमर पर बनती है उस दिन, वो बहुत सुंदर लगती है, वो सिर्फ साल में एक ही दिन शरद पूर्णिमा के दिन होती है।
1: मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष पंचमी को श्री बिहार पंचमी के अवसर पर श्री बांके बिहारी जी महाराज को प्रादुर्भाव उत्सव श्री विठल विपुलोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास संग मनायो जाए है। मध्यान्ह में स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की दिव्य सवारी बधाई शोभा यात्रा श्री निधिवन राज से नगर के मुख्य मार्गंते होते भाई श्री बांके बिहारी जी के मंदिर को पधारे हैं।
2: जब ठाकुर जी का जन्मदिन होता है, बिहार पंचमी के दिन कहते हैं उसको, तो उस दिन स्वामी जी महाराज चाव लेके ठाकुर जी को बधाई देने आते हैं। स्वामी श्री हरदास जी महाराज वहां से बधाई देने के लिए बिहार के मंदिर आते हैं। अच्छा। तो साथ में फिर उसके बाद दोनों साथ में भोग लगता है, आरती होती है, उसके बाद ठाकुर जी फिर चैन।

0: फागुन के मदमस्त महीना में बांके बिहारी जीव भक्तन के संग होरी खेले हैं। या संदर्भ में सेवायत हिमांशु गोस्वामी बतामे हैं।
1: हमारे यहाँ ब्रज में कहते हैं कि जग होरी ब्रज होरा। हाँ। हमारे यहाँ 40 दिन की होली होती है, एक दिन की नहीं होती। हाँ। हमारे ठाकुर जी पूरी ब्रज 84 को उसमें होली खेलते घूमते हैं। 40 दिन हमारे ठाकुर जी बिल्कुल निर्द्वंद रहते हैं और जो आनंद बरसाते हैं पूरे ब्रज में, कहीं भी किसी कोने में ठाकुर जी कब आपको रंग लगा जाएं, कब आप पे रंग डाल जाएं, आपका खूब मन ना हो होली खेलने का, मंदिर जाओ दर्शन करके आ जाओ पूरे रंग में हो जाओगे, पता नहीं चलेगा कौन ने रंग डाल दिया, इसको कोई नहीं रोक सकता। तो ब्रज में ठाकुर जी जब होली में रहते हैं तो वो अलग कहते हैं ना संसारिक रूप में मोड, तो हमारे ठाकुर जी का वो आनंद का मोड रहता है और हमारे ठाकुर जी पूरी तरह से आनंद में रहते हैं। उस समय तो ठाकुर पे हमारा भी कंट्रोल नहीं होता, उस समय हमारे ठाकुर जी जो है वो हमारे सखा के रूप में रहते हैं, हम उनसे लड़ते भी हैं और एक विशेष समय पे हम अपने ठाकुर को गालियां भी देते हैं, वो पदों में देते हैं। हाँ। मित्र भाव में है। अच्छा। सर्वस्व तो ही है ना, अब इन्हें होली में डांटेगा बहुत मारेगा। अच्छा। हमारा ठाकुर जो है इस समय नहीं, होली में होगा, होली में कृपा होगी। हाँ। तो वो भी सुनाएंगे आपको जरूर से। हमारे ठाकुर जी बसंत पंचमी से हमारे यहाँ कहते हैं ब्रज में

0: लठ गड़ गया उली का। उस दिन से ठाकुर जी जो है गालों पे गुलाल लगा के और बता देते हैं कि ये रसिया खड़ा है,
1: आ जाओ सब,
0: आ जाओ जिसको होली खेलनी है वो आ जाओ। 40 दिन सबका मन भरते हैं ठाकुर जी और पूर्णिमा के बाद फिर आनंद करते हैं, जलेबी खाते हैं ठाकुर जी हमारे। हाँ, सब जगह सब ब्रजवासियों के यहाँ फहुआ जाता है, जलेबी का भोग लगता है ठाकुर जी का, गरम गरम जलेबी रहती है ना, तो गुलाल अगर गले में हो तो वो साफ हो जाता है।
1: अच्छा,
0: हमारे ठाकुर को हम जी कहते हैं कि तूने इतने 40 दिन होली खेली है तो गुलाल भर रहा होगा तेरे मार तमाम दुनिया मेरे को, तो गरम गरम जलेबी का बखर के संग अंदर चला जाएगा वो।
1: अच्छा,
0: हमारे यहाँ टेसू के रंग होते हैं, कभी कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता, टेसू के रंग होते हैं, केसर होता है, केसर कीच गली मली गालन पे आपने सुना होगा, तो केसर को इतना हम डालते हैं कि वो कीच की तरह बन जाता है, तो हम केसर लगाते हैं ठाकुर के गालों पे। हम टेसू के रंग होते हैं, जो टेसू का रंग टेसू का फूल आता है उसको उबालते हैं इतना कि उसका रंग निकल आता है, उसके बाद हम उसको इस तरह से डालते हैं ठाकुर जी पे कि ठाकुर के अगर कान में भी चला जाए तो सफा करे, नाक में चला जाए तो सफा करे, पेट में चला जाए तो सफा करे, दवाई का काम करता। और केसर में तो ठाकुर जी मारे रहते हैं और काला रंग जरूर लगाते हैं, बहुत सुंदर लगता है ना। इस कलुआ पे हम काला रंग भी लगाते हैं, हमारा ठाकुर है तो हम ये चाहते हैं कि हमारे घर का बालक भी है, हमारा बुजुर्ग भी है, सब कुछ तो ही है, तो उसको नजर ना लग जाए। यही कारण है कि हम पर्दा कंटिन्यू थोड़ी थोड़ी देर में पर्दा लगाते हैं कि लाला को कोई नजर लगा के कोई सखी आके ठाकुर जी को ले जाके संग नहीं ले जाए, नहीं बैठे रहे। उसका एक कारण ये भी है कि वहां बैठे इतने सुंदर लग रहे हैं, रस्ते में हाथ पकड़ दिया तो कोई किसी काम का रहेगा नहीं, ये भी कारण है।
2: होली के उत्सव पे बांके बिहारी जी की 5 दिनांक की विशेष फूलन की होली हुए है, जाकू देखवे के काजे दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पधारे हैं।
3: एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक बांके बिहारी जी में होली होती है और सर्वप्रथम जब आप आएंगे तो एकादशी पर शाम के वक्त जैसे ही बिहारी जी की पहली छटा दर्शन होते हैं, पहले झलक उनकी दर्शन होती है, पहली झांकी जब उनकी हटती है तो आप देखेंगे चारों तरफ से पुष्प वर्षा शुरू हो जाती है, क्योंकि फूल होली का शुभारंभ भी बिहारी जी में काम एकादशी से शुरू हो जाता है, रंगवर्णी एकादशी से, और शाम के वक्त चारों तरफ पूरे में फूल ही फूल बिखेर दिए जाते हैं और गुलाल अबीर गुलाल और टेसू का रंग तो बहुत ज्यादा होता है। अब बिहारी जी के संग होली कैसे खेलते हैं मैं जरा ये भी बताता हूँ, क्योंकि ये चीजें जो है ये पर्दे के पीछे की हैं, लेकिन इसको हम सिर्फ सुनकर हम महसूस कर सकते हैं कि कितना आनंद आता होगा, और मैं यकीन बताऊं अपने नजरिए से तो वो एक ऐसा आनंद है जो परमानंद की प्राप्ति कराता है। सर्वप्रथम बिहारी जी को व्हाइट कलर की पोशाक धारण होती है, श्वेत रंग में ठाकुर जी होली पर पूरे सीजन में रहते हैं, उसके बाद जब केसर का रंग आता है बिहारी जी को गलचप्पे लगते हैं, उनके गालों पर टीका लगता है, बिहारी जी के माथे पर टीका लगता है, ठोड़ी पे लगता है, ये गुलाल के टीके होते हैं जो ठाकुर जी को बधाई देते हैं, उसके बाद सबसे पहली पिचकारी केसर की बिहारी जी के श्रीअंग पर चलाई जाती है, बिहारी जी के वस्त्र पर चलाई जाती है, यानी ऊपर से नीचे तक पूरे सराबोर होते हैं ठाकुर जी महाराज, तर हो जाते हैं जो हम अपने शब्दों में कहेंगे, और केसर का जो रंग है वो पूरे में बिखरता है, और उसके साथ साथ फिर राधा रानी और स्वामी हरदास जी पर छड़की जाती है, और उसके बाद पुजारी लोग अपने आपस में खेलते हैं, फिर जब पर्दा हटता है तो वही प्रसादी रंग भक्तों पर लुटाया जाता है। तो जो होली का जो फेस्टिवल है वो पूरे ब्रिज में है, पूरे वृंदावन धाम में है, वर्ल्ड फेमस तो वैसे ही है, लेकिन ये प्रेम का प्रतीक भी कहा जाएगा, और मैं कहूंगा ये प्रेम का त्योहार है, क्योंकि जब गुलाल लगता है अभी तो देखा है हमने कि हम लोग गले मिलते हैं, ऐसे ही हम ठाकुर जी को गले लगकर बधाइयां भी देते हैं और ठाकुर जी से अपने लिए बहुत सारी कृपा आशीर्वाद मांगते हैं।

ब्रज की माटी तुहे प्रणाम, यह श्रृंखला में आज आपने सुनो जन जन के आराध्य श्री बाके बिहारी जी। ओबी आलेख प्रस्तुति सहयोग रश्मि शर्मा को, प्रस्तुत करता थे ओपी सिंह। आओ भैया अब आपको सुनवा में अलका राजेश को गायो यह लोकगीत।

अलका राजेश को गायो येलो गीत के साथ ही संपन्न हुए आज को ब्रजमाधुरी कार्यक्रम।

FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने संघर्षों, व्यापार दबावों और जलवायु चुनौतियों के बीच विकासशील और अल्प विकसित देशों के बीच सहयोग मजबूत करने पर बल दिया। उन्होंने लातिन अमेरिका और कैरिबियाई देशों के साथ संबंध और मजबूत करने का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे का समर्थन किया। ऊर्जा से जुड़ी बुनियादी व्यवस्था को ईरान की चौकियों से दूर स्थानांतरित करने की आवश्यकता पर बल दिया। 11वां आयुर्वेद दिवस आज देश भर में मनाया जाएगा। छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और जापान एशियाई खेलों में भारतीय रोवर्स ने पुरुष सिंगल्स और डबल्स का स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बढ़ते भू राजनीतिक तनाव, आर्थिक चुनौतियों, जलवायु संबंधी आपदाओं और बहुपक्षीय व्यवस्था पर बढ़ते दबाव से निपटने के लिए विकासशील और अल्प विकसित देशों के बीच अधिक सहयोग की अपील की है। श्री जयशंकर कल अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 81वीं बैठक से अलग विकासशील और अल्प विकसित देशों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वैश्विक स्थिति में बढ़ते संघर्ष, आपूर्ति श्रृंखला और व्यापार पर दबाव, निवेश के बिखरे हुए प्रभाव, बढ़ते ऋण के जोखिम और विकास के लिए अपर्याप्त वित्त की समस्याएं देखी जा रही हैं।
1: India's engagement with the Global South.
2: ग्लोबल साउथ के साथ भारत का जुड़ाव सिर्फ अपने राष्ट्रीय हितों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह एक जुटता और साझा समृद्धि के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को भी दिखाता है। यह रिश्ता आपसी सीख और सहयोग पर आधारित है, साथ ही इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के भविष्य को तय करने में ग्लोबल साउथ की आवाज़ को मजबूत करने का साझा हित भी शामिल है।
0: श्री जयशंकर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होने वाले बदलावों का सही ढंग से प्रबंधन करने के महत्व पर भी बल दिया, ताकि विभाजन को रोका जा सके और विकासशील तथा अल्प विकसित देशों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। डॉ. जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर इटली के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एंटोनियो तयानी से भी मुलाकात की। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उनकी बातचीत खाड़ी क्षेत्र की स्थिति, भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे और यूक्रेन संघर्ष पर केंद्रित थी। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि भारत के साथ व्यापार वार्ता अच्छी प्रगति पर है और दोनों देशों का दिसंबर में G20 शिखर सम्मेलन तक

0: बातचीत पूरी करने का लक्ष्य है। श्री कार्नी ने कहा कि उनके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय कनाडा की यात्रा करेंगे, हालांकि इसकी सटीक तारीख अभी तय नहीं हुई है। G20 सम्मेलन 14 और 15 दिसंबर को अमेरिका के मियामी में होगा। श्री कार्नी ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा से तर संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वे अगले दशक में अमेरिका के अलावा अन्य देशों के साथ कनाडा का व्यापार दोगुना करना चाहते हैं। उन्होंने भारत को उस व्यापक प्रयास का हिस्सा बनाया है जिसका उद्देश्य कनाडा की अमेरिका पर निर्भरता कम करना है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि युद्ध के दौरान पश्चिम एशियाई देशों पर हो रहे कई हमलों को देखते हुए पश्चिम एशिया में ऊर्जा से जुड़े अवसंरचना को ईरानी सीमा क्षेत्रों से दूर ले जाने की आवश्यकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा परिषद और अरब नेताओं के साथ बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि पड़ोसी देशों में वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमलों ने इस क्षेत्र में ऊर्जा संबंधी अवसंरचना को बदलने की आवश्यकता को उजागर किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने आर्थिक कदमों के माध्यम से ईरान को वित्तीय रूप से अलग थलग कर दिया है। उन्होंने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि एक समय ऐसा आ सकता है जब स्थिति को सुलझाने में बहुत देर हो जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि बड़े शहरों में ऐसे एकीकृत वाणिज्य और उद्योग कार्यालय बनाने की योजना है जहां व्यवसायों को विभिन्न सरकारी विभागों तथा एजेंसियों तक पहुंच की सुविधा एक ही स्थान पर मिल सके। उन्होंने कल नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की ओर से आयोजित एक कार्यशाला में ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि सरकार भौतिक और डिजिटल दोनों तरीकों से निर्यात को सुगम बनाने के लिए कार्यरत है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति वडोदरा में ब्रह्म कुमारी के विश्व के नव निर्माण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान के शुभारंभ के साथ ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस का उद्घाटन भी करेंगी।
2: 75वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू 12,600 से अधिक विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। इसमें कॉमर्स फैकल्टी के 6,713 और टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग फैकल्टी के 1,102 विद्यार्थी शामिल हैं। समारोह के दौरान स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए 160 विद्यार्थियों को कुल 201 स्वर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे। इसके बाद राष्ट्रपति वडोदरा में ब्रह्मा कुमारीज के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन करेंगी। इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति स्पिरिचुअल अवेकनिंग फॉर द वर्ल्ड रिन्यूअल परियोजना का भी उद्घाटन करेंगी। इसके साथ ही राष्ट्रपति यूथ फॉर विकसित भारत अवेकनिंग इनर स्ट्रेंथ फॉर नेशन बिल्डिंग अभियान का वर्चुअल शुभारंभ करेंगी। इस अवसर पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी उपस्थित रहेंगे। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, बड़ौदा।
0: इससे पहले राष्ट्रपति मुर्मू ने कल गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
3: सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती है। भारतीय फिल्मों में भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं, उनमें देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती है। जो सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के फायदे के बारे में बताते हैं तो करोड़ों बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं।
0: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है। आयुष मंत्रालय आज महाराष्ट्र के नागपुर में 11वां आयुर्वेद दिवस मनाएगा। इस वर्ष का विषय है बेहतर कल के लिए आयुर्वेद। मंत्रालय ने बताया कि ये समारोह आयुर्वेद से जुड़े प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाएगा और ज्ञान के आदान

0: प्रदान तथा व्यापक जुड़ाव के लिए मंच प्रदान करेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: 11वें आयुर्वेद दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन नागपुर के कविवर्य सुरेश भट्ट सभागार में आज सुबह 9 से 10 के बीच होगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर के कुलपति डॉक्टर संजीव शर्मा ने बताया कि इस वर्ष आयुर्वेद दिवस में प्रमाण अनुसंधान और नवाचार के माध्यम से आयुर्वेद को सशक्त बनाने के साथ साथ सामुदायिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया जाएगा। जामनगर स्थित ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर की यूनिट हेड डॉक्टर गीता कृष्णन पिल्लई शाश्वतम से विश्वास तक स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद और 2047 की ओर मार्ग इस विषय पर मार्गदर्शन करेंगी। कार्यक्रम के दौरान पारंपरिक ज्ञान से वैश्विक नेतृत्व तक आयुष विजन 2030 रिपोर्ट, भारत में आयुष संबंधित आविष्कारों पर स्थिति रिपोर्ट CCRAS अग्नि इस आकलन स्केल वेब पोर्टल का भी शुभारंभ होगा। धनंजय वानखेड़े, आकाशवाणी समाचार, नागपुर।
0: आयुष मंत्री प्रताप जाधव ने कहा है कि आयुर्वेद बेहतर और स्वस्थ जीवन का आधार है।
2: हमारे आयुष मंत्रालय ने जो थीम चुनी है वो है बेहतर कल के लिए आयुर्वेद, यानी कि अगर बुढ़ापे में भी अगर हम अच्छा स्वास्थ्य रखना चाहते हैं, जिंदगी हम वहाँ पर जीना चाहते हैं, तो अभी से आयुर्वेद और आयुष को, योगा को अपनाइए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में हम आपको बताएंगे कि कैसे इस दृष्टिकोण को भारत की सौर क्रांति में साकार किया गया है।
3: भारत की सौर क्रांति गुजरात के राज्य स्तरीय प्रयासों से शुरू होकर आज एक विशाल राष्ट्रीय अभियान बन चुकी है, जो देश को स्वच्छ ऊर्जा, आर्थिक अवसर और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रही है। वर्ष 2014 में मात्र 2.8 गीगावाट की स्थापित सौर क्षमता से आगे बढ़ते हुए भारत वर्ष 2026 तक लगभग 165 गीगावाट की सौर क्षमता हासिल कर चुका है। सौर ऊर्जा को हर घर तक पहुंचाने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब तक 51 लाख से अधिक परिवार जुड़ चुके हैं और 14.8 गीगावाट क्षमता के रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित हो चुके हैं। इसने जहां लाखों परिवारों को बिजली बिल शून्य कर दिया है, वहीं युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के भी नए अवसर सृजित किए हैं। इस योजना के माध्यम से जमीनी स्तर पर आ रहे बदलाव और कौशल विकास का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की एक लाभार्थी की प्रेरक कहानी साझा करते हुए कहा,
4: आज पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का प्रभाव देश के कोने कोने में दिखने लगा है। इस योजना की वजह से गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले की पायल मुजपरा के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने सूर्य पहल के माध्यम से सोलर पावर टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग ली और 4 महीने का सोलर पीवी टेक्नीशियन का कोर्स पूरा किया। वो आसपास के जिलों में सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन का काम करती है और इससे उन्हें हर महीने हजारों रुपए की आय होती है।
3: सुरेंद्रनगर के निवासी दिनेश भाई मकवाड़ा ने बताया कि कैसे इस योजना ने उनके जीवन को सुगम बनाया है।
5: मैंने पास पीजी विसिल का बिजली कनेक्शन था, लेकिन उसके बाद पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू होने पर मैंने उसके आवेदन करके अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवा लिया। इसमें सरकार की तरफ से मुझे 78,000 रुपए की सब्सिडी भी मिली।
3: आज गुजरात प्रधानमंत्री सूर्यगर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर इंस्टॉलेशन में देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, बिहार, झारखंड, आंतरिक कर्नाटका, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में तेज बारिश की संभावना है। जापान एशियाई खेलों में आज भारतीय खिलाड़ियों के पास पदक जीतने के कई अवसर होंगे। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और मीराबाई चानू आज भारत के अभियान का नेतृत्व कर रही हैं। मनु भाकर ने निशानेबाजी में महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में जगह बना ली है। भारोत्तोलक मीराबाई चानू महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में भाग लेंगी। नौकायन में भारत की पुरुष टीम ने सिंगल्स और टीम स्कल्स इवेंट के फाइनल में जगह बना ली है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं अलका सिंह।
6: धन्यवाद प्रियंका। भारतीय बेटियों की स्वर्णिम उड़ान। एशियाई खेल 2026 में भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ियों द्वारा देश

0: के लिए पहला स्वर्ण पदक लाने की खबर को आज दैनिक जागरण और जनसत्ता सहित सभी अखबारों ने सचित्र दिया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, जापान में इस टूर्नामेंट में अब तक देश के कुल 7 में से 4 पदक महिलाओं के नाम हैं। अमर उजाला की खबर है, मोबाइल में इंटरनेट नहीं बल्कि सिर्फ वॉइस कॉल और मैसेज की सुविधा चाहने वालों के लिए अच्छी खबर। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने दूरसंचार कंपनियों से मोबाइल रिचार्ज में बिना डेटा वाले सस्ते प्लान बढ़ाने को अनिवार्य किया। अब 30 दिन की वैधता लागू की जाएगी। नवभारत टाइम्स लिखता है, मोबाइल स्क्रीन गार्ड यानी स्क्रीन प्रोटेक्टर अब बिना गुणवत्ता जांच के नहीं बिकेंगे। नया नियम 1 अप्रैल 2027 से लागू होगा। टूथपेस्ट साबुन शैम्पू पर लाल हरा बिंदु अनिवार्य, देखते ही पता चलेगा कि उत्पाद शाकाहारी है या नहीं। दैनिक भास्कर के अनुसार केंद्र सरकार ने इस संबंध में जारी की अधिसूचना।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने संघर्षों, व्यापारिक दबावों और जलवायु चुनौतियों के बीच विकासशील और अल्प विकसित देशों के बीच सहयोग मजबूत करने पर बल दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे का समर्थन किया। ऊर्जा आपूर्ति से जुड़ी बुनियादी व्यवस्था को ईरान की चौकियों से दूर स्थानांतरित करने की आवश्यकता पर बल दिया। 11वां आयुर्वेद दिवस आज देश भर में मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और जापान एशियाई खेलों में भारतीय रोवर्स ने पुरुष सिंगल्स और डबल स्कल्स स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar calls for Global South cooperation amid conflicts, trade pressures and climate challenges. Also stresses for stronger ties with Latin American, Caribbean states as trade crosses $50 billion. US President Donald Trump backs India, Middle East, Europe economic corridor. Stresses on shifting energy infrastructure away from Iranian checkpoints. 11th Ayurveda Day being observed across the country today. Forecast of heavy to very heavy rain in Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh, Odisha and Telangana today. And at Asian Games in Japan, Indian rowers qualify for finals of men's singles and doubles sculls event. And now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar has called for greater cooperation among Global South countries to address rising geopolitical tensions, economic challenges, climate shocks and pressures on the multilateral system. The minister was addressing the meeting of Global South countries on the sidelines of the 81st UN General Assembly in New York yesterday. Dr. Jayashankar said the global situation was marked by increasing conflicts, pressure on supply chains and trade, fragmented investment flows, growing debt vulnerabilities and inadequate development finance. He said Global South countries should work together to address key challenges including supply chain, finance and connectivity bottlenecks.
3: We can see that in conflicts and geopolitical tensions, in the disruption of supply chains, in increasing trade barriers, fragmented investment flows, climate shocks, and the fact that international law and rules are under great pressure.
2: Dr. Jayashankar also met Italy's Deputy Prime Minister and Foreign Minister Antonio Tajani on the sidelines of the United Nations General Assembly. In a social media post, the minister said their discussions focused on the Gulf situation, the India-Middle East-Europe Economic Corridor, IMEC, and the Ukraine conflict. He said the two countries aim to expand collaboration and increase trade ties. Addressing the India-CELAC Foreign Ministers meeting during the UN High-Level Week 2026 in New York, the External Affairs Minister called for stronger economic and development partnership between India and the Community of Latin American and Caribbean States, CELAC. He said India-CELAC trade has now crossed $50 billion annually. Dr. Jayashankar said India emerged as one of the world's major economies over the past decade, with its GDP more than doubling and growth remaining robust. He added that

0: Gujarat. Quoting President Murmu's message to the film actors, the paper writes, "Do not endorse harmful products." India joins a new international platform, P4M, for multilateralism amidst growing global tensions, cites the Pioneer. PM Modi announces Project Rhino, hails Assam's conservation success on World Rhino Day, is the headline in the Statesman. Financial Express cites a report by World Economic Forum saying 98% chief economists see India having strongest growth outlook. Toiletries must now reveal origin of ingredients with distinct symbols for vegetarian and non-vegetarian ingredients, says a headline in the Pioneer. And finally, all the dailies have covered the news of Indian women cricketers clinching first gold in Japan Asiad in an emphatic fashion. And with that, it's back to you, Anuja.
1: Thank you, Tanvi. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar calls for Global South cooperation amid conflicts, trade pressures and climate challenges, also stresses for stronger ties with Latin American, Caribbean states as trade crosses $50 billion. U.S. President Donald Trump backs India, Middle East, Europe economic corridor, stresses on shifting energy infrastructure away from Iranian checkpoints. 11th Ayurveda Day being observed across the country today. Forecast of heavy to very heavy rain in Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh, Odisha and Telangana today. And at Asian Games in Japan, Indian rowers qualify for finals of men's singles and doubles sculls event. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर।
3: दस लाख की लॉटरी मुझे, वाओ!
4: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
5: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: कार्यक्रम संबंधी एक सूचना है, किसान भाइयों, इस बुधवार दिनांक 23/9/2026 यानी कि आज शाम 6:50 से 30 मिनट अवधि के हेलो ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम में आज का विषय है पशुपालन एवं पशु रोग। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर जितेंद्र सिंह गंधार। किसान भाई, पशुपालक भाई, पशुपालन एवं पशु रोगों जैसे लंपी रोग, खुरपका, मुंहपका, अफरा, गलघोटू, पशुओं का आहार एवं आवास व्यवस्था, टीकाकरण जैसे बिंदुओं पर जानकारी हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर जितेंद्र सिंह गंधार। आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565-253-0135 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 9412225575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस संबंध में आप सीधे बातचीत कर सकते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह गंधार से। कार्यक्रम का समय होगा बुधवार दिनांक 23/9/2026 यानी कि आज शाम 6:50 पर। सूचना समाप्त हुई। और आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।

सोनू के टीटू की स्वीटी। इस फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना अरिजीत सिंह और साथियों की आवाजों में। कुमार के लिखे इस गाने की धुन बनाई थी रोचक कोहली ने।

0: अपनाए।
1: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
2: फिल्म संगीत का आनंद आप ले रहे हैं गीतांजलि कार्यक्रम में आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से।

नंदिनी शिखर और साथियों की आवाजों में अभी आपने सुना रावण फिल्म का ये गीत। लिखा था पंछी जालोनवी ने और धुन बनाई थी विशाल शेखर ने।

सूर्यवंशम फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना कुमार सानू की आवाज में। गीत को लिखा था समीर ने और धुन बनाई थी अनु मलिक ने। इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि अब समाप्त होता है।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9 बजने को हैं और आइए अब आपको सुनवाते हैं हिंदी वार्ता के अंतर्गत मुद्दे की बात, जिसमें आज का विषय है दिनकर साहित्य के विविध आयाम। वार्ताकार हैं डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा और इनसे भेंट कर रहे हैं OP सिंह।
1: श्रोताओं, कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, और वो इसीलिए कि दर्पण अपना कुछ नहीं रखता, जो होता है उसको उसी रूप में दिखाता है। एक साहित्यकार और रचनाकार निश्चित तौर पर वर्तमान में रह करके अपने आगे भी देखता है और पीछे भी देखता है। वो भूत से प्रेरणा लेता है, सीख लेता है, और वर्तमान में रह करके भविष्य के उस ताने वाने को बुनता है, वो रास्ते तलाशता है जो सामान्य जन के लिए सुगमता प्रदान कर सकते हैं। समय कोई भी रहा हो, लेकिन जब भी और जो भी साहित्य लिखा गया, सुधी लोगों ने लिखा, निश्चित तौर पर हमेशा प्रेरणादायक रहता है। ऐसे ही एक साहित्यकार जिनको हम दिनकर के नाम से जानते हैं, रामधारी सिंह दिनकर, वो ओझ के भी कवि हैं, वो प्रेरणा भी देते हैं, वो संबल भी देते हैं, और कहीं रास्ते अगर डगमगाते हैं तो सहारा भी देते हैं। दिनकर पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा जी। आप डीलिट, आप प्रधानाचार्य सेवानिवृत्त हुए, और दिनकर पर उनका बहुत बड़ा काम है। दिनकर को वो समझते हैं, दिनकर को वो जानते हैं, और हमारे और आपके लिए दिनकर किस रूप में प्रासंगिक हैं, दिनकर की प्रासंगिकता आज कितनी है, समरसता की जब आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो दिनकर क्या रास्ता हमारे लिए लेकर के आ सकते हैं, इन्हीं सब विचारों को और इन्हीं सभी प्रश्नों को आज हम उनके साथ साझा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत। नमस्कार।
2: धन्यवाद। नमस्कार
1: जी। तो दिनकर पे तो जितना कहा जाए कम है, जितना सोचा जाए कम है, लेकिन आप तो दिनकर को इतने बारीकी से और करीबी से जानते हैं, तो श्रोताओं के लिए बताइए कि आज की जो प्रासंगिकता है, हम यहीं से चलेंगे, वो कितनी है? जब आप विविधता देखते हैं, आज चारों तरफ थोड़ा सा ऐसा वातावरण देखते हैं जहाँ रास्ते रुके हुए से नजर आते हैं, तो दिनकर आज कितने प्रासंगिक हैं?
2: दिनकर का प्रादुर्भाव उस समय हुआ था जब हमारा देश स्वतंत्रता के आंदोलन के लिए पूरी तरह यौवन पर था। ये छायावादोत्तर कालीन साहित्यकार हैं। मैं साहित्यकार इसलिए बोल रहा हूँ, ये केवल कवि ही नहीं है, इन्होंने प्रचुर मात्रा में गद्य लेखन भी किया है। तो जब देश में स्वतंत्रता के लिए छटपटाहट हो रही थी, उस समय दिनकर जी का प्रादुर्भाव हुआ, और उस समय दिनकर जी ने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया अपने देश के जवानों में स्फूर्ति भरने के लिए, अपने देश के जवानों में राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा देने के लिए। परशुराम की प्रतीक्षा में उन्होंने लिखा है, नेता निमग्न दिन रात शांति चिंतन में, कवि कलाकार ऊपर उड़ रहे गगन में, यज्ञाग्नि हिंद में समिध नहीं पाती है, पौरुष की ज्वाला रोज बुझी जाती है, पौरुष की ज्वाला रोज बुझी जाती है।
1: इसीलिए शायद दिनकर ओज के कवि है,
2: ओज और अनल दोनों
1: जी,
2: है
1: जी जी।

0: के पूरे काव्य साहित्य में, हालांकि और भी काव्य गुण उनके काव्य में प्राप्त होते हैं, देखते हैं, वो श्रृंगार के भी कवि हैं, उनके काव्य में करुणा भी है, उनके काव्य में ओज भी है और अनल भी है। दिनकर जी ने अपने काव्य के माध्यम से यह प्रतिपादित कर दिया है कि जो ओज है, जो वीर रस है, उसकी मूल में श्रृंगार है,
1: वहां से मतलब वो प्रेरणा ले रहे।
0: प्रेरणा लेते
1: जी
0: हैं।
1: जी
0: उर्वशी में उन्होंने लिखा, उर्वशी एक श्रृंगारिक महाकाव्य है और उस श्रृंगारी महाकाव्य में उन्होंने लिखा है, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं, उर्वशी अपने समय का तूर्य हूं मैं। तो ये क्या है, ये श्रृंगार के माध्यम से ओज का प्रस्फुटन है। जहां तक आपने जो प्रश्न किया है उनके काव्य की प्रासंगिकता का, तो दिनकर का काव्य युग युगों में प्रासंगिक है और प्रासंगिक रहेगा। वैराग्य छोड़ बाहों की विभा संभालो, चट्टानों की छाती से दूध निकालो, है रुकी जहां भी धार पकड़ निचोड़ो, पीयूष चंद्रमाओं को पकड़ निचोड़ो। इस तरह से वो अपने राष्ट्र के जो नौजवान हैं उनमें हमेशा से ऊर्जा भरते चले आ रहे हैं, और यह उनका जो काव्य है वो आगे भी युगों युगों तक
1: जी
0: प्रासंगिक रहेगा। वो
1: जी
0: एक कालजयी साहित्यकार हैं।
1: आपने अपनी बातचीत की जो शुरुआत की कि दिनकर का प्रादुर्भाव तब हो रहा है जब आजादी की छटपट आटती
0: हाँ जी,
1: है, थोड़ा सा निराशा भी थी, आशाएं भी थी, लेकिन
0: हाँ
1: निराशाएं भी थी,
0: हाँ
1: वहां से दिनकर निकल करके आ रहे हैं। लेकिन आजादी के 75 और 80 साल लगभग हम जा रहे हैं, और विकसित भारत संकल्प लेकर के हम 47 में जब आजादी की 100 साल मनाएंगे तो विकसित भारत हो, ऐसा संकल्प है। तो प्रासंगिकता के बारे में जब मैं पूछ रहा था, यही जानना चाह रहा हूँ कि आज जो दिनकर का साहित्य है, चाहे वो गद्य में हो चाहे पद्य में हो, वो क्या कहीं और ज्यादा प्रासंगिक नहीं हो जाता है?
0: आज
1: वो
0: की
1: सब
0: परिस्थितियों में तो उस युग से अधिक प्रासंगिक है, क्योंकि आज हमारे देश में जो अत्याचार अनाचार छा रहा है, पक्षपात हो रहा है, दिनकर हमेशा समन्वयवादी कवि रहे हैं। वो जहां तक हो सकता है युद्ध नहीं चाहते, जहां तक हो सकता है वो शांति चाहते हैं। दो न्याय अगर तो आधा दो, यदि इसमें भी कुछ बाधा हो तो दे दो केवल 5 गांव, रख लो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर आसन उठाएंगे। ये रश्मिरथी का प्रसंग है
1: जी,
0: दिनकर जी
1: मतलब
0: का।
1: एक सामाजिक समरसता वाली कि हम न्याय से अगर हमें थोड़ा भी दे दोगे तो उसमें हम हमारा गुजारा
0: हाँ
1: हो जाएगा,
0: हाँ हाँ
1: लेकिन
0: हाँ
1: हम युद्ध नहीं चाहते। ये मतलब महाभारत की उसको वो प्रासंगिकता दिखा रहे हैं।
0: दुर्योधन
1: पांडव
0: वह
1: पा,
0: भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, जो समाज से आशीर्वाद मिलता दुर्योधन को उसने वो भी नहीं माना। अंत में फिर जब बात कैसे भी नहीं बनती है तो दिनकर जी कहते हैं कि अब याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। वो फिर इतने स्वाभिमानी व्यक्ति भी हैं कि वो वहीं उनको चुनौती दे देते हैं कि अब तुम नहीं मानोगे, कौरव पक्ष को चुनौती देते हैं, यदि नहीं मानोगे तो अब रण क्या, तैयार हो
1: जी
0: जाइए।
1: जी
0: हाँ
1: जी जी जी वैसे तो आपने कहा कि दिनकर के बहुत सारे आयाम हैं, लेकिन फिर भी मैं ये जानूं कि अगर वो उनका कवित्व किस क्षेत्र में, आपने करुणा की बात की, आपने अनल की बात की, आपने ओज की बात की, तो लिख तो वो चारों तरफ रहे, विसंगतियों को प्रासंगिक तो बना रहे हैं, लेकर के आ रहे
0: मैंने
1: सतह
0: अभी
1: पे।
0: आपको
1: जी
0: बताया
1: जी
0: है,
1: जी
0: मैंने अभी आपको बताया कि वो समन्वयवादी कवि हैं, वो शांति के पक्षधर हैं, वो युद्ध नहीं चाहते,
1: लेकिन फिर भी
0: लेकिन
1: आवश्यक हो जाए।
0: आवश्यक हो जाए तो वो स्वाभिमान से कहीं सौदा नहीं कर सकते।
1: अच्छा, इसमें मैं जानना चाहूंगा कि दिनकर का एक संस्मरण है उसमें, जो आप भी शायद उसको करेंगे, कि जब साहित्य होता है, साहित्यकार होता है, तो वो दिशा बोध देता है, लोगों को संबल देता है, लोगों को सहारा देता है, और साहित्य और साहित्यकार का जो संबल होता है वो बोध परक होता है। कि नेहरू जी के बारे में और दिनकर जी के बारे में जो एक संस्मरण है, उसको थोड़ा सा उसमें प्रकाश डालिए कि जब वर्तमान परिस्थितियों में जब कहीं नेतृत्व दिशाहीन हो जाता है, जब वो लड़खड़ाता है, जब वो थोड़ा सा डगमगाता है, तो साहित्य और साहित्यकार जो जीवन में रच रहे हैं, बस रहे हैं, जो लोक जीवन में जुड़े हुए हैं, वो किस तरह संबल बनकर के आते
0: बहुत
1: हैं।
0: अच्छा

0: बहुत अच्छा
1: जी
0: प्रश्न आपने किया है।
1: जी
0: एक इंटरव्यू में गया था मैं,
1: जी
0: इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया कि नेहरू जी ने दिनकर जी को राज्यसभा सदस्य मनोनीत किया था। मैंने कहा हाँ। फिर भी दिनकर जी सत्ता के विरोध में लिखते थे। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा वो किसी सत्ता के पिछलग्गू नहीं थे, सत्ताएं उनकी पिछलग्गू थी। एक बार नेहरू जी किसी सभा में जा रहे थे, वहां उनको अध्यक्षता करनी थी, अपने साथ दिनकर जी को ले गए। आगे जब वो सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे तो नेहरू जी के पैर लड़खड़ाए, पीछे से दिनकर जी ने उनको साध लिया। फिर नेहरू जी ने पीछे मुड़ के उनका आभार व्यक्त किया तो मुस्कुराते हुए दिनकर जी ने कहा कि जब राजनीति लड़खड़ाती है
1: क्या बात
0: तो
1: है।
0: साहित्य उसको संबल प्रदान करता है, इसलिए साहित्य तो हर दिशा में संबल देता है, हमारा मार्गदर्शन करता है, हमको दिशा बोध करता है। साहित्य तो बहुत हितेन
1: जी
0: सहितम इति साहित्यम, विद्वानों ने कहा है कि साहित्य जो होता है वो हितकारी होता है, हमेशा हित की बातें बताता है।
1: जी। अब
0: हाँ
1: मैं आपसे जानना चाहूंगा, थोड़ा सा समय कम है, कि आपका जो रुझान है दिनकर जी के साथ कैसे हुआ, मतलब कैसे आप दिनकर को आपने अपने जीवन का लिखने का, पढ़ने का और उसका वो
0: मैं
1: बना
0: समझ
1: ले।
0: गया आपका प्रश्न।
1: जी
0: मैं जब प्राइमरी कक्षा पास करके कक्षा 6 में आया तो हमारी जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक थी उसमें मेरे नगपति मेरे विशाल हिमालय के प्रति उनकी रचना थी। उस रचना ने मुझे सर्वाधिक सर्वप्रथम प्रभावित किया। मेरा कोई ऐसा कोई उस समय से पूर्व योजना भी नहीं थी कि मुझे पीएचडी करनी है, क्योंकि मैं तो उस समय कक्षा 6 का विद्यार्थी था। लेकिन जब मैं कक्षा 9 में आया उस समय दिनकर जी का देहावसान हुआ, 1974 में। 1974 में जब देहावसान हुआ तो मैं अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में जाकर पत्रिकाएं और पुस्तकें पढ़ता रहता था। उस समय वहां धर्मयुग और साप्ताहिक हिंदुस्तान दोनों पत्रिकाएं दिनकर विशेषांक के रूप में आईं। पता नहीं जाने क्या मन में आया, वो पत्रिकाएं मैंने रख ली, खरीद ली और मेरे पास रहीं, सुरक्षित रखी। मैं उनको पढ़ता रहता था, उनके विचारों से प्रभावित होता रहता था। जब कक्षा 11 में आया तो दिनकर जी की रश्मिरथी हमारे पाठ्य पुस्तक में रैपिड रूप रीडिंग के रूप में निर्धारित हुई। अब मैं ब्रिजवासी क्षेत्र का होने के कारण हमारे यहाँ दाऊ जी में नौटंकी वगैरह आती हैं मेले
1: जी
0: में,
1: जी बिल्कुल।
0: तो मैं नौटंकी देखता था, अपने परिवार के लोगों से छुप छुप कर चोरी चोरी नौटंकी देखता था। लेकिन जो नौटंकी का वीर रस होता है वो बड़ा प्रभावित करता था और उसका संगीत। अब जब मुझे रश्मिरथी मिल गई तो रश्मिरथी एक ऐसा खंड काव्य है दिनकर जी का जो बहुत ही गेय है, भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों की ओर से बहुत ही समृद्ध है। तो मैं उसका पाठ करता था नौटंकी की स्टाइल में।
1: क्या बात है।
0: गर्मियों की जब छुट्टी हो जाती थी तो हमारे यहाँ गाय भैंस हम चराने ले जाते हैं, गाय भैंस जब चराते थे तो मेरी बगल में रश्मिरथी लगी रहती थी, और गैया भैंस चर रही होती थी। हमने खूब गाय भैंस चराई हैं अपने ब्रज क्षेत्र में।
1: जी
0: मैं उसका सस्वर पाठ किया करता था रश्मिरथी का।
1: जी
0: रश्मिरथी के अधिकांश खंड मुझे जवानी याद हो गई। जब कहीं अंताक्षरी वगैरह की बात आती थी
1: तो आप
0: तो मैं
1: रश्मिरथी।
0: रश्मिरथी से ही उद्धृत किया करता था।
1: जी
0: बाद में प्रभु की कृपा माँ सरस्वती की ऐसी अनुकंपा हुई कि दिनकर मेरे शोध के अंग बने। हालांकि मैंने ग्रेजुएशन में हिंदी नहीं पढ़ी, उस समय विषयों की बाध्यता नहीं थी। एमए हिंदी में करने के बाद, जो एमए हिंदी में कर रहा था उस समय डिजर्टेशन का एक पेपर होता था, तो परशुराम की प्रतीक्षा में वो जो तत्व मैंने डिजर्टेशन किया, लघु शोध प्रबंध लिखा और बाद में दिनकर के काव्य में मिथक इस विषय पर मैंने शोध कार्य किया, और डीलिट में भी दिनकर जी मेरे अध्ययन के एक अंग रहे।
1: तो इस तरह दिनकर आपके चारों तरफ एक ताना बाना बुना, वो बाल्यकाल से
0: मेरा
1: ही
0: नाम
1: रहा।
0: दिनेश है
1: जी
0: और मैं दिनेश जो है वो दिनकर को पढ़ते पढ़ते दिनकर में रम गया हूं। आज 8-10 पुस्तकें दिनकर जी पर प्रकाशित हो चुकी हैं, और प्रतिवर्ष पहले मैं ऑनलाइन कार्यक्रम कराता था, भौतिक रूप से संगोष्ठियां कराता था दिनकर जयंती पर, दिनकर जी की पुण्यतिथि पर, और अब मैं अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार कराता हूँ, शोध संगोष्ठियां कराता हूँ।
1: चलिए, बहुत बहुत बधाई।
0: मुझे बहुत आनंद आता है दिनकर के
1: जी
0: साथ।
1: जी कि दिनकर के साहित्य

0: से, दिन करके व्यक्तित्व से, दिन करके कृतित्व से, जन सामान्य को आप ऐसे ही जोड़े रखें, और जो वहाँ से ओज, जो प्रेरणा और जो वहाँ से उत्प्रेरणा मिलती है, उसको समाज के साथ, समाज के लोगों के साथ ऐसे ही बांटते रहें। आपको एक बार पुनः शुभकामनाएं। और श्रोताओं, आप थे डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा जी। बात दिनकर को लेकर के हो रही थी, तो दिनकर हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं, आगे भी बने रहेंगे। आप आए विचार और वाणी से, हमारे श्रोताओं से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: हिंदी वार्ता के अंतर्गत मुद्दे की बात में आज का विषय था दिनकर साहित्य के विविध आयाम। वार्ताकार थे डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा और इनसे भेंट कर रहे थे ओपी सिंह। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से FM 102.2 MHz पर। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम अब से थोड़ी देर में होगा। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए लखनऊ और झांसी जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं लखनऊ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मुमताज अली का।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 सितंबर 2026 को लखनऊ सहित देश भर में 45 स्थानों पर आयोजित 20वें रोजगार मेला का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। इस मौके पर अलग अलग सरकारी संगठनों में नौ नियुक्त युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह उपलब्धि हजारों परिवारों के लिए बहुत खुशी की बात है और यह उम्मीदवारों की अपनी कड़ी मेहनत और उनके माता पिता के बड़े त्याग का सम्मान है। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय युवाओं के टैलेंट और स्किल ने पूरी दुनिया का भरोसा जीता है।
2: आज आप देख रहे हैं हमारे युवाओं के टैलेंट और स्किल्स ने पूरी दुनिया का भरोसा जीता है। दुनिया को हमारे इनोवेटर्स, हमारे एंटरप्रेन्योर्स और हमारी युवा शक्ति से बहुत उम्मीदें हैं।
1: लखनऊ में केंद्र सरकार के विदेश, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने रोजगार मेला में भाग लिया। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने 167 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर श्री सिंह ने नियुक्ति पाने वाले युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज रोजगार पाकर आप और आपका परिवार सशक्त हुआ है। उन्होंने कहा कि आज से आपकी जिम्मेदारी है कि आप जो भी कार्य करें या सोचकर करें कि आपके कार्य से देश सेवा हो रही है।
3: आप एक बहुत जिम्मेदार पद पे इस देश के सिस्टम ने, इस देश की जनता ने, आपके को जो माता पिता हैं उनके आशीर्वाद से आप इस पद पे आए हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण रोल आप इस देश को मजबूत करने में निभा रहे हैं जिससे आप देश के हजारों नागरिकों का जिंदगी आसान कर सकते।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 76वां जन्मदिवस 17 सितंबर 2026 को पूरे लखनऊ में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और सामाजिक संगठनों द्वारा कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी के राष्ट्र प्रेरणा स्थल में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम का शुभारंभ किया। दिया जलाकर उन्होंने प्रदेशवासियों को प्रधानमंत्री की सेवाओं का स्मरण कराया। केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 18 सितंबर 2026 को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक व्यापक समीक्षा बैठक की। बैठक में दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से चल रहे उपायों की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान मंत्री ने सर्दियों के मौसम की शुरुआत से पहले वायु प्रदूषण के स्तर में उल्लेखनीय कमी सुनिश्चित करने के लिए तेजी से कार्यान्वयन, विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय और सख्त अनुपालन की आवश्यकता पर जोर दिया। श्री यादव ने प्रदेश सरकार द्वारा बड़ी संख्या में वृक्ष लगाने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना की।
4: विगत वर्षों में जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के एक पेड़ माँ के नाम अभियान पे उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में वृक्षारोपण किया है, उत्तर प्रदेश को जो वृक्षारोपण के टारगेट दिए गए थे उससे भी ज्यादा संख्या में उत्तर प्रदेश ने उस उपलब्धि को हासिल किया, उसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ।
1: स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026 में लखनऊ को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।

0: यही नहीं, लखनऊ नगर निगम के वार्ड 70 को भी देश के सर्वश्रेष्ठ वार्ड का सम्मान मिला है। 7 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में महापौर सुषमा खरकवाल और नगर आयुक्त गौरव कुमार ने अन्य अधिकारियों के साथ ये सम्मान प्राप्त किया। महापौर ने सम्मान प्राप्त करने के लिए लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और लखनऊ की जनता का धन्यवाद दिया। भारतीय रेलवे ने लखनऊ मंडल के क्षेत्रों से अधिक रूट किलोमीटर पर कवच 4.0 के लिए 252 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। स्वदेशी तकनीक के जरिए रेलवे सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। मंजूर की गई यह परियोजना पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के बचे हुए हिस्सों में कवच 4.0 का विस्तार करेगी, जिससे रेल परिचालन के लिए सुरक्षा और संरचना और मजबूत होगी। लखनऊ में इस समय गणेश उत्सव की धूम है। गोमती नदी के किनारे झूलेलाल वाटिका में शहर का सबसे बड़ा पंडाल सजाया गया है। श्री गणेश प्राकट्य कमेटी लखनऊ द्वारा 14 सितंबर 2026 से शुरू हुआ यह कार्यक्रम 25 सितंबर को शोभा यात्रा और विसर्जन के साथ खत्म होगा। इसके अलावा भी कई स्थान पर श्री गणेश की प्रतिमाएं स्थापित की गयी और उनका विसर्जन किया जा रहा है। 19 सितंबर 2026 को लखनऊ में राधाअष्टमी धूमधाम से मनाई गयी। इस अवसर पर इस्कॉन मंदिर में विशेष आयोजन किया गया। सुबह 4:30 बजे मंगला आरती के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। तुलसी आरती, गुरु वैष्णव भजन के बाद प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम खत्म हुआ। इस पूरे आयोजन में हजारों की संख्या में भक्तों ने भाग लिया। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 6 अक्टूबर 2026 को लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी गाना स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेला जाएगा। इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। मैच का सबसे सस्ता टिकट 399 रुपए का होगा। 19 सितंबर 2026 को मैच के लिए टिकट की लॉन्चिंग की गई। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव प्रेम मनोहर गुप्ता ने बताया कि मुकाबले के आयोजन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि मैच के लिए टिकटों की शुरुआती कीमत 399 रुपए निर्धारित की गई है। वहीं सबसे महंगा टिकट साउथ लाउंज का ए और बी ब्लॉक का रहेगा, जिसकी कीमत 13,500 रुपए होगी। यूपीसीए के कोषाध्यक्ष सचिन आनंद शुक्ला ने बताया कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाले इस T20 मुकाबले के लिए टिकटों की ऑनलाइन बिक्री शुरू हो गई है।
1: लखनऊ जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं झांसी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विकास कुमार का।
2: उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री तथा झांसी के प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह ने 17 और 18 सितंबर को झांसी का दौरा किया। उन्होंने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले के विकास कार्यों तथा कानून व्यवस्था की समीक्षा की। जन समस्याओं के शीघ्र निस्तारण और विकास परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। झांसी में सेवा संकल्प अभियान के तहत विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। महाराजा गंगाधर राव कला मंच परिसर में प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री तथा झांसी के प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह ने फीता काटकर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सदर विधायक रवि शर्मा, MLC रमा निरंजन, जिलाधिकारी गौरांग राठी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विकास कुमार सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। प्रदर्शनी में केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, सेवा सुशासन, गरीब कल्याण, विकसित भारत 2047, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, खेल, पंचायती राज, अवस्थापना और कनेक्टिविटी तथा एक जनपद एक पार्क जैसी परियोजनाओं और उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया है। प्रदर्शनी 2 अक्टूबर तक आम जन के अवलोकन के लिए खुली रहेगी। अधिकारियों ने लोगों से प्रदर्शनी का अवलोकन कर विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने की अपील की। प्रभारी मंत्री ने सेवा संकल्प अभियान को भी व्यापक स्तर पर आयोजित करने के निर्देश दिए। अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा और जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों में कुल 27 कार्यक्रम आयोजित किए जाने की जानकारी दी गई। झांसी महोत्सव के लिए 50 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई। साथ ही बुंदेलखंड में इको टूरिज्म की संभावनाओं को विकसित करने पर जोर दिया गया। जिले में लगभग 15 करोड़ रुपए की पर्यटन परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई। इसमें पर्यटन स्थलों के संरक्षण, मंदिरों के विकास तथा पर्यटकों की सुविधाओं के विस्तार से जुड़े कार्य शामिल हैं। प्रभारी मंत्री ने महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण भी किया। आयुष्मान कार्ड धारक मरीजों से बाहर से दवाएं और डायलिसिस संबंधित सामान मंगाए जाने की शिकायत पर जांच के निर्देश दिए गए। मेडिकल कॉलेज में 500 बेड की इमारत को शुरू करने के लिए करीब 47 करोड़ रुपए की आवश्यकता बताए जाने की जानकारी भी सामने आई। झांसी ललितपुर के सांसद अनुराग शर्मा की अध्यक्षता में कोर कमेटी की बैठक में शहर की यातायात व्यवस्था, पेयजल, सड़क, विद्युत आपूर्ति तथा निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा की गई। जनहित से जुड़े कार्यों में तेजी लाने पर चर्चा हुई। रेल सुविधाओं को लेकर भी झांसी मंडल के सांसदों की बैठक हुई, जिसमें झांसी ग्वालियर और खजुराहो स्टेशन के पुनर्विकास सहित विभिन्न रेल परियोजनाओं की समीक्षा की गई। सांसद अनुराग शर्मा ने बरुआ सागर में बुंदेलखंड एक्सप्रेस के ठहराव, ललितपुर स्टेशन के विकास और कुछ रेलवे क्रॉसिंग से जुड़े कार्यों को शीघ्र पूरा करने का सुझाव दिया। सांसद अनुराग शर्मा ने संसद में बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में विश्व स्तरीय डेटा सेंटर स्थापित किए जाने की आवश्यकता का मुद्दा भी उठाया। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य

0: योजना के तहत जिले में पात्र परिवार को योजना से जोड़ने और आयुष्मान कार्ड बनाने का अभियान जारी रहा। विशेष अभियान के माध्यम से लाभार्थी तक योजना का लाभ पहुंचाने पर जोर दिया गया। मेडिकल कॉलेज में आयुष्मान कार्ड धारकों के बाहर से दवा मंगाए जाने की शिकायत के बाद जन औषधि केंद्र की उपलब्धता की भी जाँच की गयी। जाँच के दौरान निर्धारित 200 के मुकाबले 179 प्रकार की दवाएं उपलब्ध मिली। झांसी में डेयरी कॉन्क्लेव सुवर्ण दुग्ध मृत संवाद समागम आयोजित किया गया, जिसमें बुंदेलखंड में दुग्ध उत्पादन डेयरी उद्योग में निवेश और पशुपालकों को सरकारी योजना का लाभ दिलाने पर चर्चा हुई। जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास की ओर से युवा कार्यक्रम को उद्यमियों को सरकारी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए आवेदन प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। एक जनपद एक व्यंजन योजना के माध्यम से स्थानीय परंपरागत कारोबारियों को प्रोत्साहन करने का प्रयास किया जा रहा है। झांसी में MSME और स्थलीय उत्पादकों को बढ़ावा देने के लिए वेंडर डेवलपमेंट से जुड़े कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। जिले को औद्योगिक गतिविधि का केंद्र बनाने की दिशा में योजना पर चर्चा हुई। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 के झांसी उरई खंड के करीब 44 किलोमीटर हिस्से को 4 लेन से 6 लेन में बदलने की परियोजना आगे बढ़ी। इसके लिए निविदा प्रक्रिया शुरू की गई है। प्रस्तावित परियोजना की अनुमानित लागत करीब 1453 करोड़ रुपए बताई गई। झांसी में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में बड़ी संख्या में मामलों का निस्तारण किया गया। सुलह और समझौते के माध्यम से मामलों के समाधान से बड़ी संख्या में पक्षकारों को राहत मिली।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: FM 102.2 MHz पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। प्रस्तुत है कार्यक्रम आबोहवा, विषय है आर्थिक विकास और पर्यावरण। आलेख और वाचन है श्रीमती उषा गोयल का।

आर्थिक विकास के चलते पर्यावरण का भौतिक, जैविक व सांस्कृतिक संकट मानव जाति पर मंडरा रहा है। श्रोताओं, आर्थिक विकास से उत्पादन भले ही बढ़ाया जा रहा हो, लेकिन गुणवत्ता में कमी अवश्य हो रही है। किसी भी देश में राष्ट्रीय आय की वृद्धि तथा आर्थिक विकास का लक्ष्य मानव का सामाजिक कल्याण है। श्रोताओं, यदि पर्यावरण क्षति की लागत पर आर्थिक विकास या राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, तो ऐसी वृद्धि को पर्यावरण क्षति के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। यदि पर्यावरण क्षति राष्ट्रीय आय की वृद्धि के मुकाबले अधिक है, तो राष्ट्रीय आय या उत्पादन में वृद्धि का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता। पर्यावरणीय प्रदूषण तथा पर्यावरण को होने वाले नुकसान, देश में अपराध, युद्ध, शांति स्थापना के लिए किए गए व्यय को राष्ट्रीय आय में से घटाने पर जो शुद्ध राष्ट्रीय आय बचती है, वही शुद्ध आर्थिक कल्याण का सूचक है। और यही कारण है कि विकास व पर्यावरण पर एक साथ विचार करना आवश्यक है। विभिन्न प्रकार के प्रदूषण के प्रभाव के कारण सभी देशों में समायोजित शुद्ध बचत निकालना ही सार्थक जान पड़ता है। आर्थिक विकास की प्रतिस्पर्धी दौड़ ने विश्व के सम्मुख वायु, जल, ध्वनि व मृदा संबंधी चुनौतियां खड़ी की हैं। श्रोताओं, घरेलू मल व कूड़े कचरे का निस्तारण, औद्योगिक अवशिष्ट तथा बहिश्राव, शव व राख का नदियों में बहाना, कृषि के अवशिष्ट पदार्थ, सड़े गले फल, साग सब्जियां, कीटनाशक व रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, नवीन पैकिंग व पैकेजिंग सामग्री, प्लास्टिक की थैलियां, जल स्रोतों में पशुओं का नहलाना, कपड़े धोना, आणविक ऊर्जा से निकला जल जल प्रदूषण फैला रहा है, जिससे जलीय जीवों को तो हानि हो ही रही है, साथ ही जल आधारित उत्पादन क्रियाओं में भी गिरावट आ रही है। सुरक्षित जल की लागतें बढ़ रही हैं। प्रदूषित जल से आंतों व दांतों के रोग तथा अन्य घातक बीमारियां भी पैदा हो रही हैं। अतः उद्योगों को अशुद्ध जल की निकासी के मानकों का पालन करना चाहिए। इसके लिए आवश्यक ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने चाहिए। हमें जनमानस को जागरूक करना होगा। श्रोताओं, हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत स्तर पर चेतना पड़ेगा। शर्तें न मानने वाली इकाइयों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करना आवश्यक है, ताकि पर्यावरण संबंधी मानकों का भलीभांति प्रयोग किया जा सके। वाहनों, कारखानों, रासायनिक उद्योगों से निकला धुआं, कूड़ा कचरा जलाने, मृत पशु पक्षियों से दुर्गंध, वायुमंडल में छिड़की जाने वाली दवाइयां, युद्ध सामग्री के निर्माण आदि से हवा में जहरीली गैसें मिल रही हैं, जिससे सांस की बीमारी, घुटन, फेफड़ों की बीमारी

हो जाती है, कई चर्म रोग भी हो जाते हैं और यहाँ तक कि देश की अमूल्य धरोहरें अर्थात सुंदर इमारतें व स्मारक भी कांति विहीन होते जा रहे हैं। श्रोताओं, परिवहन के साधन, घरेलू उपकरणों से निकला हुआ शोर, कल कारखानों से निकलने वाली कर्कश आवाज, राजनीतिक आंदोलन व रैलियां आदि ध्वनि प्रदूषण पैदा करते हैं, जिससे श्रवण शक्ति का ह्रास, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, अनिद्रा जैसे रोग आम हो रहे हैं। अतः सभी औद्योगिक व्यावसायिक इकाइयों, घरेलू व परिवहन साधनों को ध्वनि प्रदूषण संबंधी मानकों को ध्यान में रखना होगा। खनन निर्माण कार्य, भूमि का कटाव, जंगलों का विनाश, अवशिष्ट पदार्थों का अनुचित डिस्पोजल भूमि का अपरदन व उर्वरा शक्ति का ह्रास कर रहा है। अतः कचरे को श्रेणीबद्ध करके हमें उचित जगह पर डिस्पोज करना होगा। अंततः आर्थिक विकास और पर्यावरण दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि हम आर्थिक विकास करना बंद कर दें, लेकिन बात यह है कि हम संधारणीय विकास की धारणा को अपनाएं। आज आर्थिक विकास की प्रतिस्पर्धा ने ग्लोबल वार्मिंग, अम्ल वर्षा, जलवायु परिवर्तन आदि चुनौतियां विश्व पटल पर खड़ी की हैं। हमें विवेक से काम लेने की आवश्यकता है, संधारणीय विकास की दिशा में बढ़ने की आवश्यकता है। आर्थिक वृद्धि नहीं बल्कि आर्थिक कल्याण व गुणवत्ता को बढ़ाना आवश्यक है। इसके लिए प्रत्येक मानव को दृढ़ संकल्पित होना होगा कि वह प्रदूषण नियंत्रण संबंधी व्यक्तिगत जिम्मेदारी निभाए तथा सरकारी कानूनों का ईमानदारी से पालन करने में अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वहन करें।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आबो हवा, विषय था आर्थिक विकास और पर्यावरण। आलेख और वाचन था श्रीमती उषा गोयल का। अब सुनिए कार्यक्रम संबंधी एक सूचना। किसान भाइयों, इस बुधवार यानी आज दिनांक 9/2026 को, क्षमा कीजिएगा, इसे फिर से सुन लीजिए, आज दिनांक 23 सितंबर 2026 को शाम 6:50 से 30 मिनट अवधि के हेलो ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम में आज का विषय है पशुपालन एवं पशु रोग। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर जितेंद्र सिंह गंधार। किसान भाई, पशुपालक भाई, पशुपालन एवं पशु रोगों जैसे लंपी रोग, खुरपका, मुंहपका, अफरा, गलघोटू, पशुओं का आहार एवं आवास व्यवस्था, टीकाकरण जैसे बिंदुओं पर जानकारी हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर जितेंद्र सिंह गंधार। आप हमारा टेलीफोन नंबर 0565253-0135 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 9412225575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस संबंध में सीधे बातचीत कर सकते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह गंधार से। कार्यक्रम का समय होगा आज बुधवार दिनांक 23 सितंबर 2026 को शाम 6:50 पर। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज दर्पण। प्रस्तुति है सुरभि शर्मा की, संयोजन है OP सिंह का।
1: सुप्रभात, करते हैं एक नई शुरुआत। नए उमंग और नए उत्साह के साथ श्रोताओं, आज का विचार है समय का महत्व। अगर कोई भी कार्य समय पर नहीं किया जाए तो उसके मायने नहीं रहते। अगर हमें भूख लगी और समय हम भोजन नहीं करेंगे, उसके बाद भोजन करेंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। समय का हमारे जीवन में इतना महत्व है, अगर कोई कार्य निश्चित समय पर नहीं किया जाए तो उसका महत्व नहीं रह जाता। आज राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के जन्मदिवस भी है। उनके शब्दों में, नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। संबंध कोई भी हो, लेकिन यदि दुख में साथ ना दे अपना, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकल जाते हैं रोज जहां, वहां सुख की नित्य प्रतीक्षा का

रह जाता कोई अर्थ नहीं। मन कटुवानी से आहत हो, भीतर तक छलनी हो जाए, फिर बात कड़े प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। सुख साधन चाहे जितने हो, पर कायर रोगों का घर हो, फिर भी उन अनगिनत सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं। कितनी गूढ़ बात कविवर ने कही है कि अगर समय पर कोई चीज ना मिले तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, जिनकी वाणी में वो ओज था जो पत्थरों में भी जान डाल दे, उनका कहना था, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। एक कविता उनकी, कुछ पंक्तियां, तीन दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे चंद अनुनय के प्यारे प्यारे, उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से, सिंधु देहधर त्राही त्राही करता आगिरा शरण में, चरण पूज दासता ग्रहणी बंदा मूड बंधन में। जी हाँ, जब भगवान राम ने सागर से प्रार्थना करी कि मुझे रास्ता दे दिया जाए, लेकिन उन्होंने उनकी प्रार्थना का स्वीकार नहीं किया, तब भगवान ने धनुष उठाया और कहा कि अगर तुम मुझे रास्ता नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा संहार कर दूंगा। सागर उनके चरणों में आकर गिर पड़ा और उनकी बात मानी। जी हाँ, जब तक हम क्षमा याचना करते हैं तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहता, लेकिन वहीं अगर हमारे पास सामर्थ्य है उसके बाद हम क्षमा याचना करते हैं, निसंदेह सामने वाले को हमारी बात माननी पड़ती है। तो हमारा जो विचार था वो यही था कि समय पर की गई चीज़ मायने रखती है, और समय पर कोई भी कार्य हो, कोई भी ऐसी बात हो जो समय पर नहीं की गई तो उसका कोई मायने नहीं रह जाता, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता।

0: जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा ब्रज न केवल धार्मिक नगरी है अपितु पर्यटन नगरी के रूप में भी उसको विकसित किया जा रहा है। हमारे यहाँ जगह जगह से श्रद्धालु आते हैं, यहाँ आकर वो अपने मन में ठाकुर जी की छवि लेकर जाते हैं। अगर हमारा ब्रज साफ और स्वच्छ रहेगा तो उनके मन में जो छवि हमारे ब्रज की बनेगी वो अप्रतिम होगी। हमारे ब्रज को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए सभी लोग अपने अपने स्तर पर प्रयास करते हैं। ब्रज वैभव अभियान के अंतर्गत इस बारे में सोचा जा रहा है कि ब्रज को स्वच्छ और साफ रखा जाए। इसी संदर्भ में हमने जानकारी हासिल करी, हमारे साथ हैं।
1: मेरा नाम निशांत शर्मा है और हार्टफुलनेस संस्था की ओर से जो इनिशिएटिव चलाया जा रहा है ब्रज वैभव अभियान का, तो मैं उसका कोऑर्डिनेटर हूँ। ब्रज वैभव अभियान केवल एक स्वच्छता या पर्यावरण अभियान नहीं है, बल्कि यह भगवान श्री कृष्ण की पावन जन्मभूमि के प्राकृतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक वैभव को पुनर्जीवित करने का एक व्यापक प्रयास है। इस अभियान की प्रेरणा पूज्य दाजी के उस सोच से मिलती है कि व्रज की सेवा केवल मंदिरों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। व्रज की नदियां, कुंड, वन, वृक्ष, घाट और पूरी प्राकृतिक व्यवस्था भी हमारी आध्यात्मिक विरासत का हिस्सा है।
0: इसकी शुरुआत के पीछे क्या उद्देश्य है कि वो महसूस हुआ कि एक अभियान की शुरुआत होनी चाहिए?
1: जैसा कि मैंने आपको बताया, मथुरा श्री कृष्ण की लीला स्थली है, क्रीड़ा स्थली है। लाखों लाख श्रद्धालु मथुरा आते हैं। आज आप ब्रज की कल्पना करें तो आपको गंदगी का ढेर, सूखे उपवन, गंदी नदियां और ढेर सारा गंदगी का अंबार दिखाई पड़ता है। पूज्य दाजी ने यह संकल्प लिया कि हार्टफुलनेस व्रज के पुनरुद्धार के लिए, व्रज के वैभव को पुनः लौटाने के लिए एक अभियान चलाएगा। उस अभियान को व्रज वैभव अभियान का नाम दिया गया और उसी के अंतर्गत हम कई सारे कार्यों को कर रहे हैं।
0: अब तक ब्रज वैभव अभियान के अंतर्गत क्या-क्या कार्य हुए हैं?
1: अभियान के अंतर्गत कई स्तरों पर कार्य चल रहे हैं। सबसे प्रमुख रूप से है हर रविवार स्वच्छता अभियान। स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसमें हार्टफुलनेस के वॉलंटियर्स, स्थानीय नागरिक और विभिन्न स्थानों पर आने वाले सेवाभावी लोग मिलकर धार्मिक स्थलों, घाटों, परिक्रमा मार्गों और सार्वजनिक स्थानों पर श्रमदान करते हैं। इस अभियान के साथ साथ लोगों को कचरा ना फैलाने, सिंगल यूज प्लास्टिक से बचने और स्वच्छता को अपनी दैनिक जीवन शैली का हिस्सा बनाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, गोकुल, बरसाना और अन्य क्षेत्रों में इस प्रकार के कार्यक्रम हुए हैं।
0: क्या शासन प्रशासन का भी आपको इसमें

0: मिल रहा है।
1: शासन प्रशासन पूरी तरह हमारे साथ है। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद, मथुरा का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हार्टफुलनेस के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है और हर संभव मदद हमको देने का प्रयास कर रहा है।
0: हमारी ब्रज भूमि कुंडों की भूमि है, कहीं कृष्ण कुंड, कहीं राधा कुंड, कहीं ललिता कुंड, लेकिन आज के समय में जब उनकी स्थिति देखते हैं तो मन बड़ा द्रवित हो जाता है। कहीं गंदगी का ढेर है, कहीं कचरा लगा हुआ है। ऐसे में कुंडों की साफ सफाई को लेकर क्या कार्य किया जा रहा है?
1: जैसा कि आपने बताया, ब्रज की पहचान उसके पवित्र कुंडों से है, इसलिए अभियान में कुंडों के संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए विशेष महत्व

0: के संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए विशेष महत्व दिया गया है। कुंडों की वर्तमान स्थिति का अध्ययन, उनकी सफाई, जल की गुणवत्ता में सुधार, जैविक उपचार और भविष्य में उनके संरक्षण की व्यवस्था जैसे विषयों पर काम किया जाना है। विभिन्न कुंडों के लिए चरणबद्ध तरीके से कार्य योजना बनाई जा रही है। अभियान के व्यापक लक्ष्य में ब्रज के ऐतिहासिक जल स्रोतों और पवित्र कुंडों का पुनर्जीवन शामिल है।
1: हमारा जो ब्रज है वो वनों की भूमि कहा जाता है, निधि वन, महावन, गहर वन, भंडीर वन। लेकिन आज के समय कहीं ना कहीं ये वन सिमटते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। पर्यावरण
0: जी,
1: संरक्षण के लिए क्या कार्य किए जा रहे हैं?
0: अब पर्यावरण संरक्षण के लिए भी हम लोग बहुत कार्य कर रहे हैं। ब्रज की हरियाली को वापस लाना इस अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अंतर्गत वृक्षारोपण, स्थानीय प्रजातियों के पौधों को बढ़ावा देना और वनों के संरक्षण पर ध्यान दिया जा रहा है। हमारा प्रयास केवल पौधा लगाने तक सीमित नहीं है। पौधा लगाने के साथ साथ उसका संरक्षण और उसके बड़े होने तक उसकी देखभाल भी हमारी जिम्मेदारी है।
1: आम जनता का आपको इसमें कितना सहयोग मिल रहा है? क्या उसने भी अपनी भूमिका निभाई है?
0: ब्रज को केवल प्रशासन या किसी एक संस्था के प्रयास से स्वच्छ और सुंदर नहीं बनाया जा सकता। यह एक जन भागीदारी का अभियान है। हम चाहते हैं कि प्रत्येक ब्रजवासी और यहाँ आने वाला प्रत्येक श्रद्धालु यह महसूस करे, ब्रज हमारा है और ब्रज की स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी है। ब्रज वैभव अभियान के अंतर्गत हर व्यक्ति केवल इतना संकल्प ले कि वह कचरा नहीं फैलाएगा, प्लास्टिक का अनावश्यक उपयोग नहीं करेगा और अपने आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ रखने में सहयोग करेगा, तो बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है।
1: हार्टफुलनेस की इस अभियान में क्या भूमिका है?
0: जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे ग्लोबल गाइड हार्टफुलनेस के जो ग्लोबल गाइड हैं पूज्य दाजी, ये उनका इनिशिएटिव है। हार्टफुलनेस का मूल मूल उद्देश्य है आंतरिक शुद्ध हार्टफुलनेस का मूल उद्देश्य है आंतरिक शुद्धता और बाहरी स्वच्छता, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसी भावना के साथ स्वयं सेवक ध्यान और सेवा दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं। एक तरफ हम अपने भीतर शांति और संवेदनशीलता विकसित करते हैं, दूसरी तरफ उसी संवेदना को समाज और प्रकृति की सेवा में लगाते हैं। ब्रज वैभव अभियान के तहत हार्टफुलनेस और उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के बीच 1 जुलाई 2026 में MOU भी साइन हुआ है। इसमें कुंडों का जीवोद्धार, साफ सफाई, पौधारोपण, पर्यावरण संरक्षण, ऐतिहासिक स्थलों की देखभाल और जन भागीदारी शामिल है। इसके तहत हम कुंडों के विकास, पर्यावरण संरक्षण के लिए स्थानीय लोगों की भागीदारी के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं।
1: आगे आपकी क्या योजना है?
0: आगे हमारा लक्ष्य है कि जो कार्य शुरू हुए हैं ब्रज वैभव अभियान के अंतर्गत, जो भी कार्य हम लोग कर रहे हैं उन्हें लगातार और व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाया जाए। हर रविवार जो स्वच्छता अभियान हमारा चल रहा है वो निरंतर जारी रहेगा, ब्रज के वैभव को पुनः स्थापित होने तक जारी रहेगा। इतने बड़े संकल्प के साथ हम लोग चल रहे हैं। इसके साथ कुंडों का पुनरुद्धार, वृक्षारोपण, पौधों का संरक्षण, जल संरक्षण, प्लास्टिक मुक्त ब्रज, जन जागरूकता और अधिक से अधिक लोगों को सेवा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में जब कोई व्यक्ति ब्रज में आए तो उसे केवल मंदिरों और तीर्थ स्थलों की भव्यता नहीं, बल्कि स्वच्छ, हरा भरा, सुंदर और जीवंत ब्रज दिखाई दे। और अंत में हमारा संकल्प बहुत सरल है। हम सबने ये ठाना है, ब्रज को स्वच्छ बनाना है। यह केवल एक नारा नहीं है, बल्कि हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।
1: बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं से क्या कहना चाहिए?
0: बाहर से आने वाले श्रद्धा

0: श्रद्धालुओं से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जब आप ब्रज में आते हैं तो श्रद्धा भाव से आते हैं, आस्था लेके आते हैं, मनोकामना लेके आते हैं, दर्शन के भाव से आते हैं। पर कहीं ना कहीं अनजाने में आप ब्रज में आके गंदगी करते हैं, चिप्स के पैकेट फेंकते हैं, कोल्ड ड्रिंक की बोतल इधर उधर डालते हैं, अनजाने में आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। ब्रज में आने वाले सभी श्रद्धालुओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि जब भी ब्रज में आए कूड़ा करकट नहीं करते, ब्रज भी हमारा घर है और ब्रज के अंदर किसी भी तरीके से हमें गंदगी नहीं करनी चाहिए।
1: जो अभियान आपके द्वारा चलाया जा रहा है, इस अभियान को लेकर आप सभी ब्रजवासियों से क्या कहना चाहेंगे? ब्रज वैभव अभियान के
0: ब्रज वैभव अभियान के अंतर्गत हर रविवार अलग अलग शहरों से 200 से 250 वॉलेंटियर्स मथुरा आ रहे हैं। वो कुंडों की, घाटों की सफाई करते हैं, पब्लिक प्लेसेस पे जाके जन जागरूकता अभियान चलाते हैं और उसके बाद वो चले जाते हैं। ब्रजवासियों से मेरी अपील है कि जब बाहर से आने वाले लोग आपके घर को साफ कर रहे हैं तो आपकी तो ये प्रथम जिम्मेदारी बनती है कि उनके साथ मिलकर, कंधे से कंधा मिलाकर इस अभियान में जुड़िए। ब्रज को साफ रखना किसी एक संस्था की या किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, ये भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है। भगवान कृष्ण हम सबके आराध्य हैं, तो ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी बन जाती है कि इस ब्रज भूमि को हमें पुनः पवित्र करना है, पुनः पुनर्जीवित करना है, इस खोए हुए वैभव को वापस लौटाना है। तो हम सभी को एक साथ आकर इस ब्रज वैभव अभियान को एक जन आंदोलन का रूप देना पड़ेगा, जिससे कि जिस वक्त आप चिप्स का पैकेट कार से निकाल के फेंक रहे हो तो आपको वो दृश्य याद आ जाए कि ये मेरे आराध्य की भूमि है, ये मेरे कृष्ण भगवान का घर है, मैं इसको गंदा नहीं करूंगा।

अब डालते एक नजर आज के समाचारों पर। जिले के खिलाड़ियों के पास बॉक्सिंग, हॉकी और एथलेटिक्स में प्रदेश स्तर पर हुनर दिखाने का मौका है। खेल विभाग ने तीनों खेलों को प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिताओं का कार्यक्रम जारी कर दिया है। प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिताओं में जगह बनाने के लिए खिलाड़ियों को पहले जिला और फिर मंडलीय ट्रायल में चयन की परीक्षा पास करनी होगी। उप जिला क्रीड़ा अधिकारी आजम सिंह ने बताया कि सीनियर पुरुष बॉक्सिंग के जिला स्तरीय ट्रायल 23 सितंबर को दोपहर 3 बजे गणेशरा स्थित स्वर्गीय मोहन पहलवान स्पोर्ट्स स्टेडियम में होंगे। चयनित खिलाड़ियों का मंडलीय ट्रायल 25 सितंबर को आगरा में होगा। प्रदेश स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता 1 से 4 अक्टूबर तक झांसी में आयोजित की जाएगी। ट्रायल में शामिल होने वाले खिलाड़ियों को जन्मतिथि का मूल प्रमाण पत्र आधार कार्ड साथ लाना होगा। अब डालते हैं नजर आज के इतिहास पर, क्या कहता है आज का दिन ऐतिहासिक दृष्टि से। 1830 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने असाई के युद्ध में मराठा सेना को हराया था। 1929 में भारत में बाल विवाह निषेध विधेयक पारित किया गया था, जिसके तहत लड़कियों की विवाह आयु 18 वर्ष और लड़कों की 21 वर्ष तय की गई। वहीं 1965 में आज के दिन भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के बाद युद्ध विराम का ऐलान किया गया। 2009 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने ओशनसेट 2 समेत 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया। वहीं 2020 में भारतीय संसद ने जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक को मंजूरी दी। आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस भी मनाया जाता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि जो बधिर लोग हैं उनको जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता लेकर आना, मुख्य धारा में उनको जोड़ना। इस वर्ष की जो थीम निर्धारित की गई है वो है बधिर लोगों के मानवाधिकारों की घोषणा। बधिर समुदाय के मानवाधिकारों, भाषाई पहचान और समावेशी समाज को बढ़ावा देना, यानी उनको मुख्य धारा में लाया जाए ताकि वो खुद को उपेक्षित महसूस ना करें, क्योंकि वो भी एक आम आदमी की तरह, सामान्य इंसान की तरह रह सकते हैं। कुछ कमियां उनके अंदर हैं, लेकिन उसके आधार पर उनको सबसे अलग नहीं किया जा सकता। आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय भाषा का सांकेतिक दिवस ये हमें बताता है कि उनको अपने साथ लेकर हमें चलना होगा, तभी हम समाज का विकास कर सकते हैं। पॉलिथिन का प्रयोग बिल्कुल ना करें। आप कहेंगे ये कैसी बात कर रहे हैं सुरभि जी, पॉलिथिन का प्रयोग हमारे लिए उतना ही हानिकारक है जितना पर्यावरण के लिए। ये पॉलिथिन ना तो कभी ख़त्म होता है और बरसों तक पड़ा रहता है एज इट इज़। उसके बाद ये गंदगी फैलाता है, यानी नालियाँ भी चोक हो जाती हैं और उससे इतनी समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। इसीलिए क्या करें क्या ना करें अंतर्गत मैंने बातचीत कर आपसे इसी विषय पर कर रही हूँ कि पॉलिथिन का प्रयोग बहुत सीमित करें, बिल्कुल ना करें। अपने घर से कुछ भी सामान लेकर जाएं, कपड़े का थैला लेकर जाएं और कोशिश ये कीजिए कि आप पॉलिथिन को हाथ भी ना लगाएं। आप जब सब्जी लेने जाते हैं तो टोकरी में सब्जी लेकर आएं, अपने कपड़े के थैले में सब्जी लेकर आएं। आज से कुछ सालों पहले भी पॉलिथिन का प्रयोग नहीं होता था, तब भी हम जीवन जी रहे थे, अब भी जीवन जियेंगे। ये छोटी छोटी बातें जिनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम आज प्रयास नहीं करेंगे तो आने वाले कल में बहुत समस्याएं हमारे सामने आ जाएंगी। पॉलिथीन न केवल हमारे लिए, हमारे पर्यावरण के लिए भी बहुत हानिकारक है। साफ सफाई की व्यवस्था में भी पॉलिथीन बहुत बड़ी बाधा बन जाता है। इसीलिए प्रयास कीजिए पॉलिथीन का प्रयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि बड़ा आसान होता है पॉलिथीन में सामान ले जाना, उसको यहीं भी फेंक देना। जो पॉलिथीन का आप सामान तो उपयोग कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद उस पॉलिथीन को जब इधर उधर फेंक दिया जाता है तो एक बहुत बड़ी समस्या का कारण बन जाता है। अपने आसपास साफ सफाई का माहौल रखें, सदा

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज दर्पण। प्रस्तुति थी सुरभि शर्मा की, संयोजन था ओपी सिंह का। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10 बज चुके हैं और आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत।

लाखों में एक। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत। आवाजें थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। संगीत निर्देशन था आरडी बर्मन का। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं 1942 अ लव स्टोरी फिल्म से। आवाज़ है शिवाजी चट्टोपाध्याय की। गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने, धुन बनाई है आरडी बर्मन ने। आइए सुनते हैं।

बाजीगर फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना विनोद राठौर की आवाज़ में। गीत को लिखा था रानी मलिक ने, धुन बनाई थी अनु मलिक ने।

वंश फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना एसपी बाला सुब्रमण्यम और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। गीत को लिखा था समीर ने और धुन बनाई थी आनंद मिलिंद ने। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं तेरी कसम फिल्म से, गाया है अमित कुमार ने, शब्द रचना है आनंद बख्शी की और संगीत रचना है आरडी बर्मन की।

यस बॉस फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना अभिजीत भट्टाचार्य और अलका याग्निक की आवाजों में। गीत को लिखा था जावेद अख्तर ने और धुन बनाई थी जतिन ललित ने। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

जूली फिल्म का ये शीर्षक गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने और धुन बनाई थी राजेश रोशन ने।

एस डी बर्मन के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में ज्वेल थीफ फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा था आनंद बख्शी ने।

जवानी दीवानी फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। शब्द रचना थी आनंद बख्शी की और संगीत रचना थी आर डी बर्मन की।

0: घरौंदा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे रूना लैला की आवाज़ में। गीत को लिखा था नक्श लालपुरी ने और धुन बनाई थी जयदेव ने।
1: उठे सबके कदम देखो रम पम पम।

बातों बातों में अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत। आवाज़ें थीं अमित कुमार और लता मंगेशकर की। गीत को लिखा था अमित खन्ना ने, धुन बनाई थी राजेश रोशन ने। इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से FM 102.2 MHz पर। दिन के 11 बजने को है और आइए अब आपको सुनवाते हैं फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। प्रस्तुति है रश्मि शर्मा की।

0: हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को रेशमी शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ श्रोताओं, आपके फोन कॉल्स के लिए हम रहते हैं बेकरार और आपको भी तो हमसे बातें करने का रहता है ना इंतजार। तो चलिए देखते हैं आज के हेलो आकाशवाणी में ये पहला कॉल हमें किसने किया है। हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो आकाशवाणी।
2: हाँ जी नमस्कार।
1: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, परिचय दे दीजिए।
2: टेकचंद अग्रवाल बोल रहे हैं मैडम, परासिया छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से।
1: स्वागत है कार्यक्रम में टेकचंद जी, कैसे हैं आप?
2: बहुत बहुत धन्यवाद, हम बहुत बढ़िया मैडम, आप कैसे हैं?
1: बिल्कुल बढ़िया। और आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
2: काफी प्रयासों के बाद और काफी दिनों के बाद आज लगा है फोन।
1: जी जी जी जी।
2: और दिल दिमाग और मोबाइल तीनों बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्रयास करते रहिए। हाँ प्रयास तो करने ही होंगे ना सफलता
2: जी,
1: के लिए।
2: जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: आज क्या सुनना चाहेंगे?
2: आज मुझे आप सुनवा दीजिए फिल्म है पहचान।
1: कौन सा गीत सुनेंगे?
2: मुकेश साहब की आवाज है। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ बस आदमी से प्यार करता हूँ।
1: ठीक है।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: नमस्कार भैया,
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: जबलपुर एमपी से आपका श्रोता अशोक सिंह बात कर रहा हूँ।
0: जी स्वागत है अशोक जी, कार्यक्रम में कैसे हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसे? आकाशवाणी की मथुरा परिवार सब
0: बिल्कुल सब बढ़िया, हम भी ठीक हैं और आकाशवाणी परिवार के सभी सदस्य भी ठीक हैं।
1: गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी तो चल ही रहा गणेश चतुर्थी
0: हाँ
1: चल
0: जी, हाँ
1: रहा
0: जी, बिल्कुल चल ही रहा है और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। विसर्जन
1: जी।
0: से पहले तो चल ही रहा है।
1: जी मैडम जी, गाना सुनवा दीजिए मैडम।
0: कौन सा गीत सुनेंगे?
1: महुआ का पर्वत के पीछे चमे दगा।
0: ठीक है,

0: हेलो आकाशवाणी,
1: जय हिंद साहब,
0: जय हिंद जी, कौन बोल रहे हैं?
1: राशि बोल रहा हूँ, गुलाब सिंह।
0: हाँ जी, तो गुलाब सिंह जी कार्यक्रम में फोन करते रहते हैं आप?
1: नहीं साहब, पहली बार किया है। कुछ
0: पहली बार किया है, क्या करते हैं आप?
1: नहीं साहब, घर बैठे रिटायरमेंट है। देखो
0: अच्छा जी, तो आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: साहब, गीत तो सुन लेंगे, पर हमारी हमारी तो भाषा बहुत पसंद है, तुम्हारी भाषा हमें।
0: अच्छा, हमारी भाषा पसंद है, चलिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका
1: नदिया के पार
0: जी।
1: फिल्म का गाना है, कौन दिशा में लेके चलो रे।

0: हेलो आकाशवाणी। जी स्वागत है कार्यक्रम में। कैसे हैं आप?
1: हाँ बहन जी, ठीक हूँ। बहुत दिन बाद जो है आपसे मुलाकात हो रही है।
0: जी बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही है और बस बात हो रही है तो बात पे बात चली है, तो बता दीजिए अपने मन की बात। मन की बात में कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: मन की बात तो पुरानी फिल्म है खानदान, उसका तारा सुनना चाहूंगा साहब।
0: कौन सा गीत?
1: नीले बादल आ धूप में जलता, हमारा सर्वे छाया।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: नमस्कार
0: जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: धीरज रबारी बात कर रहा हूँ गुजरात से।
0: जी स्वागत है कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: जी
1: वैसे मथुरा में कैसा मौसम है?
0: गर्मी
1: हमारे यहाँ बारिश कल भी आई थी, अगले दिन भी आई थी, यानी रुक रुक के बारिश आती है, कभी सुबह कभी शाम। देखा जाए तो किसान भाइयों को बारिश की जरूरत थी, वही टाइम पर बारिश आ गई, यानी किसान और हम सभी खुशखुशहाल हो गए, क्योंकि गर्मी भी थी और कई ऐसे खेतों में जो पाक बोए थे वो मुरझा रहे थे, तो उनके लिए भी एक आशीर्वाद रूप ये बारिश हुई।
0: जी जी चलिए, बहुत अच्छी बात है। और पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य सब प्रसन्न हैं बारिश के होने से, विशेषकर आपके क्षेत्र में, तो अच्छी बात है। और पसंद बता दीजिए अपनी।
1: नूरी फिल्म का गाना सुनना है, नूरी
0: जी बताइए।
1: आजा रे दिल भर आजा, नितिन मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़।

अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। प्रस्तुति थी रश्मि शर्मा की। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगा हर्ट्ज पर।

कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। किसान भाइयों, इस बुधवार दिनांक 23/9/2026 को शाम 6:50 से 30 मिनट की अवधि के हेलो ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम में इस बार आज का विषय है पशुपालन एवं पशु रोगों पर आधारित। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर जितेंद्र सिंह गंधार। किसान भाई, पशुपालक भाई, पशुपालन एवं पशु रोगों जैसे लंपी रोग, खुरपका, मुंहपका, अफरा, गलघोंटू, पशुओं का आहार

एवं आवास व्यवस्था, टीकाकरण जैसे बिंदुओं पर जानकारी हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर जितेंद्र सिंह गंधार। आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565-2530-135 पर फ़ोन करके अथवा हमारे मोबाइल नंबर 9412255575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस संबंध में सीधे बातचीत कर सकते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह गंधार से। कार्यक्रम का समय होगा बुधवार यानी कि आज 23/9/2026 को शाम 6:50 पर। सूचना समाप्त हुई।

हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। श्रोताओं, जो आवाज के साथ बाहर आती है, भाषा वह भी है जो हाथों से व्यक्त होती है, चेहरे के भावों में दिखाई देती है, आंखों से महसूस होती है और दिल तक पहुंचती है। साथियों, हम आपसे किसी न किसी विषय पर चर्चा करते हैं, तो आज हमारी चर्चा का विषय है इंटरनेशनल डे ऑफ साइंस लैंग्वेजेस और राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जयंती विषय पर। आपसे चर्चा इसी तरह से जारी रहेगी फिल्म संगीत के सफर पर। आइए सुन लेते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत।

साथियों नमस्कार, आज मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो मित्र उषा पांडे। आपका स्वागत है आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम फिल्म संगीत के सफर पर। और जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि हम किसी न किसी विषय पर आपसे करते हैं बातचीत, आज 23 सितंबर का दिन अपने भीतर दो बहुत सुंदर संदेश समेटे हुए हैं। एक संदेश है संवाद का और दूसरा शब्दों की शक्ति का। आज इंटरनेशनल डे ऑफ साइंस लैंग्वेजेस है, यानी सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। वह भाषा जो आवाज के बिना भी भावों को व्यक्त करती है, हाथों के इशारों से मन की बात कहती है और हमें सिखाती है कि संवाद केवल सुनने और बोलने का नाम नहीं है, वह तो किसी न किसी संवाद के बोलने और सुनने का काम करती है। और आज ही हिंदी साहित्य के महान कवि, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती भी है। वह कवि जिसकी कलम में ओज था, जिसके शब्दों में राष्ट्र प्रेम था, जिसकी कविताओं में अन्याय के सामने खड़े होने का साहस था, और उन्होंने अपनी कविताओं के द्वारा हमें अन्याय के सामने खड़े होने का साहस दिया। एक तरफ हाथों की भाषा हमें कहती है मुझे समझिए, दूसरी तरफ दिनकर की कविता हमें पुकारती है जागिए आगे बढ़िए। तो आइए आज इस कार्यक्रम में बात करते हैं भाषा की संवेदना की, समानता की, और उस साहित्य की जो पीढ़ियों को जगाता आया है। क्योंकि शब्द होठों से निकले या हाथों के इशारों से, सच्ची भाषा वही है जो पहुंचे दिल के किनारों तक। साथियों, हर व्यक्ति को अपनी क्षमता के साथ आगे बढ़ने का अवसर मिले, यही समावेशी समाज की असली पहचान है। सांकेतिक भाषा की बात करें तो सांकेतिक भाषा हमें यह सिखाती है कि अभिव्यक्ति के लिए आवाज होना जरूरी नहीं। अब जरा सोचिए, अगर आवाज हो, शब्द हो, कलम हो, तो उन शब्दों का इस्तेमाल किसके लिए किया जाए, अपने लिए या समाज के लिए? यही सवाल हमें लेकर आता है रामधारी सिंह दिनकर की साहित्य की ओर। दिनकर के शब्द केवल कविता नहीं थे, उनमें समय की बेचैनी थी, देश के प्रति प्रेम था, अन्याय के विरुद्ध आक्रोश था, और मनुष्य के भीतर छिपी शक्ति को जगाने की पुकार थी। इसीलिए दिनकर को पढ़ना केवल एक कवि को पढ़ना नहीं है साथियों, यह उस दौर को समझना भी है जिसमें भारत स्वतंत्रता के संघर्ष से गुजर रहा था, साहित्य लोगों में चेतना पैदा कर रहा था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के सिमरिया में हुआ था। साधारण ग्रामीण परिवेश से निकलकर उन्होंने हिंदी साहित्य में ऐसा स्थान बनाया कि आगे चलकर उन्हें राष्ट्रकवि के नाम से सम्मानित किया गया। दिनकर जी का साहित्य साथियों उस समय आकार ले रहा था जब देश स्वतंत्रता आंदोलन से गुजर रहा था। उनकी रचनाओं में राष्ट्रीय चेतना, स्वाभिमान, संघर्ष और सामाजिक प्रश्नों की गहरी उपस्थिति दिखाई देती है। उनकी

प्रमुख कृतियों में रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी और उर्वशी विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। रश्मि रथी में उन्होंने महाभारत के कर्ण को केंद्र में रखा। कर्ण के जीवन के माध्यम से प्रतिभा, सम्मान, सामाजिक भेदभाव, मित्रता, दान और संघर्ष जैसे अनेक प्रश्नों को सामने रखा गया। कुरुक्षेत्र में युद्ध और शांति, हिंसा और मानवता जैसे प्रश्नों पर विचार दिखाई देता है और उर्वशी के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथियों, दिनकर केवल ओज और राष्ट्र प्रेम के कवि नहीं थे, उनके साहित्य में प्रेम, सौंदर्य, दर्शन और मानवीय संबंधों की भी गहरी संवेदना दिखाई देती है। उनका जीवन साहित्य तक सीमित नहीं रहा, वे सार्वजनिक जीवन में भी सक्रिय रहे, राज्यसभा के सदस्य रहे। लेकिन हर महान रचनाकार की तरह दिनकर भी अंततः अपनी रचनाओं में अमर हो गए। 24 अप्रैल 1974 को धरती के लाल का निधन हुआ। शरीर चला गया लेकिन उनके शब्द रह गए, और शायद किसी कवि के लिए इससे बड़ी अमरता क्या होगी साथियों, कि उसकी कविता उसके जाने के बाद भी लोगों के भीतर बोलती रहे। दिनकर को याद करते हुए उनकी प्रसिद्ध पंक्तियां आज भी ऊर्जा देती हैं। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, इन पंक्तियों का भाव हमें शक्ति और क्षमा के संबंध पर सोचने के लिए प्रेरित करता है। क्षमा तब अधिक अर्थपूर्ण होती है जब व्यक्ति के पास प्रतिरोध करने की शक्ति भी हो। दिनकर की कविता का यही ओज आज भी हिंदी साहित्य के पाठकों को आकर्षित करता है। उनकी जयंती पर उन्हें विनम्र नमन। साथियों, दिनकर जी की प्रमुख कृतियों और साहित्यिक योगदान के बारे में भारत सरकार और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के स्रोत भी यही कहते हैं, और आज के दिन इस अवसर पर सभी उन्हें नमन वंदन करते हैं।

आइए साथियों, अब बात करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस के बारे में। साथियों, जहां एक ओर दिनकर जी ने शब्दों की ताकत दिखाई और साइन लैंग्वेज हमें यह सिखाती है कि शब्दों का एक ही रूप नहीं होता, किसी के लिए भाषा आवाज है, किसी के लिए संकेत, किसी के लिए लिखे हुए शब्द, लेकिन अधिकार सबके बराबर हैं। 2026 के इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस का संदेश भी इसी दिशा में है, डीफ लोगों के मानवाधिकारों को वास्तविक जीवन में सुनिश्चित करना। इसीलिए समावेशिता का अर्थ केवल किसी को अपने साथ बैठा लेना नहीं है, समावेशिता का अर्थ है उसे समझने का प्रयास करना, उसकी भाषा को सम्मान देना, उसे शिक्षा और जानकारी तक पहुंच देना और समाज में बराबरी से भाग लेने का अवसर देना। यही बात दिनकर के साहित्य में भी अलग रूप में दिखाई देती है। मनुष्य के स्वाभिमान और सम्मान की बात। भाषा अलग हो सकती है, अभिव्यक्ति अलग हो सकती है, लेकिन सम्मान का अधिकार सबका है। यूएन ने 2026 के लिए डिक्लेयरिंग डीफ पीपल्स ह्यूमन राइट्स को थीम बनाया है और राष्ट्रीय सांकेतिक भाषाओं के माध्यम से अधिकारों की पूर्ण पहुंच पर जोर दिया है। साथियों, आवाज की अपनी दुनिया है, खामोशी की अपनी बात, इशारों में भी मिल जाती है दिल से दिल की सौगात। ऐसे ही कलम अगर सच लिख दे तो इतिहास बदल सकता है, एक शब्द अगर जगा दे तो इंसान बदल सकता है। भाषाओं की बात करें तो भाषाएं अलग अलग हों मगर भाव एक रहें, हर दिल में सम्मान हो, हर मन नेक रहे,

साथियों आइए ऐसी शक्ति मांगे कि हम केवल अपनी बात कहने वाले नहीं बल्कि दूसरों की बात समझने वाले भी बने। श्रोताओं, आज की इस विशेष यात्रा में हमने दो अलग अलग विषयों को एक साथ महसूस किया। एक और सांकेतिक भाषा जो हमें बताती है कि संवाद आवाज की मोहताज नहीं, और दूसरी ओर राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, जिन्होंने अपनी कलम से शब्दों को ऐसी आवाज दी जो उनके जाने के दशकों बाद भी सुनाई देती है। दिनकर जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धा पूर्वक नमन, और इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस पर यही संकल्प कि किसी की भाषा हमें समझ में ना आए तो हम उससे दूरी ना बनाएं, बल्कि उसकी भाषा समझने की कोशिश करें, क्योंकि संवाद वही शुरू होता है जहां हम कहते हैं मैं तुम्हें समझना चाहता हूं, और अंत में कलम की आवाज कभी खामोश नहीं होती, सच्ची संवेदना कभी बेआवाज नहीं होती। भाषा चाहे शब्दों की हो या इशारों की, इंसानियत की भाषा कभी अलग नहीं होती। इसी संदेश के साथ आज के

इस विशेष कार्यक्रम से मुझे दीजिए अनुमति, स्वस्थ रहें, संवेदनशील रहें, दूसरों को समझने की कोशिश करते रहें। नमस्कार, राधे राधे।

साथियों, जिंदगी वो हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसीलिए आज में सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। राह में परेशानियां आएंगी, लेकिन हमारी कड़ी मेहनत ही हमें सफलता दिलाएगी। उम्मीद कभी ना छोड़ें, यही हमारा पथ है जो जीवन भर आपको गतिशील बनाकर रखता है। इन्हीं पंक्तियों के साथ आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस में, और मैं आज आपके साथ हूँ आपकी रेडियो मित्र उषा पांडे। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।

साथियों, आइए बढ़ते हैं आपके संदेशों की ओर, लेकिन उससे पहले आइए सुन लेते हैं आपकी फरमाइश पर ये पहला फरमाइशी गीत।

अभी आपने सुना फिल्म वो कौन थी के इस गीत को अपनी आवाज़ दी लता मंगेशकर ने। राजा मेहंदी अली खान ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया मदन मोहन ने। आइए अब पढ़ लेते हैं साथियों आपके संदेश भेजा है हमें टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छावड़ा, इंद्रजीत कौर छावड़ा, स्वीटी छावड़ा ने। हमसे जुड़ चुके हैं संदेश भेजकर जयपाल यादव, इंद्रपाल, राघवेंद्र, अरविंद्र, रागनी, रिया रेणु, दिव्यांशी, आराधना, रोनिका यादव, ग्राम लोहेडी, जिला महोबा, बुंदेलखंड, यूपी से आप हमसे जुड़े। अगला संदेश मजनू कटीला से कमल बालूजा मधु, सागर और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा माही मलिक का प्राप्त हुआ। हमसे जुड़ चुके हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा, अमित राय, हैप्पी राय, कोटवा, नारायणपुर, बाबा पट्टी बलिया से, दुविहा, नेवादा जिला, गाजीपुर के प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी और प्रांजल राय का संदेश भी प्राप्त हुआ। अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक का संदेश पहाड़गंज मुल्तानी ढाणा से हमें मिल चुका है। हमसे जुड़ चुके हैं रसेड़ा छत्तीसगढ़ के मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या, कीर्ति और डीकेश साहू। संदेश प्राप्त हुआ भाई मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा, गरिमा शर्मा का जिला दुर्ग भिलाई छत्तीसगढ़ से। अगला संदेश हमारे पास आया है उमाली से अनूप कुमार उद्धव पाटिल का और पलसी से वीएस शेगोकार और डॉक्टर जयश्री का। हमसे जुड़ चुके हैं नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग टेलर, पुना राम देवांगन और कृष्णा देवांगन। अंजू नारंग, मोहित लकी, तानिया, राजेंद्र नारंग का भटिंडा रोड मंडी डबवाली से संदेश मिला। नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद, फातिमा कॉलोनी, श्रीरामपुर महाराष्ट्र से, गोविंदपुरा अहमदनगर के जुनैद मुजावर, सबीहा और मिखाइल जैनब मुजावर का संदेश भी हमें मिल चुका है। ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम, आशीष, बन्ने बुजुर्ग, पलेरा, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से हमसे जुड़े। नेहरू चौक पैठड़ से अनीता जाधव, सुरेश, सोनल जाधव, आरती पूजा, बेबी सिया जाधव का संदेश हमें मिल चुका है। अगला संदेश हमारे पास आया है श्री सुधाकर, राजे जाधव देशमुख, डॉक्टर प्रशांत जगुताई, कुमार संचित देशमुख, प्रथमेश सर्वद, हर्षिता सानवी और प्रणाली देशमुख का। हमसे जुड़े हैं मुक्काम पोस्ट कालेगांव जाफराबाद से। हमसे जुड़ चुके हैं संजय ढींगिया, नमन अपार, बागपत उत्तर प्रदेश से। अगला संदेश सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक स्वाति का, जमानिया जिला गाजीपुर से और गमरिया जमशेदपुर के विपिन, स्वाति, देव कुमार, आर्य कुमार जायसवाल हमसे जुड़ चुके हैं। संदेश भेजा और हमें मिला जाकिर मुलाणी, सुमैया, सुबान, समीर, सलमा, मुमताज, दिलशाद, नसीर, चाचा चाची, पूरा मुलाणी परिवार, ये हमसे जुड़े हैं तालुका पंढरपुर से। कल्याण मुंबई के किशोर हिवराले, सुजाता, प्रतीक हिवराले का संदेश भी हमें मिल चुका है। अगला संदेश हमारे पास आया है गोकुल चौक गंगजला सहरसा बिहार के राधे कुमार विद्यार्थी, सविता, राकेश, रंजन, राजीव, संजय कुमार, ओम कुमार विद्यार्थी, गुंज

राजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम कुमारी, साक्षी, अच्छे लाल, राय बुल्की वाली और फलना झा हमसे जुड़ चुके हैं। अगला संदेश हमारे पास भेजा है छत्तीसगढ़ के सरगांव बाजार से नसीम मोहम्मद, सलमा, रेहान, फैजान मोहम्मद ने। अगले फरमाइशकर्ता बघेरा दुर्ग के संतोष नामदेव, सार्थक समर्थ और शौर्य नामदेव, डोंगरगांव छत्तीसगढ़ के राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका बेबी, अनिष्का और तन्मय गजबिये का संदेश भी मिला। कुमारगली श्रीरामपुर के अशोक दले, सविता निकेत, ऋषिकेश जीविका दले हमसे जुड़े। पुनावले पुणे के अजय, करिश्मा, अविका और विशाखा सोनमणि का संदेश भी मिल चुका है। स्टेशन रोड जमशेदपुर के हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल सोनू, पप्पी तमन्ना भाटिया हमसे जुड़ चुके हैं। सेक्टर 65 मोहाली चंडीगढ़ के टीडी मल्होत्रा, अनिल, जयवीर, डॉक्टर अमनदीप, कालका के शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज का संदेश भी मिला। सैयद आलम हाशमी, गुलनाज, सलमा, सद और समस्त हाशमी परिवार नाज पैलेस अजमेर शरीफ से हमसे जुड़ चुका है। नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति आकांक्षा, आकाश कुमार बुलढाणा महाराष्ट्र से हमसे जुड़ चुके हैं। अगले फरमाइशकर्ता शादुल शहर राजस्थान से, राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़, तेलंगाना भोंगीर के मोहम्मद, बुरहानुद्दीन, फरहान लल्ला, फजान लल्ला, समीरा आजमीन और गुड़िया हमसे जुड़े। नवीन सिंह, ज्योति सिंह, श्वेता, स्वाति, सुशांत, चुलबुल रानी का संदेश मिल चुका है। रंगोली राजनगर बिहार से आप हमसे जुड़े हैं। तुलसी मस्कीन, बीना, आशीष राजा, चैतन्य मेघा, डब्बू सम्राट हमसे जुड़े। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से, पंचकुला चंडीगढ़ के राहुल खुराना, रचिता और केशु रिधान खुराना का संदेश भी मिला। साथियों आइए सुन लेते हैं आपकी फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी गीत।

अभी आपने सुना किशोर कुमार को फिल्म मेरे जीवन साथी के इस गीत के लिए। गीत को लिखा मजरूह ने और संगीत दिया आरडी वर्मन ने। साथियों आइए अब पढ़ लेते हैं आपके संदेश। रामगंज खडवा मध्य प्रदेश के विजय, महोबिया, कविता, विशाल, विवेक, सोनू, मोनू, रानू, सपना, शिवी, सलोनी और पेंटर बाबू का संदेश हमें मिल चुका है। हमसे जुड़ चुके हैं हमारे अगले फरमाइशकर्ता तालुका पंढरपुर से जाकिर मुलाणी, सुमैया सुबान, समीर, सलमा, मुमताज, दिलशाद, नसीर, चाचा चाची, पूरा मुलाणी परिवार। ये संदेश हमें भेजा है जिला यवतमाल से अनिल बुरांडे, उषा, अनुश्री और धनश्री ने। अगला संदेश हमारे पास आया है रूप किशोर, आर के, जगदीश प्रसाद, रेणु प्राची, अर्पित, कन्हैया, मोहिता, भारत, जमुना दास और अर्चना का। अपना नाम भेजने के साथ साथ कृपया आप हमें अपना पता लिख भेजा करें। यह हमसे जुड़े हैं तायापुर पानी की टंकी यमुना पर लक्ष्मी, यमुना पार लक्ष्मी नगर मथुरा से आप हमसे जुड़े। अगला संदेश हमारे पास भेजा है पलसी महाराष्ट्र के विजय शेगोकार, ऋषिकेश, उद्धव और अनूप कुमार ने। हमसे जुड़ चुके हैं छत्तीसगढ़ रायपुर के मोहम्मद इमरान, इशरत, परवीन, मोहम्मद हसनैन, रजा, गौसिया, फातिमा। अगला संदेश हमें भेज रहे हैं मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहल्ला शेरकोट, जिला बिजनौर से। सितारा बेगम, नसरीन, रोजी, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर, साथ में जुड़े मोहम्मद इकबाल फरीदी। अगला संदेश हमारे पास आया है छन्नूलाल श्रीवास, अनिता, पुष्पा, अंजू, योगिता, रज्जन साहू, हेमंत, नामदेव और धर्मदास वाधवानी का। आप हमसे जुड़े हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। हमसे जुड़ चुके हैं हरिंदर सिंह, मोनी और साथ में जुड़े हैं विल, कुलारन, निभा। ये संदेश हमें प्राप्त हुआ पंजाब से। श्री काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी के आजन कुमार सिंह, वंदना सिंह, विनती, विनायक सिंह, मोहिनी, मोहित सिंह और प्यारी प्यारी कोको रानी का संदेश भी हमें मिल चुका है। हमारे अगले फरमाइशकर्ता हैं मास्टर विठल सुरोशे, सुषमा परिधि और मायरा सुरोशे, काटा रोड वाशिम महाराष्ट्र से आप संदेश भेज रहे हैं। राजेश भारती, रेडियो श्रोता संघ कूलीपाड़ा कटियार से हमें संदेश प्राप्त हुआ राजेश भारती, विभा रानी, आदित्य राज और प्रिया भारती का। खैल बाजार पानीपत के नरेश

मल्होत्रा, नीटू, भावना, लक्ष्य, लाडो कोयल, पापा जी, नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक के पीयूष सिक्का, कोयल, डुग्गू, भाविका और समस्त मल्होत्रा परिवार हमसे जुड़ चुका है। अगले फरमाइशकर्ता हमसे जुड़ चुके हैं अडार नांदघाट छत्तीसगढ़ के माखन वर्मा, चांदनी भूपेश, दीपेश वर्मा। संदेश प्राप्त हुआ पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी, पप्पू महक, सुनीता रानी, आरजू हसमुख लाल, बुलबुल शक्ति, संजीव बंटी, पूरा खुशदिल परिवार हमसे जुड़ा। प्रकाश वर्मा, प्रिंस निखिल, यशस्वी छत्तीसगढ़ पलारी से हमसे जुड़े। मोहाली पंजाब के बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा का संदेश भी मिल चुका है। सदाबहार सनावत से शेख मूसा मोहसिन का संदेश भी मिला। रिंगनी छत्तीसगढ़ के दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा हमसे जुड़ चुके हैं। टैगोर गार्डन नई दिल्ली के रविंद्र सिंह छावड़ा, इंद्रजीत स्वीटी छावड़ा का संदेश भी प्राप्त हुआ। अगले फरमाइश करता हैं दुगोई सिलू से चंदू कुलकर्णी, हेमलता और सीआर कुलकर्णी। लोरमी चचेड़ी छत्तीसगढ़ के कमलकांत मरावी, प्रमिला, नेहा, पुष्पराज और ऋषभ मरावी का संदेश भी मिला। साथियों आइए सुन लेते हैं आपकी फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अगला गीत।

अभी आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में फिल्म महमूद की मेहंदी के इस गीत को। आनंद बख्शी ने गीत को लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया संगीत। साथियों, परी महल कासगंज के आवाद खान, नबील, आरफा, इल्मा, एम असलम सैफी, मास्टर जाहिद अली, मीरा सराय बदायूं से आफरीन खान, जमीर खान हमसे जुड़ चुके हैं। अगला संदेश हमारे पास आया है मालियान सरधना मेरठ के अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन और मास्टर जीवीएम जैन का। साथ में जुड़े हैं आदि जैन, उमा शर्मा, नितिन, सचिन, राधिका, निधि, धौली प्याऊ मथुरा से हमसे जुड़े। अगला संदेश हमारे पास आया है ग्राम पजौनिया, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश के सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श, सार्थक और अलौकिक चंसौलिया का। हमसे जुड़ चुके हैं संदेश भेजकर अनंता भगत, अरुणा, चेतन भगत और सुलोचना भगत। ये हमसे जुड़े हैं पूना जंक्शन मस्तानपुरा से। बिट्ठल जाधव, अनसुईया, पवन राजे जाधव का संदेश हमें प्राप्त हुआ। छत्रपति संभाजी नगर के मंगेश इंगले, संध्या और स्वराज विराज हमसे जुड़ चुके हैं। बिट्ठल, अनसुईया और पवन राजे हमसे जुड़े ऑरेंज सिटी नागपुर से। अगला संदेश हमारे पास आया है जिला खरगोन, सनावद, मध्य प्रदेश के मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा, भाईजान, भाई राजकुमार बोड़ाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश, जगता भी हमसे जुड़े। भागलपुर, मुंदीचक, बिहार के सुभाष हरी, मणकांत हरी और अंकेश, अंकुश, इंदु कुमारी भी हमसे जुड़े। अगला संदेश हमारे पास आया है तेलंगाना स्टेट के करीम नगर से लक्ष्मी नारायणा, विजया, अभिया, अभिनय, साई किरण का। हमसे जुड़ चुके हैं डॉक्टर रमेश कुमार जजौरिया, पटेल नगर मलोट से गीता रानी, गगनदीप और आरजू गुड्डू। धनोरा बिटाली, तहसील नांदुड़ा, जिला बुलढाणा, महाराष्ट्र के भगवान पाटिल, मंगेश, सचिन पाटिल का संदेश भी हमें मिला। फनेश कुमार चंदन, सावित्री, मोहित, देविका, गजेंद्र, हेयांश, सौगा, मगरलोड, छत्तीसगढ़ से आप हमसे जुड़े। अगला संदेश हमारे पास आया संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति और ओजस्वी यादव का। हमसे जुड़ चुके हैं जेल रोड दिल्ली के लाल बाबू दीवाना, दिव्या भारती और छत्तीसगढ़ से नरेंद्र कुमार कुम्हार और उमा यामिनी कुम्हार। आशा नारंग, सुरेश, सोनाली नारंग सहारनपुर से हमसे जुड़े। मेहर अरोड़ा, ममता, कीर्ति, भूमिका, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से हमसे जुड़ चुके हैं। ये नाडू तेलंगाना से राजेश खन्ना, चिन्ना पासी, अनीता राज खन्ना, सुनीता राज, भानु राज और अमित खन्ना का संदेश भी हमें प्राप्त हुआ। साथियों, अब वक्त हो चला है आपसे अनुमति लेने का, कार्यक्रम को यहीं विराम दे।

देने का चलते चलते बस यही कहेंगे, जो परिस्थितियों से नहीं अपने संकल्प से आगे बढ़ता है, कठिनाइयां आपको रोकने नहीं बल्कि आपकी शक्ति और धैर्य को पहचान दिलाने आती हैं। हर नया सवेरा एक नया अवसर है, इसीलिए बीते हुए कल की चिंता छोड़कर आज को पूरे विश्वास और उत्साह के साथ जिए। इन्हीं पंक्तियों के साथ स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।

0: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रजलोक गीत। आज के कलाकार हैं भगवान सिंह जोगी और साथी।
1: गेंदगिरी जमुना जल में और

0: फिर पे मोर मुकट घन श्याम पहुँचे जमुना जी के धाम।
1: सिर पे मोर मुकट घन श्याम पहुँचे जमुना जी के धाम।
0: सिर पे

0: हत के उठ बोले ब्रज जन हम तो पड़े काल के फंद, हस के उठ बोले ब्रज जन हम तो पड़े काल के फंद, हस के उठ बोले ब्रज जन हम तो पड़े काल के फंद, हस के
1: बोले ब्रज जन हम तो पड़े काल के फंद,
0: अपनो जाए जगाले कंठ सबको नाच नचाने बारे,
1: अपनो जाए जगाले
2: कंठ सबको
0: सबको नाच नचाने वाले, सबको नाच नचाने वाले, सबको नाच नचाने वाले, दर्शन दीजो जी महाराज मुरली मधुर बजाने वाले, दर्शन दीजो जी महाराज मुरली मधुर बजाने। काली ने जब मारी फुसकार फन पे चढ़ गए नंद कुमार,
2: नाना ने जब मारी फुसकार चढ़ गए नंद कुमार,
0: ओ काली ने जब मारी

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: हरी मैया तेरी भमान मेरी।
2: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम ब्रज लोकगीत के अंतर्गत कलाकार भगवान सिंह जोगी और साथियों के द्वारा गाए हुए कुछ ब्रज लोकगीतों का।

0: मैया कर सूले सिंगार जब आप भवन में बैठी।
1: मैया कर सूले सिंगार जब आप भवन में बैठी।
0: अरे मैया कर

0: बैठी है भवानी सज हाथों में एना लिए,
1: बैठी है भवानी सज हाथों में एना लिए,
0: बैठी है भवानी सज हाथों में एना लिए, पर्वत को फोर आई संतन को दरस दिए,
1: पर्वत को फोर आई संतन को दरस दिए,
0: ये पर्वत को फोर आई संतन को दरस दिए,
1: पर्वत को फोर आई संतन को दरस दिए,
0: और शीश ऊपर शीश फूल अधिक सिंगार किए,
1: और
0: सोने की बारी माँ के कानन में करण फूल,
1: सोने की बारी माँ के कान में करण फूल,
0: सोने की बारी माँ के कान में करण फूल, मोतियों की मांग भरी चाव रही पान फूल,
1: मोतियों की मांग भरी चाव रही पान,
0: अब नाक में बोला कनत मुखड़े पे रही झूल, अब नाक में बोला कनत मुखड़े पे रही झूल,
1: नाक में बोला कनत मुखड़े पे रही झूल,
0: तेरी माँ लटकन दे तो बहार जब आप भवन में बैठी,
2: अरे मैया

0: हसली हमीन माके गले में जड़ाऊ आर हसली हमीन हसली हमेल माँ के गले में जड़ाऊ हार कंठी और कंठाया में सोरन के लागे तार
1: कंठी और कंठाया में सोरन के लागे तार
0: कानों में सुगंध अत छूट रही महकार
1: कान में सुगंध अत छूट रही महकार
0: कानों में सुगंध अत छूट रही महकार बाबल भुज दंड बाजू बंद बड़े बड़े
1: बाजू बंद बड़े बड़े
0: वहाँ बल भुज दंड बाजू बंद बड़े बड़े
1: बड़े बड़े बाजू बंद बड़े बड़े
0: हीरा मोती लाल और सोने ही के कड़े पड़े
1: हीरा मोती लाल और सोने के कड़े पड़े
0: हीरा मोती लाल और सोने ही के कड़े पड़े छन्न और पसीरी देखो सोने के कड़े पड़े
1: छन्न पसीरी और सोने के कड़े पड़े
0: छन्न और पसीरी माँ के सोने के कड़े पड़े
1: पछेरी और सोने के कड़े पड़े
0: तेरी माँ चोरिया

0: ओ मैया कर सोले सिंगार जब आप भवन में बैठी। और माँ के सिंगार साड़ी और कड़ी माँ के पैरनों में साज रही,
1: साड़ी और
0: कड़ी माँ के पैरनों में साज रही, झांझन पजीब और घुंघरू भी बाज रही,
1: झांझन पजीब और घुंघरू भी बाज रही,
0: झांझन पजीब और घुंघरू भी

0: और छूट रही लट जैसे नाग तो भुजंग है, छूट नहीं लट जैसे नाग तो भुजंग है। सुबह सुबह चोल रहा ये मैया जी का अंग है, अरे सुबह सुबह चोल रहा ये मैया जी का अंग है,
1: मैया जी का अंग है।
0: और घूमदार घाघरे पे मगजी सुरंग है, अरे घूमदार घाघरे पे मगजी तो रंग है,
1: घाघरे पे मगजी सो रंग है।
0: तेरी माँ बस्तर, माँ बस्तर।

0: अरे मैया कर सोरे सिंगार, अरे जब आप भवन में, अरे मैया कर सोरे सिंगार, जब आप भवन में देख 88,000 ऋषि दर्शनों के काजे आए, 88,000 ऋषि दर्शनों के काजे आए,
1: 88,000 ऋषि दर्शनों के काजे आए,
0: और बैठ के विमान सुर देवता भी आप आए, और बैठ के विमान सुर देवता भी आप आए,
1: बैठ के विमान सुर देवता भी आप आए,
0: धुंध भी बजा में संत फूलन को झर लाए, धुंधली बजा में संत फूलन को झर लाए, भजत नगारे और संकन की लागी धुन,
1: भजत नगारे संतन की लागी धुन,
0: भजत नगारे और संकन की लागी धुन,
1: भजत नगारे संतन की लागी धुन,
0: और दुर्गा दास कथ गावे वेदनु में गाए गुण,
1: दुर्गा दास कथ गावे वेदनु में गाए गुण,
0: दुर्गा दास कथ गावे वेदनु में गाए गुण, और मैया के स्वरूप कुंड रख रहे संत मन,
1: मैया के स्वरूप को रख रहे,
0: अरे मैया के स्वरूप कुंड रख रहे संत मन,
1: मैया के स्वरूप को रख रहे संत मन,
0: एरी माँ होए सोएले द्वार, जब आप भवन में, अरे मैया कर

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय आप आनंद ले रहे हैं भगवान सिंह जोगी और साथियों की आवाज़ों में कुछ ब्रजलोक गीतों का।

0: चले सेठ सेठानी, उल्टे चले सेठ सेठानी, आपस में बतराए कौन यह पूरो भात जमावे गो पिता भयोए। कौन यह पूरो भात जमावे गो पिता
1: मेरे भैया।

0: पहुँच गई नगर में
1: मन कर लियो भारम।
0: जगे जगे पे पूछत डोले कहाँ है पिता हमारो।
2: अरे जगे
1: जगे, जगे पे पूछत डोले कहाँ है पिता हमारो।
0: जान गयो एक जान

0: सुन के निकर गयो से कारो ये कोने भेकाई।
1: अरे सुन के निकर गयो से कारो ये कोने भेकाई।
0: भैया जोरा माँ को

बाबा जी तुए कौन भात मेरा बेगो पिता भयो बाबा जी। ब्रज सो

बकुल डंगरी में सूर भयो जब रोमत आम जसोदासी मैया। हे भगवान, आप काली देने गए हो, आप दर्शन दे हो, बाल बाल घिरने लगे।

0: काल के फंद हंस के चंद हम तो हंस के उठ बोले ब्रज चंद।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज लोक गीत के अंतर्गत भगवान सिंह जोगी और साथियों की आवाजों में कुछ ब्रज लोक गीत। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय दोपहर के 1 बजने को है, अब से कुछ ही देर में होंगे समाचार, जिसे हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से एआई की नई तकनीक, इंटरनेट और डेटा का उचित उपयोग करने का आह्वान किया है। राष्ट्रपति ने आज गुजरात के वडोदरा में महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों से कहा कि डेटा आपको सूचना दे सकता है, लेकिन निर्णय आपका होगा।
3: टेक्नोलॉजी को अपनाने समय आपका विवेक होना चाहिए। आपको ये याद रखना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाधान दे सकता है, लेकिन सही प्रश्न पूछना आपका कर्तव्य होना चाहिए। टेक्निक आपको गति दे सकती है, लेकिन ये तय करना है, आपका काम है कि आपको किस दिशा में जाना है। डेटा आपको सूचना दे सकता है, लेकिन उस सूचना के नैतिक उपयोग कैसे करना है, ये निर्णय आपको ही करना है।
2: राष्ट्रपति ने कहा कि एआई से सही सवाल पूछना चाहिए और आपको कभी कभी असफलता का सामना भी करना पड़ सकता है। राष्ट्रपति ने जियो और जीने दो की सोच के साथ आगे बढ़ने को कहा। उन्होंने विद्यार्थियों से वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त

0: करने में योगदान देने का भी आह्वान किया।
1: वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के राष्ट्रीय लक्ष्यों को लेकर देशवासी आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा भारत जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं सभी तक पहुंचे, ऐसा भारत जहां विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग मानव कल्याण के लिए हो।
0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के आज 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2018 में झारखंड के रांची से इस योजना का शुभारंभ किया था। ये विश्व की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना से चिकित्सा खर्च में रिकॉर्ड बचत हुई है और गरीब तथा मध्यम वर्ग को लाभ मिला है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 8 वर्ष पहले यह योजना प्रत्येक भारतीय को उच्च गुणवत्ता वाली और किफायती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। उन्होंने कहा कि आज 6 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा लाभ मिल रहा है। आयुष मंत्रालय आज महाराष्ट्र के नागपुर में 11वां आयुर्वेद दिवस मना रहा है। इस वर्ष का विषय है बेहतर कल के लिए आयुर्वेद। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने आयुर्वेद दिवस पर सभी नागरिकों, आयुर्वेदाचार्यों और वैद्यों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री जाधव ने नागरिकों से देश की प्राचीन चिकित्सा प्रणाली अपनाने और एक स्वस्थ, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर प्रशासन कागजी प्रक्रियाओं से हटकर डेटा आधारित डिजिटल माध्यमों से संचालित प्रणाली की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में आज ब्रिक्स कर प्रमुखों की बैठक के उद्घाटन सत्र में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भारत के फेसलेस आकलन, पहले से भरे हुए रिटर्न, रियल टाइम इनवॉइस प्रमाणीकरण और AI सक्षम करदाता सहायता के अनुभव ने ब्रिक्स साझेदारों के बीच रुचि पैदा की है। मेघालय में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी UDP के 8 विधायक आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो गए। इनमें लखमेन रिम्बुई, पीयूष मार्विन, किरमेन शाला और मायराल बोन सीएम प्रमुख हैं। भाजपा मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता किरेन रिजिजू, भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा और अनिल एंटनी की मौजूदगी में इन विधायकों को पार्टी में सम्मिलित किया गया। भारत की मीराबाई चानू ने एशियाई खेलों की भारोत्तोलन प्रतियोगिता में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। भारत के जय मीणा ने आज सॉफ्ट टेनिस के पुरुष सिंगल्स का कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने एशियाई खेलों में निशानेबाजों की स्कीट स्पर्धा के महिला और पुरुष वर्ग के कांस्य पदक भी जीत लिए हैं। अनंतजीत सिंह नरुका, मेहराज अहमद खान, भवतेज सिंह गिल की टीम ने 346 अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान हासिल किया। महिला वर्ग में महेश्वरी सिंह, परिणाज धालीवाल और राइजा ढिल्लो की भारतीय तिकड़ी ने तीसरा स्थान हासिल किया। भारतीय टीम ने महिला कबड्डी में आज दूसरे ग्रुप मैच में ईरान को 23-37 अंक से हराया। इससे पहले भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 21-42 अंक से मात दी। प्रतियोगिता में कल भारत का सामना जापान से होगा। घरेलू शेयर बाजार का सूचकांक आज दोपहर तक 0.5% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 383 अंक बढ़कर 74,912 पर और निफ्टी 115 अंक की बढ़त के साथ 23,444 पर था। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है केंद्र से प्रसारित एवं अनुप्रसारित किए जाने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में जानकारी।

अब से कुछ ही देर में यानी कि दोपहर 1:10 पर समवेत स्वरों में आप सुनेंगे देशगान। दोपहर 1:15 पर बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम वनिता लोक, जिसमें होगी चर्चा। विषय होगा अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस एवं खेल के क्षेत्र में नारी। साथ ही आप सुनेंगे कानूनी वार्ता, संविधान प्रदत्त हमारे अधिकार और कर्तव्य। जानकारी देंगे सुबोध कुमार। आज इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगी अंतिम गौतम। दोपहर 1:45 पर फिल्म संगीत का आप ले सकेंगे आनंद। NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुन सकेंगे।

दोपहर 2:30 पर हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी युवा साथियों के दैनिक कार्यक्रम युववाणी के साथ, जिसमें आज की बात के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस एवं रामधारी सिंह दिनकर जयंती विषय पर होगी चर्चा। साथ ही आप सुनेंगे वार्ता जैसे जैसा मैंने उन्हें पाया, श्री दिनकर, पद्मा सचदेव के द्वारा आप इस वार्ता को सुनेंगे। संध्या 6:15 पर ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम में ब्रज वार्ता के अंतर्गत राधा अष्टमी की लीलाएं आप सुनेंगे मदन मोहन शर्मा के द्वारा। भक्ति परक फिल्म संगीत संध्या वंदन संध्या 6:30 पर आप सुन सकेंगे।

संध्या 6:50 पर हेलो ब्रज ग्रामीण फोन इन कार्यक्रम आप सुनेंगे। आज का विषय होगा पशुपालन एवं पशु रोगों पर आधारित। वार्ताकार विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर जितेंद्र सिंह गंधार। संध्या 7:31 पर संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी आप सुन सकेंगे। रात्रि 8 बजे विशेष श्रृंखला के अंतर्गत जनसेवा से देश सेवा में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में आप सुनेंगे। रात्रि 8:30 पर फिल्म संगीत का ले सकेंगे आप आनंद। चित्रपट संगीत सुहाने तराने रात्रि 9:15 पर पेश किया जाएगा। रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे। कलाकार होंगे उस्ताद मुनव्वर अली खान। उस्ताद मुनव्वर अली खान का ख्याल गायन आप सुनेंगे। राग होगा मालकोस। साथ ही आप सुनेंगे पंडित मोहित कुमार का गिटार वादन धुन पहाड़ी में।

श्रोता साथी कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए किसान भाइयों, इस बुधवार दिनांक 23 सितंबर 2026 को शाम 6:50 पर 30 मिनट की अवधि के हेलो ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम में इस बार आज का विषय है पशुपालन एवं पशु रोगों पर आधारित। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर जितेंद्र सिंह गंधार, किसान भाई, पशुपालक भाई, पशुपालन एवं पशु रोगों जैसे लंपी रोग, खुरपका, मुंहपका, अफरा, गलघोंटू, पशुओं का आहार एवं आवास व्यवस्था, टीकाकरण जैसे बिंदुओं पर जानकारी हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर जितेंद्र सिंह गंधार। आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565-2530-135 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 9412-2255-75 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस संबंध में सीधे बातचीत कर सकते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह गंधार से। कार्यक्रम का समय होगा बुधवार यानी कि आज दिनांक 23 सितंबर 2026 को शाम 6:50 पर। सूचना समाप्त हुई।

अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे केंद्र से प्रसारित एवं अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के विषय में। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगा हर्ट्स पर। प्रस्तुत है संवेद स्वरों में देशगान।

अभी आप सुन रहे थे समवे स्वरों में देशगान FM 102.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है बहनों के लिए कार्यक्रम वनितालो। आज इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही हैं अंतिम गौतम।

वनिता लोक कार्यक्रम सुनने वाली सभी बहनों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। बहनों, यूं तो हम कहें कि आज हम सभी बहनें प्रत्येक क्षेत्र में कार्यरत हैं, प्रत्येक क्षेत्र में दक्ष हैं, चाहे बात घर गृहस्थी की हो

या बाहर कार्य क्षेत्र की हो। आज प्रत्येक क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर महिलाएं अपना पूर्ण योगदान दे रही हैं, किसी भी क्षेत्र में वह पीछे नहीं है। तो समर्पित है उन सभी बहनों के लिए कुछ पंक्तियां। कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सासद, अर्जुन के तीर सासद, मरुस्थलों से भी जल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गरल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिशें जारी रख कुछ कर गुजरने की, कोशिशें जारी रख कुछ कर गुजरने की, जो आज थमा थमा सा है कल जल निकलेगा। जी हाँ बहनों, यही हम कहना चाह रहे हैं कि आज सभी जो महिलाएं हैं प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी रूप में अपना पूर्ण योगदान दे रही हैं, चाहे वह क्षेत्र कोई भी हो। हम बात करें खेल के क्षेत्र की, जहां खेल के क्षेत्र में प्राचीन काल में महिलाओं को खेल में जाने नहीं दिया जाता था या वंचित रखा जाता था। कहा जाता था कि ये शारीरिक शक्ति की इसमें ज़रूरत होती है, तो महिलाओं को इसमें वंचित रखा जाता था। वहीं आज खेल के क्षेत्र में नारियों की जो भागीदारी और उनका योगदान है वह अत्यंत ही प्रेरणादायक है। आज भारतीय बेटियां और विश्व की महिलाएं अपनी मेहनत और लगन से खेल जगत में नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं और देश और विदेशों में अपना और अपने देश का नाम रोशन कर रही हैं। महिलाओं ने रूढ़िवादिता को तोड़ते हुए यह साबित कर दिया है कि शारीरिक बल, सहन शक्ति और कौशल किसी लिंग विशेष तक सीमित नहीं है। विशेष उपलब्धियों की बात करें तो आज बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने अपना पूर्ण योगदान दे हमारे देश का नाम रोशन किया है। विशेष उपलब्धियों की बात करें तो महिला खिलाड़ी कुछ इस प्रकार हैं जो हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। पीवी सिंधु वनो बैडमिंटन के क्षेत्र में विश्व चैंपियनशिप जीतने वाली और ओलंपिक पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। वहीं एमसी मैरीकॉम मुक्केबाजी के क्षेत्र में 6 बार विश्व चैंपियनशिप और ओलंपिक पर विजेता हैं। मैनू साइना नेहवाल की बात करें तो वह भी बैडमिंटन के क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय हैं और विश्व स्तर पर सफलता पाने वाली अग्रणी खिलाड़ी हैं। इसी प्रकार कर्णम मल्लेश्वरी की बात करें तो उन्होंने सिडनी 2000 में ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी वहीं बनी। वहीं साक्षी मलिक और मीराबाई चानू कुश्ती और भारोत्तोलन में देश के लिए ऐतिहासिक पदक जीते। ऐसी ये तो कुछ ही महिलाएं हैं, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने खेल के क्षेत्र में उपलब्धि प्राप्त की है और हमारे देश का नाम रोशन किया है। मैंने खेल के क्षेत्र में बालिकाओं को, महिलाओं को प्रेरित करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए खेलो इंडिया और विभिन्न राज्य सरकारों की योजनाओं से महिला खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति और आधुनिक सुविधा प्रदान कर रही हैं, जिससे हमारी जो बच्चियां हैं जो भी खेल के क्षेत्र में जाना चाहती हैं उनको प्रेरणा मिले और आगे बढ़ चढ़ कर अपना पूरा योगदान दे सकें और हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बने और हमारे देश का नाम रोशन कर सकें।

0: विनु, एक खुशहाल जीवन जीना हम सभी का अधिकार भी है और कर्तव्य है। विनु, बात कर्तव्य और अधिकार की बात करें तो भारतीय संविधान में भी महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार मिले हैं और समाज में उनकी गरिमा बनाए रखने के लिए विशेष प्रावधान व कर्तव्य तय करते हैं। संविधान में साक्षरता, समानता, सुरक्षा और सम्मान से जुड़े कई अनुच्छेद शामिल हैं जो कि महिलाओं को एक अपने स्वयं के प्रति सुरक्षा प्रदान करते हैं। मैंने बात जब संविधान की चली है तो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं एक कानूनी वार्ता, संविधान प्रदत्त हमारे अधिकार और हमारे कर्तव्य। वार्ताकार हैं सुबोध कुमार शर्मा।
1: 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के उपरांत हमने भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। भारतीय संविधान के लागू होने के उपरांत ही संसार के समक्ष भारत एक महान गणतंत्र के रूप में उदित हुआ। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन के अथक प्रयासों के उपरांत संविधान सभा ने इसकी उद्देशिका के माध्यम से संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। संविधान की उद्देशिका में भारत के लोगों के द्वारा भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष

निष्पक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए और उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने का दृढ़ संकल्प अभिव्यक्त किया गया है। इस उद्देश्य का में संविधान का स्रोत भारत के लोग हैं और उद्देश्य उन महान अधिकारों और स्वतंत्रताओं की घोषणा है जिन्हें भारत के समस्त नागरिकों के लिए सुनिश्चित करने की इच्छा अभिव्यक्त की गई है। इस पवित्र संकल्प को संविधान सभा ने पूरा करने के लिए संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में मूल अधिकार नागरिकों को प्रदान किए हैं। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकार नैसर्गिक और अप्रतिदीय अधिकार हैं। इसकी पुष्टि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य और मेनका गांधी बनाम भारत के मामले में उच्चतम न्यायालय ने की है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पीएन भगवती ने मेनका गांधी के मामले में कहा कि मूल अधिकारों का गहन उद्गम हमारी स्वतंत्रता का संघर्ष है। भाग 3 में सर्वप्रथम अनुच्छेद 14 से 18 तक में समता का अधिकार वर्णित है। अनुच्छेद 14 में समता का सामान्य नियम दिया गया है जो व्यक्तियों के बीच अयुक्त युक्त विभेद को वर्णित करता है। इसमें कहा गया है कि भारत राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से अर्थात विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। इस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण का मूल अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान किया गया है, अर्थात ये अधिकार राज्य के नागरिकों के अलावा अन्य लोगों को भी है। चरणजीत लाल के मामले में उच्चतम न्यायालय ने प्रतिपादित किया कि यह अधिकार विधिक और कृत्रिम व्यक्तियों को भी प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है, किंतु सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछले नागरिकों और अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों तथा स्त्री और बालकों के लिए विशेष उपबंध बनाने से यह निवारित नहीं करता। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता का अधिकार प्रदान किया गया है जिसमें सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता प्रदान की गई है, किंतु इसमें भी अनुसूचित जाति जनजाति और पिछले वर्गों को आरक्षण उनकी विशेष स्थिति के आधार पर प्रदान किया जा सकता है। अनुच्छेद 17 के माध्यम से छुआछूत का अंत कर इस प्रकार के आचरण को विधि के अनुसार दंडनीय बनाया गया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। संविधान प्रदत्त वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का यह अधिकार शांतिपूर्वक सम्मेलन, संगम, संघ बनाने, सर्वत्र विचरण करने और राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करने, उपजीविका, व्यापार या कारावार करने की स्वतंत्रता सभी नागरिकों को प्रदान की गई है, किंतु इन अधिकारों पर राज्य की प्रभुता, अखंडता, सुरक्षा, विदेशी मैत्री, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, सदाचार और साधारण जनता के हित में प्रतिबंधित लगाए जा सकते हैं। अनुच्छेद 20(1) अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। कोई भी व्यक्ति जब तक दोष सिद्ध नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उस पर आरोपित कृत्य या लोप किसी प्रवर्त विधि का अतिक्रमण नहीं करता। इस प्रकार कार्योत्तर विधियों से संरक्षण प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 20(2) में दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान किया गया है। इसमें एक ही अपराध के लिए एक ही व्यक्ति को एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता और अनुच्छेद 20(3) के अनुसार अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए भी बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करता है। इस संविधान प्रदत्त मूल अधिकार के तहत किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा। उच्च

0: उच्चतम न्यायालय जो संविधान का संरक्षक भी है ने मेनका गांधी, सतवंत सिंह और फ्रांसिस कोरली के मामले में यह प्रतिपादित किया है कि अनुच्छेद 21 में वर्णित प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए जो ऋजु, न्यायपूर्ण और युक्तियुक्त हो। इसी के तहत शिक्षा, शीघ्र विचारण, पर्यावरण संरक्षण, चिकित्सा सहित व्यापक रूप से अन्य अनेक मूल अधिकार अप्रत्यक्ष रूप से प्रदान किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 21 का संविधान संशोधन द्वारा सन 2002 में जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकारों में शामिल किया गया है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है, जिसके तहत गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों को बताना होगा और उसे अपनी रुचि के विधि व्यवसाय से परामर्श और प्रतिरक्षा की सुविधा भी प्रदान की गई है। गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने का भी संविधान प्रदत्त यह प्रावधान है। अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार प्रदान करता है, किंतु इस अधिकार पर भी लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अनुच्छेद 29 से 30 में संस्कृति और शिक्षा संबंधी लोक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों के संदर्भ में संवैधानिक उपचारों का प्रावधान करता है। इस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकारों के उल्लंघन की दशा में बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रक्षा और उत्प्रेषण याचिकाएं उच्चतम न्यायालय में दायर की जा सकती हैं, जिसके माध्यम से नागरिक राज्य द्वारा मूल अधिकारों के उल्लंघन पर याचिका दायर कर उपचार प्राप्त कर सकता है। उच्चतम न्यायालय ने अन्य अनेक मामलों में नागरिकों को अनेक अधिकार भी प्रदान किए हैं और कर्तव्य पालन के उल्लंघन में सरकार को डांट भी लगाई है। संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 4 का जोड़ा गया, जहां हमारे कुछ अधिकार हैं तो वहीं स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर कुछ कर्तव्य भी संविधान में जोड़े गए। संविधान में भाग 4 का के माध्यम से अनुच्छेद 51 का समावेश किया गया। प्रत्येक भारतीय नागरिक पर 11 कर्तव्य आरोपण किए गए हैं, जिनमें संविधान का पालन, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्शों को हृदय में संजोए रखना, राष्ट्र की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण बनाए रखना तथा आह्वान किए जाने पर देश की सेवा के लिए तत्पर रहना, सभी लोगों में समरसता, भाईचारे का निर्माण, स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग, संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझकर उसे परिरक्षण करना और अपनी व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के माध्यम से सभी क्षेत्रों में उत्कर्षता की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना, जिससे राष्ट्र उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। 2002 के संशोधन द्वारा 6 से 14 आयु वर्ग के बालकों के माता पिता और अभिभावकों पर भी शिक्षा के अवसर प्रदान करने के मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है।
1: अभी बहनें सुन रही थी ये वार्ता। संविधान प्रदत्त हमारे अधिकार और हमारे कर्तव्य, वार्ताकार थे सुबोध कुमार शर्मा। तो बहनों, हमने जाना कि किस प्रकार हम अपने अधिकारों को समझ सकते हैं, अपने कर्तव्यों को जान सकते हैं। बहनों, बात जब अधिकार की है तो हमारा एक कर्तव्य यह भी बनता है कि हम उन सभी की मदद करें जो ज़रूरतमंद हैं। ज़रूरतमंद के बात ये एक याद आती है कि ऐसे लोग जो जिसमें शरीर में कुछ शारीरिक कमियां होती हैं, तो ऐसे लोगों की मदद हमें ज़रूर करनी चाहिए। खास करके ऐसे लोग जो बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, यानी हम कहना चाह रहे हैं कि ऐसे बधिर लोग, उनकी मदद हमें अवश्य करनी चाहिए। ऐसे लोगों की मदद करने से भी हमें अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। बात जब ऐसे लोगों की चली है तो बहनों, आज 23 सितंबर है और आज हम मना रहे हैं ऐसे ही लोगों के लिए जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते,

उन सभी लोगों को समर्पित है आज का दिन, जिसको हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। यह उन सभी के लिए होता है जो लोग सुन नहीं पाते, बोल नहीं पाते, और उनको किस प्रकार समझाना होता है, उनकी एक अलग भाषा होती है, उनकी एक सांकेतिक भाषा होती है, और वह भाषा होती है हाथों के माध्यम से, चेहरे और शरीर के हाव भाव से बातचीत करने की एक सांकेतिक भाषा होती है, जिसके द्वारा वह समझ पाते हैं। बहनों, संयुक्त राष्ट्र ने बधिर लोगों के मानव अधिकारों और सांकेतिक भाषा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन की शुरुआत की थी, और इसे पहली बार वर्ष 2018 में मनाया गया था। बहनों, इसके इतिहास की बात करें तो यह दिन 1951 में विश्व बधिर संघ की स्थापना की याद दिलाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि बधिर लोगों के लिए सांकेतिक भाषा और शिक्षा तक पहुंचाना उनके लिए आसान हो सके, यानी वह भी हम सभी के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चलें और कभी भी जीवन में हार न मानें और अपने उद्देश्य के प्रति जागरूक रहें, क्योंकि बहनों ये सत्य है कि हमें कभी भी रुकना नहीं है किसी भी कमी के कारण, और अपनी कमी को ही हमें मजबूत करना है, अपनी स्ट्रेंथ बनाना है, अपनी शक्ति बनाना है। तो बहनों, हम तो यही कहेंगे कि कभी भी जीवन में रुकना नहीं है और रुक जाना नहीं कभी हार के।

बहनों, हम सभी की जरूरत, जी हाँ, घरेलू टिप्स। कुछ घरेलू टिप्स आपके लिए लेकर आए हैं जो हम सभी को जरूरत होती है। तो हम बताते हैं कि चावल में इस मौसम में कीड़े लग जाते हैं, तो चावल में कीड़े न लगें उसके लिए हम 2-3 नीम की सूखी पत्तियाँ और 2-3 लौंग डालकर रखें तो उसमें

कीड़े नहीं लगेंगे। नमक को गीला होने से बचाने के लिए जो जिसमें नमक रखा है बर्तन में, उसके लिए चावल के 4-5 दाने नमक के अंदर डाल दें। इससे जो नमक की जो नमी है वह नमक की नमी नहीं रहेगी। मैनू नींबू को लंबे समय तक फ्रेश रखने के लिए हम नींबू को फ्रीजर के अंदर रखें, जिससे लंबे समय तक नींबू की नमी बनी रहेगी और उसको यूज करना हो तो तुरंत ही उसे गुनगुने पानी में डाल दें, जिससे हमारा जो नींबू है बिल्कुल ताजी रहेगा। मैनू दाल या सब्जी में ज़्यादा नमक हो जाए तो उसके लिए, यदि सब्जी में दाल नमक ज़्यादा हो रहा है तो उसके लिए कुछ उबला आलू डाल दें, जिससे कि नमक कम हो जाएगा। तो मैनू ये तो थे कुछ घरेलू टिप्स। लीजिए अब सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम वनिता लोक। आज इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया अंतिम गौतम ने। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.2 मेगा हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले को फिल्म मेरा साया के इस गीत के लिए। गीत को लिखा राजा मेहदी अली खान साहब ने और संगीत दिया मदन मोहन ने। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की ये अगली पेशकश।

साथियों, अभी आप आनंद ले रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म कन्यादान के इस गीत का। इस गीत के बोल लिखे हसरत जयपुरी ने और इसे सरगमबद्ध किया शंकर जयकिशन ने। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत के इस सफ़र का आखिरी गीत।

इस गीत को हमने फिल्म दोस्ती से लिया है। आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की। गीत को लिखा मजरूह ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh and Odisha during the day. Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Bihar and interior Karnataka will experience heavy rainfall today. Similar conditions will also prevail over Jharkhand, Keralam, Mahe, Konkan, Goa, Maharashtra, West Bengal and Sikkim. Meanwhile, in Delhi, there will be a mainly clear sky. The maximum and minimum temperatures in the national capital will hover around 34 degrees Celsius to 24.8 degrees Celsius. Moving on to sports, India continued its strong performance at the Asian Games in Aichi, Nagoya today, adding several medals across weightlifting, soft tennis and shooting. We have a report.
1: The Indian men's and women's ski teams bagged bronze medals today. The women's team of Raisa Dhillon, Maheshwari Chauhan and Parinaz Dhaliwal finished third with 331 points, while the men's team of Ananjit Singh Naruka, Mehraj Ahmed Khan and Bhavtek Singh Gill also bagged bronze with a total score of 346. Olympic medalist and three-time Commonwealth Games champion Mirabai Chanu won her maiden Asian Games medal, securing silver in the women's 49 kg weightlifting category at Aichi Nagoya. She lifted 87 kg in the snatch and 111 kg in the clean and jerk, finishing with a total of 198 kg. North Korea's Ri Songam won gold with 215 kg. Chanu has now become only the second Indian weightlifter after Karnam Maleshwari to win medals across all major international competitions. Jay Meena secured India's first ever Asian Games medal in soft tennis, winning bronze after losing 2-4 to Japan's Takuya Kurosaka in the men's singles semi-final. With Shivam, this is Jigyasa Pandey for Akashwani News, Delhi.
0: President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi have congratulated Parinaz Dhaliwal, Raisa Dhillon and Maheshwari Chauhan on winning the bronze medal in the women's skeet team event at the Asian Games. Prime Minister Modi also congratulated Mirabai Chanu on winning silver medal in the women's 49 kg weightlifting event. The International Day of Sign Languages is being observed today. The Union Social Justice and Empowerment Minister, Dr. Virendra Kumar, said that the sign language is a powerful bridge for communication, expression and inclusion. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu says youth efforts will propel India to a developed nation before 2047. Finance Minister Nirmala Sitharaman inaugurates BRICS tax heads meeting in Delhi, calls for stronger BRICS voice in global tax negotiations. Indian Railways commissions coverage 4.0 for the first time on South Central Railway. Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana marks 8 years of transforming public health care access across India. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar discusses collaboration in AI, space, energy with counterparts from UAE and France. And in Asian Games 2026, Indian men's and women's skeet teams win bronze medals in Japan. Mirabai Chanu wins silver in weightlifting. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, युवाओं के प्रयासों से भारत वर्ष 2047 से पहले विकसित राष्ट्र बन जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ब्रिक्स कर प्रमुखों की बैठक का उद्घाटन किया। वैश्विक करदाताओं से ब्रिक्स की मजबूत भूमिका का आह्वान। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे पर पहली बार कवच के चौथे चरण की शुरुआत की। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के देश भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में 8 वर्ष पूरे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस के विदेश मंत्रियों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष और ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की। बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव से उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा। और जापान एशियाई खेलों में मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीता। भारतीय पुरुष और महिला इसकी टीमों को कांस्य पदक। जय मीणा ने सॉफ्ट टेनिस का कांस्य पदक हासिल कर इतिहास रचा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया है कि युवाओं के प्रयासों से भारत वर्ष 2047 से पहले ही विकसित राष्ट्र बन जाएगा। वडोदरा में आज महाराजा सयाजी राव बड़ौदा विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने ये बात कही।
3: वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के राष्ट्रीय लक्ष्यों को लेकर देशवासी आगे बढ़ रहे हैं।

0: ऐसा भारत जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं सभी तक पहुंचे, ऐसा भारत जहां विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग मानव कल्याण के लिए हो।
1: राष्ट्रपति ने कहा कि आज हर क्षेत्र में तकनीकी परिवर्तन हो रहे हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से एआई की नई तकनीक, इंटरनेट और डेटा का उचित उपयोग करने का आह्वान किया।
0: टेक्नोलॉजी को अपनाने समय आपका विवेक होना चाहिए। आपको ये याद रखना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाधान दे सकता है, लेकिन सही प्रश्न पूछना आपका कर्तव्य होना चाहिए। टेक्निक आपको गति दे सकती है, लेकिन ये तय करना है, आपका काम है कि आपको किस दिशा में जाना है।
1: राष्ट्रपति ने शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की प्रशंसा की।
0: बेटी देश के लिए काम कर रहे हैं, आगे पीढ़ी को बनाने में, घर पे रह करके अपने बाल बच्चों को पढ़ाना, उनके भविष्य तैयार करना, ये भी तो देश का काम है। चाहे वर्कफोर्स में आप दिखाई दे या ना दिखाई दे, लेकिन देश को आगे बढ़ाने के लिए ये प्रयासरत है।
1: राष्ट्रपति मुर्मू ने 12,600 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की और 160 विद्यार्थियों को कुल 201 स्वर्ण पदक प्रदान किए। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने भी उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई दी। राष्ट्रपति मुर्मू आज वडोदरा में ब्रह्म कुमारी संस्थान के वैश्विक आध्यात्मिक पैलेस रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति विश्व नवीकरण के लिए आध्यात्मिक जागरण परियोजना का शुभारंभ करेंगे। वे विकसित भारत के लिए युवा, राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति का जागरण अभियान का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि आगामी कुछ वर्षों में बहुपक्षीय कर वार्ताओं में लिए गए निर्णय एक पीढ़ी के लिए सीमा पार कराधान को आकार देंगे। नई दिल्ली में आज ब्रिक्स कर प्रमुखों की बैठक के उद्घाटन सत्र में वित्त मंत्री ने ये बात कही। उन्होंने वैश्विक करदाताओं से ब्रिक्स की मजबूत भूमिका का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इन वार्ताओं को निष्पक्ष और स्थायी बनाने के लिए उनका दृष्टिकोण आवश्यक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि कर प्रशासन कागजी प्रक्रियाओं से डेटा आधारित और डिजिटल प्रणालियों की ओर बढ़ रहा है। वित्त मंत्री ने इस वर्ष ब्रिक्स कर सत्र से उभरने वाली तीन व्यापक क्षेत्रों, प्रौद्योगिकी, प्रशासन और लोगों की पहचान के बारे में जानकारी दी।
2: Look at what has emerged from the BRICS.
3: इस साल ब्रिक्स के टैक्स ट्रैक में विशेष रूप से टेक्नोलॉजी, डेटा का इस्तेमाल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को ज्यादा सटीक और आसान बनाया जा सके और ये लोगों के मनमाने फैसलों पर कम निर्भर रहे। प्रशासन, गवर्नेंस का ढांचा, साझा मानक और व्यावहारिक टूल्स, ये सब मिलकर सहयोग को एक मजबूत संस्थागत रूप प्रदान करते हैं।
2: A durable institutional shape.
1: श्रीमती सीतारामन ने कहा कि बैठक में दो नए कार्य समूहों, अंतर्राष्ट्रीय कराधान और हस्तांतरण मूल्य निर्धारण तथा राजस्व सांख्यिकी के लिए प्रारंभिक दस्तावेजों पर विचार विमर्श किया गया। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे पर पहली बार कवच का चौथा चरण की शुरुआत करते हुए रेल सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रेल मंत्रालय ने बताया कि हैदराबाद मंडल के मलकानगिरी कामारेड्डी रेलखंड पर 104 किलोमीटर से अधिक मार्ग पर कवच संस्करण को अपग्रेड करते हुए चौथा चरण सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। एक रिपोर्ट।
4: कवच भारत में विकसित की गई एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है, जिसका उद्देश्य रेल संचालन को अधिक सुरक्षित बनाना है। यह प्रणाली लोको पायलट को ट्रेन की निर्धारित गति सीमा में चलाने में मदद करती है। यदि किसी स्थिति में लोको पायलट समय पर ब्रेक नहीं लगाता तो जरूरत पड़ने पर कवच अपने आप ब्रेक लगा सकता है। इस तकनीक का मुख्य उद्देश्य खतरनाक परिस्थितियों में ट्रेन की गति को नियंत्रित करना, ट्रेनों के बीच टक्कर के जोखिम को कम करना और खराब मौसम और कम दृश्यता जैसी परिस्थितियों में ट्रेन संचालन को अधिक सुरक्षित बनाना है। दक्षिण मध्य रेलवे पर कवच 4.0 का सफलतापूर्वक संचालन शुरू होना भारतीय रेलवे की स्वदेशी सुरक्षा तकनीक को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के आज 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2018 में झारखंड के रांची में इस योजना का शुभारंभ किया था। ये विश्व की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना से चिकित्सा खर्च में रिकॉर्ड बचत हुई है और गरीब तथा मध्यम वर्ग को लाभ मिला है। श्री मोदी ने कहा

0: कहा कि 8 वर्ष पहले यह योजना प्रत्येक भारतीय को उच्च गुणवत्ता वाली और किफायती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। उन्होंने कहा कि आज 6 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा लाभ मिल रहा है। एक रिपोर्ट।
1: आयुष्मान भारत योजना के तहत पिछले 8 वर्षों में 13 करोड़ से अधिक लोगों ने मुफ्त इलाज का लाभ उठाया है, जिस पर सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं। इस योजना के तहत 38,000 सरकारी और निजी अस्पतालों को जोड़ा गया है और यह योजना देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। इससे देश भर में लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से मिल रही है और गंभीर बीमारियों के इलाज की सुविधा भी मिल रही है। हाल ही में मोदी सरकार ने इस योजना का लाभ 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों के साथ साथ 37 लाख से अधिक आशा कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के परिवारों तक भी बढ़ाया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब, जरूरतमंद और कमजोर वर्ग के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि आयुर्वेद जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम और संतुलित आहार, अनुशासित दिनचर्या, अच्छी नींद, योग और प्रकृति के साथ सामंजस्य के माध्यम से स्वास्थ्य बनाए रखने का एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। नागपुर में 11वें आयुर्वेद दिवस के राष्ट्रीय समारोह में श्री जाधव ने कहा कि इस वर्ष के आयुर्वेद दिवस का विषय एक स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद है। आयुर्वेद से जुड़ी जीवन शैली के महत्व पर बल देते हुए श्री जाधव ने कहा कि स्वास्थ्य देखभाल का पहला केंद्र घर है और स्वास्थ्य की पहली नींव केवल दवाओं से नहीं बल्कि एक स्वस्थ जीवन शैली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। यह यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण से प्रेरित सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हम अपनी विशेष श्रृंखला में लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला रही प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
2: पीएम स्वनिधि योजना से तेलंगाना में विक्रेताओं को आर्थिक विकास और वित्तीय समावेशन में मदद मिली है। ये योजना आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। मार्च 2023 तक बढ़ाई गई इस पहल के तहत 10,000, 20,000 और 50,000 रुपए की तय किश्तों में बिना गारंटी के ऋण दिए जाते हैं। शहरी स्थानीय निकायों और राज्य स्तरीय बैंकर समिति के माध्यम से स्थानीय स्तर पर लागू की गई इस योजना में तेलंगाना लगातार देश में बेहतर प्रदर्शनकर्ताओं में शामिल रहा है। राज्य में लगभग 4,47,000 विक्रेताओं तक 1,240 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि पहुंची है। खास बात यह है कि स्थानीय लाभार्थियों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 65% है, जो राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की प्रशंसा की है क्योंकि इसने विक्रेताओं के परिवारों की आय में 20% से ज्यादा की बढ़ोतरी की है और लाखों लोगों को औपचारिक बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा है।
3: पीएम स्वनिधि ने देश के लाखों स्ट्रीट वेंडर्स को फॉर्मल सिस्टम से जोड़ा और अब इन साथियों के पास भी स्वनिधि क्रेडिट कार्ड है, यानी इनके पास एक फॉर्मल क्रेडिट एक्सेस का टूल है। और स्टडीज बताती है कि स्वनिधि के इन बेनिफिशियरीज की एवरेज एनुअल इनकम 20% से ज्यादा बढ़ी है। यही नहीं, इससे इन परिवारों की हाउसिंग, न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर एक्सेस और बच्चों की एजुकेशन, इनमें भी बहुत सुधार हुआ है।
2: करीमनगर के सब्जी विक्रेता रमेश ने पीएम स्वनिधि के तहत मिलने वाले लोन का इस्तेमाल करके अपने छोटे से कारोबार को बढ़ाया और अब वे रोजाना 1 लाख रुपए का स्टॉक रखते हैं।
4: माय नेम इज रमेश।
5: मेरा नाम रमेश है। पिछले 3 सालों से मैं करीमनगर में सब्जी का कारोबार कर रहा हूं। पीएम स्वनिधि योजना की मदद से मुझे 10,000 रुपए का पहला लोन मिला। मैंने इसे 12 महीनों के अंदर सफलतापूर्वक चुका दिया। इसके बाद 20,000 रुपए का दूसरा लोन मंजूर हुआ, मैंने उसे भी 22 महीनों में चुका दिया। अभी 50,000 रुपए का लोन चल रहा है। मैं हर महीने बैंक की किस्तें समय पर चुका रहा हूं। जिस कारोबार को मैंने 10,000 रुपए से शुरू किया था वो अब इतना बढ़ गया है कि मैं रोजाना 1 लाख रुपए का स्टॉक रखता हूं।
4: स्टॉक वर्थ 1 लाख रुपए।
2: लचीले और बिना ब्याज वाली पूंजी के लिए UPI लिंक्ड रुपे स्वनिधि क्रेडिट कार्ड शुरू करने के साथ ये कार्यक्रम अनौपचारिक कर्ज के चक्र को खत्म कर वित्तीय सम्मान और सतत विकास को बढ़ावा दे रहा है। हैदराबाद से श्रीनिवास एम रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।

0: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान और फ्रांस के विदेश मंत्री जियां नोएल बेरोट ने न्यूयॉर्क में त्रिपक्षीय बैठक में भाग लिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वीं सत्र के दौरान इस बैठक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य विज्ञान, ऊर्जा और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की गई। तीनों नेताओं ने संस्कृति और विरासत सहित आपसी हित के क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे निम्न दबाव के कारण उड़ीसा में मौसम खराब है। यही स्थिति उत्तर आंध्र प्रदेश, दक्षिण उड़ीसा तट की ओर बन रही है। इसके चलते राज्य के दक्षिणी और तटीय जिलों में तेज बारिश हो रही है।
1: राज्य सरकार ने उड़ीसा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स की 33 टीमें तैनात की है और चक्रवात और बाढ़ आश्रय स्थलों को तैयार रखा गया है। कई संवेदनशील जिलों में स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र बंद कर दिए गए हैं। भूस्खलन और अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए एहतियात के तौर पर कंधमाल में कलिंगा घाट को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। लोगों को सलाह दी गई है कि वो उफान पर चल रही नदियों और नालों से दूर रहे और स्थानीय प्रशासन की सलाह का पालन करे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: भारत की मीराबाई चानू ने एशियाई खेलों की भारोत्तोलन प्रतियोगिता में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। भारत के जय मीणा ने आज सॉफ्ट टेनिस के पुरुष सिंगल्स का कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने एशियाई खेलों में निशानेबाजी की स्कीट स्पर्धा के महिला और पुरुष वर्ग के कांस्य पदक भी जीते। अनंतजीत सिंह नरुका, मेहराज अहमद खान और भवतेज सिंह गिल की टीम ने 346 अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान हासिल किया। महिला वर्ग में महेश्वरी सिंह, परिनाज धालीवाल और रायजा ढिल्लों की भारतीय टिकड़ी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। भारतीय टीम ने महिला कबड्डी में आज दूसरे ग्रुप मैच में ईरान को 23 के मुकाबले 37 अंक से हराया। इससे पहले भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 21 के मुकाबले 42 अंक से मात दी थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने एशियाई खेलों में महिला इसकी टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर परिनाज धारीवाल, रायजा ढिल्लों और महेश्वरी चौहान को बधाई दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, युवाओं के प्रयासों से भारत 2047 से पहले विकसित राष्ट्र बन जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ब्रिक्स कर प्रमुखों की बैठक का उद्घाटन किया। वैश्विक करदाताओं से ब्रिक्स की मजबूत भूमिका का आह्वान। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे पर पहली बार कवच के चौथे चरण की शुरुआत की। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के देश भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में 8 वर्ष पूरे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस के विदेश मंत्रियों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष और ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की। और जापान एशियाई खेलों में मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: शब्दांग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत उमंग कार्यक्रम में।
1: और अजीत का भी नमस्कार। श्रोताओं, आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने सुविचार भेजते हुए बड़ा खूबसूरत लिखा है, आइए सुनते हैं।
2: रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस चलने का हौसला होना चाहिए।
1: क्या बात है, रास्ते कभी खत्म नहीं होते,
2: बस चलने का हौसला होना चाहिए।
1: जी, इस सुंदर विचार के लिए आप सबको हमारा आभार। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो हमें सबसे पहला संदेश मिला है छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का।
2: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
1: और संजय नगर लखनऊ उत्तर प्रदेश से वारिस अली खान, इस्लामुल निशा शकील, अहमद शहनाज,

0: खान और दानिश।
1: कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल।
0: श्रोताओ, हमेशा की तरह हमारा आभार आप सबको संदेश भेजने के लिए। एक बार फिर से हम लेकर आए हैं ये भी जानिए कि अगले एपिसोड में एक बेहद रोचक आविष्कार की कहानी।
1: जी हाँ श्रोताओ, ऐसा तो है नहीं कि अतीत में या पुराने समय में लोगों को बुखार नहीं आता था। जी हाँ, आता जरूर था, उनका शरीर भी गर्म होता था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता चलता था कि शरीर है कितना गर्म।
0: जी, तो आज हम आपको उमंग कार्यक्रम के द्वारा ले चलेंगे प्राचीन काल के एक ऐसे युग में जहाँ ना कोई ट्रेन है और ना जहाज। अजीब सा दृश्य होता होगा
1: जी।
0: चिकित्सक मरीज के माथे पर हाथ रखकर कहते होंगे, बुखार तो है, लेकिन श्रोताओं ये ऐसी बात हुई जैसे कोई दुकानदार बिना तराजू के कह दे लगता है 5 किलो होगा।
1: तो आइए चलते हैं लगभग 400 साल पीछे, सन 1592 के आसपास। इटली के महान वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली ने एक ऐसा उपकरण बनाया जिसे आज के थर्मामीटर का शुरुआती पूर्वज माना जा सकता है,
0: और इस उपकरण को थर्मोस्कोप कहा गया।
1: जी,
0: आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या किया था। तो उन्होंने ये किया था कि उन्होंने कांच की एक नली बनाई। इस नली के ऊपरी हिस्से में हवा बंद रहती थी और नीचे का हिस्सा पानी में डूबा रहता था।
1: तो श्रोता, होता ये था कि जब कांच का बल्ब गर्म किया जाता था तो अंदर की हवा फैलती थी और तापमान के अनुसार पानी का स्तर ऊपर नीचे होता था। इस तरह इस शुरुआती यंत्र से बस इतना ही पता चलता था कि तापमान बढ़ा या घटा है, इसमें कोई निश्चित संख्या का पैमाना नहीं था।
0: अभी एक बहुत बड़ी समस्या बाकी थी। ये यंत्र बता तो देता था कि चीज गर्म हुई या ठंडी, लेकिन ये नहीं बताता था कि कितनी गर्म या कितनी ठंडी।
1: बिल्कुल।
0: फिर आया 17वीं शताब्दी का दौर। बहुत से वैज्ञानिकों ने तापमान मापने के लिए अलग अलग तरह के उपकरण बनाए, लेकिन अब तक कोई एक निश्चित पैमाना नहीं था। किसी के थर्मामीटर पर एक संख्या तो दूसरे के थर्मामीटर पर दूसरी संख्या, बड़ी दुविधा थी।
1: फिर इस कहानी में प्रवेश होता है एक महान आविष्कारक का, जिसका नाम था डेनियल गैब्रियल फारेनहाइट। उन्होंने पाया कि पारा या मरकरी तापमान के प्रति बहुत संवेदनशील है। हल्के ताप पर भी पारा प्रतिक्रिया देता है, यानी फैलता है या सिकुड़ता है। सन 1724 में फारेनहाइट ने अपना तापमान का पैमाना प्रकाशित किया और तापमान को संख्याओं में व्यक्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
0: श्रोताओं, ये क्रांतिकारी खोज थी। अब डॉक्टर निश्चित रूप से कह सकते थे कि मरीज के शरीर का तापमान कितना है
1: जी।
0: और यहीं से तापमान की भाषा बदल गई। अब गर्मी और ठंडक सिर्फ महसूस करने की चीज नहीं रही, वह मापने योग्य वैज्ञानिक मात्रा बन गई
1: जी।
0: इससे चिकित्सा करने के तरीकों में भी भारी असर पड़ा।
1: लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ वर्षों बाद स्वीडन के वैज्ञानिक एंडर्स सेल्सियस ने सन 1742 में एक और सरल पैमाना प्रस्तावित किया, जिसे हम सेल्सियस स्केल कहते हैं। इस पैमाने में पानी के जमने और उबलने के बिंदुओं को आधार बनाया गया।
0: तो श्रोताओं, अब दुनिया के पास तापमान को मापने की एक व्यवस्थित भाषा थी
1: जी।
0: अब थर्मामीटर प्रयोगशालाओं से निकलकर अस्पतालों, घरों और मौसम विज्ञान विभाग तक पहुंच गया।
1: फिर आया डिजिटल युग। पारे वाले थर्मामीटर की जगह इलेक्ट्रॉनिक सेंसर आए
0: जी।
1: अब कुछ ही सेकंड में तापमान स्क्रीन पर दिखाई देने लगा, और आज तो हमारे पास ऐसे डिजिटल थर्मामीटर हैं जो बिना छुए तापमान पता कर सकते हैं।
0: तो है ना श्रोताओं, बेहद रोचक। जरा कल्पना कीजिए, एक समय इंसान हाथ लगाकर अनुमान लगाता था, और आज मशीन पलक झपकते ही बता देती है
1: जी।
0: यही तो विज्ञान की खूबसूरती है
1: जी। एक छोटी सी जिज्ञासा से शुरुआत होती है
0: कि तापमान या गर्मी कितनी है,
1: और फिर सदियों की खोज, प्रयोग और सुधार के बाद मनुष्य वहाँ पहुँचता है जहाँ वो उस तापमान को एक संख्या में पढ़ सकता है।
0: तो श्रोताओं, अगली बार जब आप थर्मामीटर को हाथ में लें तो याद रखिएगा, यह सिर्फ एक छोटी सी मशीन नहीं है। इसके पीछे गैलीलियो का प्रयोग है, फारेनहाइट का पैमाना है, और सेल्सियस की वैज्ञानिक सोच है, और सदियों की मानव जिज्ञासा है। यही तो विज्ञान की सुंदर यात्रा है।
1: अनुमान से प्रमाण तक, अनुभव करने से मापने तक, और प्रश्न से आविष्कार तक
0: जी। और प्रश्न से आविष्कार तक। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की रोचक जानकारी। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी, और अच्छी लगी हो तो जरूर संदेश भेजिएगा। अब सुनिए आज का प्रश्न। आपको पता करना है कि थर्मामीटर को हिंदी में क्या कहते हैं, और थर्मामीटर के आविष्कार की प्रक्रिया में शामिल मुख्य 3 वैज्ञानिकों के नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: थर्मामीटर को हिंदी में क्या कहते हैं, और थर्मामीटर के आविष्कार की प्रक्रिया में शामिल मुख्य 3 वैज्ञानिकों के नाम बताइए। आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर, और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्यपुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप

0: कीजिए NCERT बुक्स PDF और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
1: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम और शीर्षक है वी आर गोइंग टू द जू।
0: इस कार्यक्रम में गीत संगीत और ध्वनि प्रभावों के माध्यम से बच्चों को चिड़ियाघर की सैर कराई गई है और कई पशु पक्षियों के बारे में रोचक ढंग से बताया गया है। पशु पक्षियों की ध्वनि भी बच्चों को सुनाई गई है जिससे श्रवण आनंद और अधिक बढ़ जाता है।
2: चिल्ड्रन, हैव यू एवर विजिटेड अ जू?
3: अ जू?
2: यस, अ जू।
3: ओह यस।
2: ऑल राइट, सो टेल मी, व्हाट डू यू सी इन अ जू?
3: टाइगर, लायन,
2: यस,
3: मंकी, बर्ड्स ऑफ डिफरेंट काइंड,
2: वेरी नाइस,
3: कैमल, जिराफ एंड सो ऑन।
2: ओह वाओ, सो हियर इज अ चाइल्ड लाइक यू हु वांट्स टू गो टू अ जू। Now, let's recite this poem and you all repeat after me. Ready?
3: Ready!
2: The poem goes like this. We are going to the zoo to see a kangaroo.
3: We are going to the zoo to see a kangaroo.
2: And a lion too.
3: And a lion too.
2: We are going to the zoo.
3: We are going to the zoo.
2: The monkeys swing and climb.
3: The monkeys swing and climb.
2: They know it's feeding time.
3: They know it's feeding time.
2: The polar bear and seals,
3: the polar bear and seals,
2: enjoy their fishy meals,
3: enjoy their fishy meals.
2: Yes, we are going to the zoo.
3: We are going to the zoo.
2: The snakes all slide along.
3: The snakes all slide along.
2: The skunk just makes a pong.
3: The skunk just makes a pong.
2: The tiger gives a roar.
3: The tiger gives a roar.
2: He wants to eat some more.
3: He wants to eat some more.
2: We are going to the zoo.
3: We are going to the zoo.
2: Yes, we are going to the zoo.
3: We are going to the zoo.
2: So children, you all have listened to this poem just now. Hope you have enjoyed, isn't it?
3: Yes!
2: All right. So now, what will we do?
4: We will hum
5: and we will sing along.
2: Yes, we will hum and sing along.
3: Yay!

0: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम चींटी और हाथी।
1: भाषा शिक्षण के उद्देश्य से निर्मित लोक कथा पर आधारित इस कार्यक्रम के द्वारा संदेश दिया गया है कि कभी भी किसी को छोटा और कमजोर नहीं समझना चाहिए और सबकी प्रतिभाओं और योग्यताओं का सम्मान करना चाहिए।

सुबह भोजन की तलाश में चल पड़ती थी। परिवार की सभी चींटियां उसके पीछे पीछे चलती।

वहाँ एक हाथी भी रहता था। वो दिन भर इधर उधर घूमता रहता था।

जंगल के पेड़ पौधों को तोड़ता। कभी कभी हाथी अपनी सूंड में पानी भरकर लाता और जानवरों पर डाल देता। जंगल के जानवर उससे बहुत परेशान रहते। हाथी की एक बुरी आदत और भी थी। जहां कहीं भी वो चींटियों को देखता, कुचल देता। चींटी ये सब देखती और दुखी होती।

0: एक दिन चींटी ने हाथी से कहा,
1: तुम दूसरों को बहुत सताते हो, ये बात ठीक नहीं।
0: हाथी बोला,
2: चुप रहो, मैं चाहे जो करूं, तुम बहुत छोटी हो, ज्यादा बोलोगी तो तुम्हें भी कुचल दूंगा। हाँ,
1: चींटी चुप हो गई और घास में जाकर छिप गई।

हाथी इधर उधर घूम रहा था। तभी चींटी चुपके से उसकी सूंड में घुस गई और उसे काटने लगी।

0: बहुत दुखी हो गया। वो बोला,
1: मुझे माफ कर दो, अब मैं किसी को कभी नहीं सताऊंगा।
0: चींटी को दया आ गई। वो हाथी की सूंड से बाहर निकल आई। फिर बोली,
2: किसी को छोटा और कमजोर नहीं समझना चाहिए।

हाथी परेशान होने लगा। उसने सूंड को जोर जोर से हिलाया।

0: पर उसकी परेशानी किसी तरह भी कम न हुई। तब चींटी बोली,
1: परेशान क्यों हो रहे हो?

0: तो अभी आपने सुना कार्यक्रम चींटी और हाथी, और अब सुनते हैं एक और कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है देखो डाकिया आया।
1: ये कार्यक्रम पोस्ट ऑफिस, डाक सेवा और विशेषकर डाकिया के बारे में रोचक विवरण देता है। कार्यक्रम में बताया गया है कि पुराने समय में डाक सेवा और एक डाकिया का कितना अधिक महत्व था। नई पीढ़ी के बच्चों के लिए ये जानकारी बहुत ही रोचक होगी।
2: चंचल इतनी चंचल है, बहुत बनाती बातें।

0: जाते
1: किसी एक दिन।
2: एक दिन जब चंचल अपने दोस्तों के साथ घर के बाहर खेल रही थी तो उसने देखा एक आदमी साइकिल पर सवार अपनी धुन में ट्रिन ट्रिन घंटी बजाते हुए उसके घर की तरफ आ रहा है। कौन हो सकता है ये? इतने में अचानक उसका एक दोस्त बोल पड़ा,
3: देखो डाकिया आया।
2: चंचल सोचने लगी, हाँ डाकिया, ये कौन? बस चंचल तो खेलना वेलना सब भूल गई, खेलना छोड़कर घर की तरफ गई। फिर क्या था, डाकिया अंकल के साथ बातूनी चंचल शुरू हो गई।
4: डाकिया अंकल,
5: आओ बेटा।
4: अरे मेरा नाम बेटा नहीं है, मेरा नाम चंचल है, चंचल। और आपको पता है मैं उस सामने वाले घर में रहती हूँ।
5: अच्छा चंचल, बेटे ये तुम्हारा पत्र है।
4: लेकिन आपको कैसे पता चला कि ये चिट्ठी हमारे घर पहुँचानी है?
5: इस पे बेटे आपका नाम और पता लिखा है, पता मतलब एड्रेस लिखा है आपका, उससे पता चलता है कि ये आपका पत्र है।
4: तो सब जगह आप ही चिट्ठी पहुँचाते हो?
5: नहीं, हर शहर में हमारे कर्मचारी हैं, हम यहाँ से उनके पास डाक मोटर से ट्रेन से हम उनके पास भेजेंगे, वहाँ वो आपको जिस एड्रेस पे चिट्ठी जानी हो उस एड्रेस पे वो चिट्ठी पहुँचाएंगे। हम सब जगह अपने देश में नहीं विदेश तक भी हम चिट्ठियाँ पहुँचाते हैं। बेटे हमारा ये नेटवर्क बहुत बड़ा है, सारी दुनिया में फैला हुआ है, कहीं पे एरोप्लेन से कहीं पे ट्रेन से हम सब जगह चिट्ठियाँ पहुँचाते हैं।
4: नेटवर्क क्या होता है अंकल, मुझे कुछ समझ नहीं आया।
5: नेटवर्क हमारा विभाग जिसमें लाखों कर्मचारी काम करते हैं, गांव-गांव शहर शहर सब जगह हमारे कर्मचारी हैं जो कि आपकी चिट्ठी हर जगह पहुंचा देते हैं।
4: लाखों कर्मचारी सब लोग कैसे काम करते हैं?
5: ये बेटा हर जगह से डाक इकट्ठी करके और उनको एक जगह इकट्ठा करते हैं, वहाँ से छटाई करके जिस जगह की वो डाक हो उस जगह के बैग में उसको बंद करके जहाँ रेल से जानी हो वहाँ रेल से भेजते हैं, जहाँ जहाज से जानी हो वहाँ जहाज से, हर जगह की डाक हम वहीं उसके एड्रेस पर भिजवाते हैं।
4: तो आप पूरी दुनिया में चिट्ठी पहुंचाते हो?
5: हाँ बेटे, आप चिट्ठी कहीं भी भेज सकते हो, हम हर जगह आपकी चिट्ठी पहुंचा देंगे, आपका उसमें नाम पता साफ साफ लिखा हो, शहर का नाम पिन कोड वगैरह अगर आप सही लिखते हैं साफ लिखते हैं तो आप

0: आपका पत्र हर जगह पहुंच जाए।
1: ओह, आपको तो बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी।
0: जी हाँ बेटे, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है इस काम के लिए, चाहे कैसा भी मौसम हो। आपकी चिट्ठी जिस दिन भी आपने लेटर बॉक्स में डाली, उसी दिन से उस पे काम शुरू हो जाता है। चाहे धूप हो, बारिश हो, तूफान हो, हमें हर मौसम में ही काम करना होता है। आपकी चिट्ठी समय पर पहुंचाना ही हमारा काम है।
1: डाकिया अंकल, आप तो बहुत अच्छे हैं। तो फिर आज से हम दोनों दोस्त हुए, ठीक है?
0: हाँ बेटे, जब अगली चिट्ठी आएगी हम फिर मिलेंगे, अच्छे दोस्त हैं हम।
1: हाँ हाँ जरूर मिलेंगे। धन्यवाद डाकिया अंकल।
0: धन्यवाद चंचल।
2: और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुम लता, जगबंधु
3: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगा हर्ट्ज पर।

कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए किसान भाइयों, इस बुधवार दिनांक 23 सितंबर 2026 यानी कि आज शाम 6:50 यानी 3:30 की अवधि के हेलो ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम में इस बार आज का विषय है पशुपालन एवं पशु रोगों पर आधारित। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर जितेंद्र सिंह गंधार। किसान भाई, पशुपालक भाई, पशुपालन एवं पशु रोगों जैसे लंपी रोग, खुरपका, मुहपका, अफरा, गलघोटू, पशुओं का आहार एवं आवास व्यवस्था, टीकाकरण जैसे बिंदुओं पर जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर जितेंद्र सिंह गंधार। आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565-2530-135 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 9412-2255-75 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस संबंध में सीधे बातचीत कर सकते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह गंधार से। कार्यक्रम का समय होगा बुधवार यानी कि आज 23 सितंबर 2026 संध्या के समय 6:50 पर सूचना समाप्त हुई। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय साथियों दोपहर के 3:00 अब हमारी ये सभा यहीं समाप्त होती है। संध्या के 5:30 पर आपसे हमारे दूसरी सभा में पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।

FM 102.2 मेगा हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 5:30 हो चुके हैं। अब हमारी दूसरी सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

युववाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपका रेडियो हमसफर अरविंद कुमार। कैसे हैं आप? उम्मीद है आपकी सुबह से लेकर अब तक का दिन अच्छा बीता होगा, और अगर दिन थोड़ा व्यस्त रहा है तो आइए कुछ पल इस रेडियो हमसफर के साथ अपना समय बिताइए। दोस्तों, आज की बात शुरू होती है एक ऐसे सवाल से, क्या संवाद केवल शब्दों से होता है? अगर कोई बोल नहीं सकता तो क्या वो अपनी बात नहीं कह सकता? और अगर कोई सुन नहीं सकता तो क्या वो दुनिया की आवाजों को समझ नहीं सकता? बिल्कुल समझ सकता है, क्योंकि इंसान ने संवाद के लिए केवल आवाज का सहारा नहीं लिया, हाथों के संकेत, चेहरे के भाव और शरीर की मुद्रा भी संवाद की भाषा बन सकती है। आज है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। हर वर्ष 23 सितंबर को, यानी आज के दिन, ये दिवस मनाया जाता है। ये दिन दुनिया में सांकेतिक भाषाओं के महत्व और बधिर समुदाय के भाषाई अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने का अवसर है। इस दिवस का संबंध विश्व बधिर महासंघ, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डीफ की स्थापना से जुड़ा हुआ है, और वर्ष 1951 में रोम में इस संगठन की स्थापना हुई थी। बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस घोषित किया और वर्ष 2018 से यह दिवस मनाया जाने लगा। साथियों, सांकेतिक भाषा केवल इशारों की व्यवस्था नहीं है, यह अपने व्याकरण, संरचना और अभिव्यक्ति वाली एक पूर्ण भाषा हो सकती है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग सांकेतिक भाषाएं विकसित हुई हैं, और इसका महत्व केवल इतना नहीं है कि इससे कोई व्यक्ति अपनी बात कह सके। इसका असली महत्व है समावेशन।

0: यानी ऐसा समाज जहां किसी व्यक्ति की अभिव्यक्ति का तरीका उसके अवसरों में न बाधा, बाधित न बने। तो आज का ये दिन हमें एक बहुत सुंदर बात सिखाता है, किसी को समझने के लिए हमेशा उसके शब्द सुनना जरूरी नहीं है, कभी कभी उसके संकेतों को समझना भी जरूरी होता है। और अभी विस्तार से थोड़ा आगे बढ़िए और हम सुनते हैं मिलकर एक ऐसा गीत जिसमें अपनी धुन है, अपनी मस्ती है और अपनी अलग ही रंगत है।
1: तो खो दो जी।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उर्षि बनर्जी और सौरभ श्रीवास्तव के सुरों में गैंग्स ऑफ वाशीपुर फिल्म का गीत, जिसे लिखा था वरुण ग्रोवर और पीयूष मिश्र ने और संगीत तैयार किया था स्नेहा खानवलकर ने।

दोस्तों, आज की बात के क्रम में अब रुख करते हैं हिंदी साहित्य की उस आवाज की ओर जिसकी कविता में ओज भी है, संवेदना भी है, चेतना भी है और मनुष्य के भीतर बेचैनी भी। आज है महान हिंदी कवि रामधारी सिंह दिनकर जयंती। दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर सन 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। एक साधारण परिवार और ग्रामीण परिवेश से निकलकर उन्होंने हिंदी साहित्य में ऐसा स्थान बनाया कि उन्हें राष्ट्रकवि के नाम से व्यापक रूप से स्मरण किया जाने लगा। लेकिन दिनकर जी केवल राष्ट्र भावना के कवि नहीं,

0: उनके व्यापक साहित्य और उनके व्यक्तित्व को सीमित कर देना होगा। उनकी रचनाओं में इतिहास है, संस्कृति है, प्रेम है, विद्रोह है, सामाजिक चेतना है और मनुष्य की गरिमा का प्रश्न भी है। उनकी प्रमुख कृतियों में रेणुका, हुंकार, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी और परशुराम की प्रतीक्षा जैसी रचनाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। रश्मिरथी में उन्होंने महाभारत के कर्ण को केंद्र में रखकर जन्म, सामाजिक प्रतिष्ठा, संघर्ष, मित्रता और मानवीय गरिमा जैसे प्रश्नों को स्वर दिया। वहीं कुरुक्षेत्र में महाभारत के प्रसंग के माध्यम से युद्ध और शांति के प्रश्नों पर विचार किया और उर्वशी में प्रेम, सौंदर्य और मानवीय अनुभूति को एक अलग ही संसार दिया। दिनकर का व्यक्तित्व केवल कवि का नहीं था, वे लेखक थे, चिंतक थे और सार्वजनिक जीवन से जुड़े व्यक्तित्व भी थे। वे भारतीय संसद की राज्यसभा के सदस्य भी रहे और साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी साहित्य साधना को अनेक सम्मानों से मान्यता मिली, साहित्य अकादमी पुरस्कार और बाद में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों, ये उस कवि को पढ़ना है जो अपने समय के सवालों से टकराता है और हमें भी अपने समय के सवालों के सामने खड़ा करता है, और शायद इसीलिए उनकी कविता आज भी पाठकों तक पहुंचती है, क्योंकि उसमें केवल शब्द नहीं, शब्दों के भीतर एक बेचैन चेतना है। रामधारी सिंह दिनकर जयंती के आज के इस अवसर पर हम आपको सुनवा रहे हैं उन्हीं से संबंधित एक वार्ता, जैसा मैंने उन्हें पाया श्री दिनकर। वार्ताकार हैं पद्मा सचदेवा।
1: पिछले वर्ष जब पक्षाघात की वजह से दिनकर जी बीमार हो गए थे, उन्हीं दिनों ज्ञानपीठ का अवार्ड मिलने पर उनके चाहने वालों ने बंबई में एक समारोह का आयोजन किया था, और जाहिर है उनका बीमार होने के बाद ये समारोह जो था स्थगित कर देना पड़ा। लेकिन उन्हीं दिनों मैं उन्हें देखने दिल्ली गई थी। जब मैं गई तब मैंने सोचा, मालूम नहीं दिनकर जी कितने बीमार होंगे, चारपाई पर लेटे होंगे, उनकी नतनी या कोई नाती या उनकी बेटी उनके सिरहाने बैठकर उनका सिर मल रही होगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। जब मैं गई तो दिनकर जी रोज की तरह पूजा कर रहे थे। मैं जाकर दूसरे कमरे में बैठ गई। थोड़ी देर में वो आए और कहने लगे, देखो घंटी बज गई, मृत्यु अब समीप ही है। मैंने उनके पांव छुए और आंखों में जल भर कर कहा, आप कैसी बात करते हैं? तो कहने लगे, पगली, मुझे रोने वाला कोई भी नहीं होगा, लेकिन आज जब वो इस दुनिया में नहीं है, तब क्या वो देख सकते हैं कि उन्हें रोने वाले कितने ज्यादा लोग हैं? साहित्य के क्षेत्र में उनके चले जाने के बाद जो अंधेरा हो गया है, उस अंधेरे में उनके चाहने वालों के आंसू दियों की तरह, लौ की तरह टिमटिमा रहे हैं। इस बार भी ज्ञानपीठ के अवार्ड के समारोह में मैं दिल्ली गई थी। विज्ञान भवन में घुसते ही अंदर पीले फूलों की एक चादर सी बिछी हुई थी, जैसे बहुत ही खूबसूरत फूलों से निकाला हुआ हो। बाईं तरफ पुराने पिछले वर्ष के, उनसे पहले वर्षों के पुरस्कार विजेताओं की तस्वीरें लगी हुई थी बोर्ड पर, और अंतिम बोर्ड दिनकर जी का था। मैं बोर्ड के पास जाकर खड़ी हो गई और बहुत सी यादें चलचित्र की तरह मेरे दिमाग में घूमने लगी। पिछले वर्ष विज्ञान भवन में आने से पहले मुझे कहने लगे, कौन से कपड़े पहनूं? तब उनकी लंबी सी अचकन जो उन्होंने विशेष रूप से इस समय पर धुलवा कर रखी हुई थी, कहा, ये पहनिए। तो कहने लगे, थोड़ी सी ठंड है, गले में मफलर भी पहनूं? तो मैंने कहा, आप स्वेटर भी पहन लीजिए। तो एकदम डांट कर बोले, इतनी ठंड अभी कहाँ हुई है। लेकिन उस वक्त हम लोग इतने ज़्यादा खुश थे कि कभी ये सोच भी नहीं सकते थे कि अगले वर्ष जब ये समारोह होगा तब दिनकर जी नहीं होंगे। और आज मेरे हाथ में उनका वो पत्र है, उनका अंतिम पत्र जो उन्होंने मुझे लिखा।

था जिसमें उन्होंने हमेशा की तरह दो ही पंक्तियां लिखी हुई हैं, डाक वालों की वजह से अगर गलती से पत्र तुम्हें वक्त पर नहीं मिल सका तो भी छड़ी तुम पर ही बरसेगी। और उर्वशी की बहुत सी प्रतियां, उर्वशी काव्य की वो पंक्तियां जो वो लता जी से गवाना चाहते थे और जयदेव जी को जो उन्होंने भेजी थी। अभी मैं उस पत्र का उत्तर भी नहीं दे पाई थी कि दूसरे दिन सुबह ही ये दुखद समाचार मिला, तिरुपति में दिनकर जी ने अपने प्राण त्याग दिए। तब मुझे यही ख्याल आया जब उन्होंने कहा था तिरुपति चलोगी तो मैं क्यों उनके साथ नहीं चली गई, अंतिम बार देखती तो सही इतने बड़े शेर निर्भय कवि को मृत्यु कैसे ले गई, किस तरह। आखिरी बार जब मैं उनसे मिली थी तब दिल्ली में एक छोटे से कमरे में, जैसे कोई आदमी प्लेटफॉर्म पर अपना सारा सामान बांध कर बैठा होता है, वैसे दिनकर जी उस कमरे में थे। ट्रंक पड़े हुए थे, बंद ट्रंक, चंद किताबें बाहर पड़ी थी, उनमें उर्वशी भी थी। तो मैंने उनसे कहा ये कौन सी किताब है, जाकर मैंने उर्वशी उठा ली। और जब मैं आकर बैठी तो सिंह गर्जना करते हुए दहाड़ कर कहने लगे ये उर्वशी की प्रति मैं तुम्हें नहीं दूंगा, सिर्फ मरने पर ही ले सकूंगी। मैंने कहा ऐसी बातें क्यों करते हैं, तो कहने लगे तुम्हें दूसरी प्रति दिलवा देता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही खिन उदास हो गई थी। तब मैंने उनसे कहा दूसरी प्रति तो मैं भी खरीद सकती हूँ, लेकिन मुझे यही प्रति चाहिए जिसके हर पन्ने में आपका हाथ लगा है, जिसे आपने पढ़ा है। एक बहुत बड़ी बात जो दिनकर जी मुझे दे गए वो है मेरी डोगरी भाषा की ख्याति। बहुत पहले जब 20 बरस पहले करीब मैंने उन्हें श्रीनगर में जब देखा था तब चिनार के एक बहुत बड़े दरख्त के नीचे वो बैठे हुए थे। किसी ने मुझसे कहा वो दिनकर जी हैं, तो मैंने एक दूसरे चिनार की ओट से उन्हें देखा और मन में ये संकल्प किया कि कभी मेरी कविताओं की कोई पुस्तक छपी तो मैं इसी महाकवि से उसकी भूमिका लिखवाऊंगी। और जब एक सुबह को मैं धड़कते मन से, डरे हुए मन से उनके घर गई, तब मेरे मन में ये कभी ख्याल भी नहीं था कि आज के एक हफ्ते के अंदर अंदर ही वो भूमिका मेरी किताब के लिए लिख देंगे। मैं जाकर बैठी थी तो कहने लगे अच्छा तुम डोगरी की कवित्री हो, देखूं क्या लिखा है। तब मैंने अपनी बहुत सी कविताएं अनुवाद करके उन्हें सुनाई, वो कितने प्रसन्न हुए मैं आपको बता नहीं सकती। और आज ये कहने में मुझे संकोच भी नहीं होता कि उन्हें मेरी कविताएं बहुत ही पसंद आई। तभी तो उन्होंने जाने बगैर सिवाय एक कवित्री के मुझ पे भूमिका लिख दी, और उसमें जो कुछ उन्होंने लिखा उसमें साहित्य क्षेत्र में एक हलचल सी मच गई। इतने बड़े कवि का एक छोटी सी भाषा की छोटी सी कवित्री के बारे में ये लिखना कि पद्मा की कविता पढ़कर मुझे लगता है मैं अपनी कलम फेंक दूं, कितनी बड़ी बात थी। और मैं ये समझती हूँ कि इतनी बड़ी बात सिर्फ इतना बड़ा आदमी ही लिख सकता है। वो भूमिका छप जाने के बाद जो लोग मेरी डोगरी भाषा का नाम तक नहीं जानते थे वो उसे बहुत ज्यादा करीब से पहचानने लगे, क्योंकि दिनकर जी ने मेरी बहुत सी कविताओं का अनुवाद भी उस भूमिका में दिया हुआ है। इसके अलावा मैंने अपने बहुत से कवियों की रचनाएं उन्हें सुनाई जो कवि मुझे बहुत प्रिय थे, और बहुत से लोकगीत जो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं अक्सर मैं गाकर उन्हें सुनाया करती, बहुत प्रसन्न हुआ करते थे और हमेशा ये कहते थे कि तुम सिर्फ कविता किया करो और दुनिया की बहुत सी बातें तुम्हारी समझ में नहीं आती हैं। अंतिम दिनों में साधुओं की संगत में बैठना उन्हें बहुत अच्छा लगता था, कहा करते थे जी चाहता है मैं भी साधु हो जाऊं, एक आध चेला हो जाएं, बहुत सी खीर बना के रखें, पाँव मसला करें और मैं बैठा रहा करूं। खीर उन्हें बहुत पसंद थी, जलेबियां भी उन्हें बहुत पसंद थी और पीला रंग भी उन्हें बहुत पसंद था। पीला रंग चाहे वो साड़ी का रंग हो और चाहे केसरिया रंग हो, ये रंग उन्हें बहुत ही अच्छा लगता था। एक बार जब वो बहुत बरस पहले मद्रास गए थे तो एक ही रंग की 10-12 धोतियां ले आए, तो मैं इतना हंसी, मैंने उनसे कहा देखिए कोई स्त्री आपके साथ होती तब आपको मालूम रहता कि एक ही रंग की इतनी साड़ियों का कुछ हो सकता। तब वो कहने लगे मेरी बेटियां नातिने सबको बहुएं एक एक पीले रंग की साड़ी दे दूंगा। उनका कहना था पीले रंग की साड़ी में हर स्त्री सुंदर दिखती है। कितनी बातें याद आ रही हैं और कितनी बातों के आगे एक बहुत बड़ा मोटा सा आवरण पड़ा हुआ है। मैं यत्न कर रही हूँ इस आवरण को हटाने की, उसके पीछे से दिनकर जी को देखने की। याद आता है जब उनको पक्षाघात हुआ था उन्हें मैं देखने गई थी तो बैठकर उन्होंने सुई ली और इंसुलिन का इंजेक्शन अपने पेट में लगाया, फिर उसके बाद दूध लेकर शोभा दीदी आ गई तो दूध पीने लगे, तो कहने लगे अब किसी के प्रति मेरी कोई ममता नहीं है,

तभी उनके पांव के पास एक बिल्ली बैठी हुई थी। उनके हाथों गिरा हुआ थोड़ा सा दूध चाट रही थी। उसकी तरफ उन्होंने जब बहुत ही ममता से देखा तो मैं बड़े जोर से हंस पड़ी। और जब वहां से मैं आने लगी तो मैंने पूछा, आप बंबई कब आएंगे? तब कहने लगे, भविष्य के बारे में मुझसे कुछ मत पूछो, मैं तो तैयार होकर बैठा हूं, जब भी मृत्यु आएगी उसके साथ चला जाऊंगा।

0: आएगी उसके साथ चला जाऊंगा। और मृत्यु आई, आई नहीं, उन्होंने खुद उसको बुलाया। तिरुपति के मंदिर में पहली बार किसी कवि का पाठ हुआ और वो कवि थे रामधारी सिंह दिनकर। मैंने सुना हजारों लोग, हजारों श्रद्धालु जो वहाँ, जो उस वक्त वहाँ आए हुए थे, उन्होंने खड़े होकर दिनकर जी का कविता पाठ सुना। और ज्ञानपीठ का अवार्ड मिलने पर उन्होंने मन में एक संकल्प किया था कि तिरुपति जाकर भगवान की मूर्ति के आगे इतने रुपए चढ़ाएंगे और कविता पाठ करेंगे। तो ये संकल्प पूरा होने के बाद वो पैदल ही घर तक आ गए और रात को 11 बजे के करीब जब उन्हें दिल का दौरा पड़ा तो खुद चलकर गाड़ी में बैठे और सारे रास्ते में राम राम करते रहे। मैं सोचती हूँ राम राम कहते हुए क्या उनकी आंखों में उस वक्त अपने पोते, पोतियों, दोस्तों, मित्रों के चेहरे नहीं घूम गए होंगे जिन्हें वो इतना चाहते थे, इतनी ममता देते थे, इतना प्यार करते थे।
1: जैसा मैंने उन्हें पाया, श्री दिनकर। अभी आप सुन रहे थे ये विशेष वार्ता, वार्ताकार थी पद्मा सचदेवा। युववाणी कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं अभिजीत भट्टाचार्य और श्रेय घोषाल की आवाजों में बेशरम फिल्म का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे अभिजीत भट्टाचार्य और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में बेशरम फिल्म का गीत। और अब हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला और आखिरी गीत फिल्म सुई धागा से। वरुण ग्रोवर का लिखा हुआ यह गीत है, अनु मलिक का संगीत निर्देशन, आवाजें हैं पॉपॉन और रोणकी गुप्ता का, क्षमा करें रोंकड़ी गुप्ता का।

पापोन और रोंकड़ी गुप्ता की आवाज़ों में अभी आपने सुई धागा फिल्म का गीत सुना और इसी गीत के साथ ही युवाणी कार्यक्रम अब संपन्न होता है। मुझे यानी अरविंद को इस कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे युवा दोस्तों का कार्यक्रम युववाणी FM 102.2 MHz पर। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने को हैं, अब समाचार होंगे जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन और उससे जुड़े उपकरणों की खरीद के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 810 करोड़ रुपए से अधिक का समझौता किया है। इसकी आपूर्ति वर्ष 2027-28 और 2028-29 के बीच की जाएगी। ये हथियार हवा से जमीन पर मार करने वाला सटीक निर्देशित ग्लाइड बम है। इसे जैगवार, हॉक और सुखोई 30 MKI जैसे विमानों से दागा जा सकता है। ये लंबी दूरी से दुश्मन के हवाई ठिकानों को निष्क्रिय करने में सक्षम है। इस प्रणाली को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने देश में ही डिजाइन और विकसित किया है। इसमें 60% स्वदेशी सामग्री होगी। इससे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को और बढ़ावा मिलेगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इसके वायुसेना में शामिल किए जाने से उसकी परिचालन क्षमता बढ़ेगी। इससे देश की रक्षा तैयारियों को भी मजबूती मिलेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस के विदेश मंत्रियों के साथ त्रिपक्षीय बैठक में शामिल हुए। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग इस बैठक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य विज्ञान, ऊर्जा और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की गई। तीनों नेताओं ने संस्कृति और विरासत सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि आगामी कुछ वर्षों में बहुपक्षीय कर वार्ताओं में लिए गए निर्णय एक पीढ़ी के लिए सीमा पार कराधान को आकार देंगे। नई दिल्ली में ब्रिक्स कर प्रमुखों की बैठक में उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देश बड़ी विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं और उन्होंने महत्वपूर्ण घरेलू कर क्षमता का निर्माण किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि इन वार्ताओं को निष्पक्ष और स्थायी बनाने के लिए उनका दृष्टिकोण आवश्यक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के वडोदरा में ब्रह्मकुमारियों के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का लोकार्पण किया। उन्होंने विकसित भारत के लिए युवा, राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति की जागृति अभियान का भी शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश को ऐसी युवा शक्ति की आवश्यकता है जो ईमानदारी, जिम्मेदारी, करुणा, सह अस्तित्व और देशभक्ति की भावना से प्रेरित हो।
2: युवाओं को सशक्त, संस्कारवान, आत्मनिर्भर, शांतिपूर्ण और जिम्मेदार बनाना हम सब की जिम्मेदारी। हमें ऐसे युवा तैयार करना है जो ज्ञान, टेक्निक और कौशल से युक्त हो, साथ ही वे आत्मविश्वास, आत्म अनुशासन, सकारात्मक सोच, संवेदनशीलता और नैतिक मूल्यों से भी परिपूर्ण।
1: इससे पहले राष्ट्रपति ने वडोदरा के महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने पिछले 12 वर्ष में 23,000 से अधिक पदोन्नतियों को स्वीकृति दी है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि सरकार कर्मचारियों को काम के लिए एक बेहतर और अनुकूल माहौल देने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि वे प्रेरित रहें और अपने दायित्वों को प्रभावी ढंग से निभा सकें। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ और हरियाणा का और हरीश द्विवेदी को बिहार का प्रभारी बनाया गया है। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम जिले के रविवलसा के पास रानी एक्सप्रेस की चपेट में आने से 4 विद्यार्थी मारे गए और एक अन्य घायल हो गया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। श्री नायडू ने अधिकारियों से दुर्घटना के बारे में जानकारी ली और घायल विद्यार्थियों के बेहतर उपचार की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। एशियाई खेलों में रोशिबीना देवी नाउरूम वुशु के फाइनल में पहुंच गई।

0: 60 किलो के सेमीफाइनल में उन्होंने इंडोनेशिया की थानिया कुसुम निंगा तियास को हराया। वहीं भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारतीय उल्लक मीराबाई चानू ने 49 किलो वर्ग में रजत पदक जीता। जय मीणा ने सॉफ्ट टेनिस के सिंगल्स का कांस्य पदक जीतकर नया इतिहास रचा। निशानेबाजी में स्केट स्पर्धा में महिला टीम और पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीते। भारत 1 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य सहित 12 पदकों के साथ 13वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले हमारे शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

संध्या 6:15 पर आप सुनेंगे ब्रज साहित्य कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत आज ब्रजवार्ता प्रसारित की जाएगी। वार्ता का विषय होगा राधा अष्टमी की लीलाएं। वार्ताकार होंगे मदन मोहन शर्मा। भक्ति संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन का प्रसारण समय होगा संध्या 6:30। संध्या 6:50 पर किसान श्रोता सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम हेलो ब्रज ग्रामीण, जिसमें आज का विषय होगा पशुपालन एवं पशु रोगों पर आधारित। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर जितेंद्र सिंह गंगनधार। संध्या 7:31 पर श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शाम सहनी प्रसारित किया जाएगा।

रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे विशेष श्रृंखला कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में रात्रि 8:35 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संकेत। ये कार्यक्रम रात्रि 9:15 पर और रात्रि 10 बजे भी सुना जा सकेगा। रात्रि 9:30 पर चर्चा का विषय, ये कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे उस्ताद मुनव्वर अली खां का गायन, राग होगा मालकौंस। साथ ही आपको सुनवाएंगे पंडित मोहित कुमार का गिटार वादन, जो धुन पहाड़ी पर आधारित होगी। अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले हमारे शेष कार्यक्रमों के बारे में। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। किसान भाइयों, आज दिनांक 23 सितंबर 2026 को शाम 6:50 से 30 मिनट की अवधि के हेलो ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम में आज का विषय है पशुपालन एवं पशु रोगों पर आधारित। इस

पर जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर जितेंद्र सिंह गंधार। किसान भाइयों एवं पशुपालक भाई, पशुपालन एवं पशु रोगों जैसे लंपी रोग, खुरपका, मुंहपका, अफरा, गलघोंटू, पशुओं का आहार एवं आवास व्यवस्था, टीकाकरण जैसे बिंदुओं पर जानकारी हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर जितेंद्र सिंह गंधार। आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565-253-0135 पर फोन करके अथवा व्हाट्सएप नंबर 9412-225575 पर संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता निभा सकते हैं। और पशुपालन एवं पशु रोगों पर आधारित अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। कार्यक्रम का समय रहेगा आज शाम 6:50 से। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं देशगान।

0: संवेद सुरों में अभी आप सुन रहे थे ये देशभक्ति परक रचना। इसी के साथ देशगान का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। ब्रज साहित्य कार्यक्रम के अंतर्गत लीजिए सुनिए ब्रजवार्ता, राधा अष्टमी की लीलाएं। वार्ताकार हैं मदन मोहन शर्मा।
1: वैदिक स्वर्ण काल से आज तक भारतीय संस्कृति और जनमानस को जा प्रकार श्री राम और श्री कृष्ण ने अपने दिव्य चरित्रण से आलोकित कर ओतप्रोत कियो है, कदाचित उतनी गहराई ते अन्य अलौकिक चरित्रण में नाय भयो हो। श्री राधा हु जो कि श्री कृष्ण की आलादनी शक्ति और सर्वेश्वरी हैं, उनको भी चरित्र अनुपम है। या अजस आलोक अक्षुण रूपते आजहु व गरिमा और प्रतिभाते पूर्ण व्याप्त है। इनके द्वारा स्थापित मूल ही तो हमारे आदर्श हैं और उनके कार्यकलाप लीला हमारे दर्शन सार रूपते हमारे अभिवाद अभिष्ट आराधी हैं। जैसे वृषभान सुताम दिव्याम वृंदावन विहारिणीम वंदे चंद्र सुधा तुल्याम श्री राधाम शुभ दर्शनी देह में चरणालंब शुभ यद भक्त कांक्षितम सकल यश संपन्न नमामि सर्वभूतिदम। प्रेम रूप श्री श्याम आनंद घन राजेश्वरी मनहर मंजोललाम बंदौ राधापति युगल बंदौ मथुरा परी सुहावन यमुना तट त्रयलोक लुभावन मंजुल मूरत भावनुपा भासत सकल नगर हरि रूपा। धन्य भाग जे नरते रही सहित स्वर शरीर स्वर्ग फल लही मथुरा परी सुहावनी जन्म भूमि ब्रजराज सकल सुभग पावन परम अवधपुरी समसाज बंदौ गोकुल गिर गोवर्धन और निधि मधु वृंदावन शुभ कानन प्रणवौ नंद गाम बरसाना गोपी गोप गाय सम्माना धरौ शीस ब्रज मंडल धूरी पदम पराग अमित गुड़पूरी। या प्रकार के भावंते बरसानो धाम ब्रजमंडल भारत वर्ष को ही नहीं बल्कि विश्व को प्राण जीवन है। यहीं पे राजा वृषभान गोप के यहाँ श्री राधा जी को प्राकट्य भयो हो। जैसे बरसाने वजत बधाई री भादों सुदी शुक्ल अष्टमी की रत कन्या जाई री देखन के लिए आए भानु राय घर आनंद की निध आई री ब्रज जन साध सकल बल पूरी कीरत कीरत छाईरी भानु भवन अत भीर भई है देखत लोग लुगाईरी सुख सजनी ऋषि गर्गे महापुन राधा नाम उधराईरी। या तरह सो राधाष्टमी उत्सव से पहले भादव शुक्ला ऋषि पंचमी तेज बरसाने में लीलान को आनंद प्राप्त है भी लग जाए। यादन व्रत व सप्तर्षीन की पूजा व्रत उद्यापन आदि बड़े श्रद्धा भक्ति के साथ घर घर में मनाया जाए। अगले दिन छठ दे ललताजी की सखी श्री ललता सखी को प्राकट्य श्री बलदेव जी को प्राकट्य उत्सव समाज गायन गोस्वामी समाज द्वारा और संत समाज

बारा मंदिर में होए है। ललता सखी को गांव ऊंचे गांव में यह आनंद सब ललताजी के मंदिर बड़े हर्ष उल्लास से मनाया जाए। ललताजी को अभिषेक 21 किलो के पंचामृत हो है। वाके पश्चात समाज गायन नाच संत ब्राह्मण को भंडारो यहाँ प्रारंभ है जाए है। या छठा को देख के जगह जगह मनाया जाए है। जैसे कमई करेला आजनों के पिसावा आदि में सात है यानी सप्तमी में बरसाने में राधाष्टमी की जगह जगह जगह धूम मचे है। चारों तरफ राधा रानी की जय, ब्रज की महारानी की जय, प्रेमी भक्त लगाते रहे और सभी भक्तजन परिक्रमा करते भय प्रियाकुंड भानो घर प्रेम सरोवर गेवर कुंड में स्नान करे हैं। यह स्नान दान को पुण्य ब्रज बरसाने में प्राप्त करे हैं। बहुत फल प्राप्त हो है या प्रकार की मनोकामना जिनकी है वो पूर्ण है जाए तथा मानव जन्म को सार्थक भाव हो प्रदर्शित हो। जैसे वंदे राधा बुदाम्बुज ब्रह्मादि सुखदिवम यत कीर्ति कीर्तिनैव पुनाति भुवनत्रयम् राधा कृष्णमयी साक्षात् कृष्ण राधा मयी तथा द्वयम् जगमयम् चेतत् भावये जन्मय जगत। अष्टमी के दिन तो बरसाने में बड़ी अपार भीड़ हो है। लाखन की संख्या में नर नारी बाल वृद्ध बरसाने में घूमते रहे। लालडी जी के मंदिर में आनंद की वर्षा है वे लग जाए है। सभी भक्तजन गाते रहें और नाचते रहें। अरे सुन सखी की रत आई भादो सुदी अष्टमी शुभ दिन यह नक्षत्र सुखदायी ऐसी देखी सुनी न त्रुवन लचित रमा पेशाई नारद सन कार्तिक मुनि वंदे शंकर हृदय बसाई को वर्ण वृषभान गोप के भाग्य भुवन अधिकाई सुख सचनी ब्रजवास जन्म फल दीनो विधता रसाई। श्री राधा जी के महल में ऐसी ऐसी जन्म बधाइयां गाई जाए जाको सुन के सभी आनंद विभोर रह जाए और आत्म विमुग्ध होकर के देह दशा को भी भूल जाए। वाके वश्चात नंदगांव बरसाने वासियों की समाज गायन प्रकार अष्टमी को प्रातः 10 बजे ते प्रारंभ है जाए है और वहाँ दोनों ही दल अपने अपने प्रवेश धोती बगलबंदी दुपट्टा और कोई कोई तो पगड़ी पहन करके बैठे हैं गावे हैं। श्री वृषभान के हो आनंद मंगल भीर देश देश के भिक्षुक आए पढ़त बृद आभीर जन्म सुनियो श्री कुंवर को भिक्षु आए धाये और देश देश के गुण अब अपने लाए भेंट बनाए। या प्रकाश हो 1.5 घंटा का यह समाज गायन प्रारंभ हो है। यह समाज गायन होते होते फिर भाण बधाई हो श्री राधा जी की शाम सगाई आदि को वाचन नंदगाम बारे करे हैं। शाम के समय राधा जी को पालना नीचे सफेद छतरी में आवे है और सभी भक्तजन आनंद प्राप्त करे हैं। सेवायत गोस्वामी की बेटी वादन जाकर के 16 श्रृंगार दे व राधा रानी को आरतो करे है। तत्पश्चात दर्शन के पश्चात शयन आरती है जाए और रात मंदिर बंद है जाए। नौमी तिथि को जाकर के शुक्ला को गहवर वन की मोरकुटी में रास लीला हो है। वहाँ कृष्ण मोर वन के नाचे हैं और श्री राधा जी उन्हें लड्डू खिलावे हैं। भक्त हु यह प्रसाद कोई मन रूप में लुटावे है कोई हजारों संख्या में भक्तजन यहाँ लीला को आनंद प्राप्त करे हैं। हजारों मन लड्डू यहाँ लुटाए जाए हैं या को मोरकुटी और लड्डू फेंकने की लीला के हैं। यहाँ पर संत भाव लिखे हैं नंद को ढोटा बड़ो अवतारी करे अनोखे कौतुक ब्रज में मोर बने हैं बिहारी कबहू चीर चुराए कदम पे बैठे जाए मुरारी और कबहू राधा मुख देखन को बन जाए नरते नारी। या प्रकार से प्यारे श्याम सुंदर को अनेक प्रकार की बातें सखियां सुनामे हैं। अगले दिन बिलासगढ़ पर श्री राधा और कृष्ण की सखीन के साथ में जोगिन लीला प्रारंभ है जाए। श्री श्याम सुंदर जोगी योगिन को रूप बना करके बरसाने पधारे हैं। श्री राधा जी के महल में आकर के अपने अनेक प्रकार के भावन से बैठ कर के लीला करे हैं। ये भाव बिलासगढ़ पर जाकर के ये दर्श परस को जो आनंद है भक्ति उठा में है और अपने को धन्य करे हैं। याकूब पद ऐसे हैं कुमर कन्हैया रास रचो कुमर कन्हैया रास रचो जवत जोत मिले महल जोर जो और बीच में स्वयं नचो बाजत मधुर मृदंग बांसुरी अद्भुत गद उफनियो और तान मान बंधान सप्तसर मालव राग झरियो। यह प्रकार से ये बिलासगढ़ की लीला जो जोगिन लीला कही जाए ये प्रारंभ यहाँ हो है। ताप आशे भंडारो होए खूब हर्षोल्लास से मग्न है करके ब्रजवासी जन संत जन सभी दर्शक जन सब आनंद को प्राप्त करे हैं। वहां के पश्चात एकादशी तिथि में सांकरी गली में ललताती सखी द्वारा श्री कृष्ण की चोटी बंधन के लीला को रस बरसे है। या प्रकार लीला को देख करके सभी भक्तजन आनंद प्राप्त करें। वादन कोई भी नंदगाम बारो बरसाने नहीं आवे वाकू मालूम है कि आज चोटी बंधन होगी तो जो भी मिल जाए वाकू आकर के चोटी बंधन कियो जाए। या प्रकार से चोटी बांधवे की लीला हो

दोपहर के और शाम के समय प्रेम सरोवर गाजीपुर में नौका विहार की लीला को आयोजन हो है। श्री गोपाल जी मंदिर के ठाकुर जी श्री राधा कृष्ण के स्वरूप में रास करे वारे जो स्वामी गण हैं वो भी डोला में सज करके प्रेम सरोवर में नौका विहार लीला के लिए पहुंच जाए हैं। वहाँ सभी समुदाय से प्रथम मिलन की लीला है, श्री राधा कृष्ण के प्रथम मिलन की लीला को आनंद प्राप्त हो। जहाँ दिव्य प्रेम छलके है, यह अष्टकोणी कोणी सरोवर है या कि डोंगा लीला जल विहार लीला भी कहें, 1-2 घंटे तक नौका विहार लीला हो है। रात्रि में आतिशबाजी और बड़ी मनोहर चर्चा बिखरे है। भादों शुक्ला दशमी द्वादशी में बरसाने की नागाजी कुंज में श्री राधा कृष्ण की सखीन के संग में रासलीला करें हैं। तापास हैं श्री लालजी के मंदिर में रास और ऊंचे गांव में राधा कीसे की ललताजी के साथ में श्री श्याम सुंदर को बेभावलो लीला हो है। वाकेबाज निष्काम प्रेम के प्रणेता भागवत धर्म के उद्घोषक ब्रज के गोपाल और जगत के श्री कृष्ण उनकी प्राण आलादनी शक्ति श्री राधा ब्रज की अधिष्ठात्री है। कृष्ण तो उनके कार्यपालक भर हैं। यहाँ लिए ब्रज में राधे राधे की अनुगूंज वातावरण में गुंजामान रहे राधा नारी शक्तिकरण कृष्ण है और यह काना में गाना के ब्रज में ही संभव है। राधा के रूप में ब्रज में नारी शक्ति की आराधना को श्रेय श्री कृष्ण को ही जाए है। तभी तो स्पष्ट वह होना कि राधा कृष्ण होते तो दुनिया में प्रेम पूज न्याय हो, तो राधा कृष्ण नहीं होते तो प्रेम पूजनीय हो। तो या लिए शाम के समय बरसाने के प्रयागराज में श्यामा श्याम जी की नौका विहार लीला को आनंद बरसे है। हमारो सबसे भी ब्रजवासी या देख करके मनमग्न रह जाए। वाके पश्चात गोस्वामी समाज द्वारा श्री हरगुलाल की हवेली से चाव जाए है, जहाँ श्री राधा रानी के वस्त्र उनको श्रृंगार का सामान मिठाइयाँ फल अनेक प्रकार की मालाएं भक्तजन लेके चले हैं। बाजे गाजे के साथ ये चाव लीला हो है और या शाम को जाकर वृषभान भवन में फिर ये कवित गाए जाएं। भई वृषभान झुके रूप की निधान सुता बजत बधाई आज छाई महामोद में देवता आकाश ठाड़े फूलन की वर्षा पड़े और नागरिया रानी मिली मंगल विनोद में आए नंद राय ले बधायो ब्रज वीथन में और सभी आनंद प्राप्त करें मंगल विनोद में कीरत ने कन्या दई यशोदा की गोद में और यशोदा ने लाला दियो कीरत की गोद में। यह प्रकार से देख करके ब्रजवासी जन भक्तजन श्रद्धालु देश विदेश के जो आमे हैं वो आनंद प्राप्त करें। फिर 13 के दिन मटकी फोड़ लीला को आनंद साकरी खोर में हो है। नंदगाम बरसाने के गोस्वामी समाज में प्राचीन संत रसकन की और मधुर दिव्य दृष्टि से लीलिया को दान लीला देखी देख करके पदन को या प्रकार वाचन हो संबे स्वरण से या प्रकार से गावे हैं। नंद को मारग रोग तो आए ठालो ठूलो डोलत ये तो चंचल नैन चलाए तुम कब से यह रीत गई है दान मांग बतराए हम सब जाए सुनो मनमोहन पूछेंगी ब्रज राय। हजारन भक्तन की और दर्शकन के समय नंदगाम बरसाने वाले नाचे हैं गावे हैं पद गायन करे हैं रसिया गायन करे हैं हजारों भक्तन की ये आनंद को प्राप्त करें हैं और तभी श्रद्धालु उतने अपने वेश इनके वेश और भाव को देख करके बलिहारी जाएं मन में सोचे हैं कि हम ब्रजवासी क्यों न बने। ये प्रेम की पराकाष्ठा आज ब्रज में दिखाई दे रही बरसानों ब्रज को प्रेम को एक स्वरूप है या क्या भाव देखो। जात कहाँ सिर धर के मटकी श्याम सुंदर कह रहे हैं सखीन से जात कहाँ सिर धर के मटकी है नी की विद जान लई है तेरे अंतर पट की जावादें चली गई सेनन दे नैन चलावत मटकी और सूधे दान दे जिए ग्वालन नाकर झटका पटकी रीज ग्वार सामरी सूरत सुंदर नागर नटकी। यह प्रकार से श्री कृष्ण जब बोले हैं सखी उनके भाव को देख करके उनकी नैनन को देख करके वहाँ बलिहारी जाए या तरह पदन को गायन नर्तन हो तो रहे। तभी करीब 1 बजे मटकी दही की भरी भई चिकसोली गाँव ते आवे है। वहाँ जाकर भक्तजन साथ में आवे हैं राधा कृष्ण के जयकारे लगते जाएं और मटके लेके वहाँ जाकर के श्री राधा कृष्ण के लीला में पहुँच जाए। वहाँ के पश्चात वह सांकरी गली में जहाँ किसी प्रकार से 2 व्यक्ति जा नहीं सके न आ सके वहाँ श्री कृष्ण जाकर गोपिन के गोपी एक एक करके जाएं श्याम सुंदर सखान के साथ खड़े रहें और वहीं जाकर के करीब 1:30 बजे जाके मटकी लेकर सखीन की अनेक प्रकार के वाचन करते हुए ले लें हैं और वहीं स्थान पर सांकरी गली मटकी को फोड़ दें। वहाँ के पश्चात आनंद की वर्षा बरसे कन्हैया लाल की जय श्री राधा रानी की जय भक्तजन गावे हैं अनेक प्रकार से जाकर अपने को धन्य करें मटकी जो दही भरी हो वाकू जाकर के अपने सिर पर रखे हैं और वाके पश्चात वाको प्रसाद प्राप्त करें।
चौदस के दिन करहला मड़ोई को महाराज की लीला हो है रास हो है।

0: या मैं पूर्णिमा को महाराज बरसाने में राधा भाग में होए, इन इलान को विश्राम या के पश्चात है जाहे, तभी तो कहोगे हो। संग ले सहेली अलवेली नवेली ब्रजवाल वधू, बरसाने दद बेचन सलाह करी, राह में मिलो नंद को सुगड़ रह तो लाल, बिन पहचान आज मारी री का करी, ना करूं तो नेह जात, हाँ करूं तो हंसी होए, समझन आवे मोय गहूं कौन रहारी, पीत बड़वारो श्याम वंशी वारो छल, साकरी गली में फिर ना करी नहा करी, भानो कर भानजू प्रात स्नान करें, और सकरी गली में दद दान के लगाने की, मानगढ़ माने की ओ मोर कुटी मोर बने, प्रिय प्यारी सुना में तान अपने ही आने की, गय वरबन की छवीली छटा याकू तो हर तरह लेत, और दानगढ़ करत नित मोद सरसाने की, करत विलास रसरास नित ठोर ठोर, मनमत कर ढीला लीला देख बरसाने की, या प्रकाशों इन लीलान को आनंद, ब्रजवासी संत जन भक्त जन एवं देश विदेश के आए हुए लोग ले हैं, या प्रकाश ये लीला बरसाने की, राधाष्टमी पश्चात पूर्णमासी को विश्राम ग्रहण कर ले, और हजारों लोगों के बीच में जाकर के श्री कन्हैया लाल की जय, श्री लाली लाल की जय, या प्रकाश से आनंद की वर्षा होते हुए सभी अपने अपने धाम को जाए।
1: अभी आप सुन रहे थे ब्रजवार्ता, राधाष्टमी की लीलाएं, वार्ताकार थे मदन मोहन शर्मा। इसी के साथ ब्रज साहित्य कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम संध्या वंदन।

संध्या वंदन कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति आपने सुनी लता मंगेशकर और दिलराज कौर के स्वरों में। फिल्म का नाम था आलाप, रचना डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की थी, संगीत निर्देशन जयदेव का था। आइए अब सुनते हैं फिल्म दशावतार से संदीप खरे की यह भक्ति रचना, आनंद कुड़ेकर का संगीत निर्देशन है, स्वर हैं संजीव अभ्यंकर और साथियों के।

संजीव अभ्यंकर और साथियों के सुरों में अभी आप सुन रहे थे दशावतार फिल्म से ये भक्ति रचना। रचनाकार थे संदीप खरे और संगीत निर्देशन आनंद कुढ़ेकर का था। इस समय आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से।

यशुदास के स्वर में अभी आप सुन रहे थे चिंतामणि सूरदास फिल्म से संत सूरदास की रचना, संगीत निर्देशन रविंद्र जैन का था। संध्या वंदन कार्यक्रम की अगली और अंतिम प्रस्तुति हम आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म जोगन से। स्वर है गीता रॉय का, रचना मीराबाई की है, संगीत निर्देशन बुलोसी रानी का है।

अभी आप सुन रहे थे गीता रॉय के स्वर में फिल्म जोगन से मीराबाई की रचना, संगीत निर्देशन बुल्लो सी रानी का था। इसी के साथ संध्या वंदन कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

FM 102.2 मेगा हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के 6:50 हो चुके हैं।

इस समय संध्या के 6:50 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम हेलो ब्रज ग्रामीण। आज का विषय है पशुपालन एवं पशु रोगों पर आधारित। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह कंधार। इनसे बातचीत करेंगे मृणालिनी दीक्षित और दीपक गोस्वामी।

0: ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहन को मृणालिनी बहन और
1: दीपक गोस्वामी की
0: राम
1: राम।
0: राम। भैया देखो, आज के दिन यानी बुधवार के दिन आप बहुत अच्छे से इंतजार कर रहे हैं कि आज कौन से विशेषज्ञ आएंगे, हमें कौन सी समस्या को समाधान बताएंगे, चाहे वो खेतीबाड़ी से संबंधित हो चाहे वो पशुपालन से संबंधित। लेकिन भैया पशुपालन से संबंधित पशु जो है हमारे किसान भैया की कहते ना जीविकोपार्जन को एक अच्छा साधन है, उनके जरिए वो अपना आय भी करे हैं, पालन भी करे हैं और खेतीबाड़ी में लाभ भी ले में हैं। तो भैया आज हम आपको हेलो ब्रज ग्रामीण में जानकारी दे पाएंगे पशुपालन एवं पशु रोगों पर आधारित हमारा आज हेलो है। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह गंधार, इनसे जानेंगे पशुओं की बीमारी और इनसे का समाधान है सके, हमारे पशुपालन करने वाले भैया का लाभ ले सके, कौन सी सावधानी रखकर अपने पशुओं के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रख सके हैं। तो भैया आज आप जान लेंगे पशुपालन पशु रोगों पर आधारित विशेषज्ञ डॉक्टर जितेंद्र सिंह गंधार। भैया हमारा फोन नंबर है 2530135, लेकिन मथुरा से बाहर के हमारे भैया बहन जो हैं 0565 कोड लगाकर 2530135 फोन नंबर मिलाकर डॉक्टर साहब से सीधे अपनी पशुपालन संबंधित समस्या का समाधान कर सके। नमस्कार डॉक्टर साहब।
1: डॉक्टर साहब आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में। और जैसे हो भैया वो आप सब जानो हो कि आज का विषय है पशुपालन और पशु रोगन पर आधारित। अगर आपकी कोई समस्या हो आपके पशुपालन में तो आप हमारे विशेषज्ञ से जान सको वाको समाधान। हमारा नंबर है 2530135 और मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 नंबर लगाए के अपनो फोन कर सके, अपनी समस्या को समाधान ले सके। हाँ तो एक किसान भैया हमसे जुड़े हैं। राम राम साहब।
2: हेलो।
1: राम राम जी। हाँ जी राम राम।
2: सर राधे राधे।
1: हाँ जी कहाँ से बोल रहे हैं आप?
2: हम राया से बोल रहे हैं।
1: समस्या बताओ अपनी।
2: हमारी भैंस भी आई है आज, एक शादी जाने ही है।
1: अच्छा।
2: और ना तो वो लवारे को लगा रही और ना तो दूध दे रही, और लवारे कार के ऊपर से क्या दे, और वो उनको दूध पेशाब घिरा उनको दूध फेंक रही है।
1: हाँ तो डॉक्टर साहब ये समस्या है इनकी, भागो समाधान।
3: सबसे पहले आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। तो जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि इनका जो पशु है दूध नहीं दे रहा, वो पेशाब के रास्ते दूध आ रहा है। तो जो पेशाब के रास्ते दूध है उसको जैसे अभी हमारे ग्रामीण परिवेश में उसको एलुआ का नाम दिया जाता है, वो दूध नहीं है, उसकी बच्चेदानी में इन्फेक्शन है। तो अगर आपने उसका बच्चा निकलवाया होगा या फिर उसका जेर हाथ से निकलवाया होगा या नहीं भी निकलवाया होगा, मान लो उसने अपने आप दिया होगा, तो उसकी बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो गया तो वो पस है, वो दूध नहीं है वो। तो उसमें आप किसी पशु चिकित्सक से सलाह ले सकते हैं या 1962 पे आप फ़ोन करके एम्बुलेंस, पशु एम्बुलेंस आपके यहाँ आ जाएगी, जिसमें आप उसको उसकी बच्चेदानी में इसका इलाज किया जाएगा, इसका जो बीमारी है तो वो ठीक हो जाएगी, उसके बाद वो दूध पर भी आ जाएगी। अभी उसके इन्फेक्शन है, उस इन्फेक्शन को ठीक कराइए, उसके बाद वो दूध पर भी आ जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा।
1: तो डॉक्टर साहब ये तो आपने बहुत बढ़िया बात बताई, अभी नंबर बताओ 1962।
3: ये 1962 ये हमारे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक योजना चलाई।
1: हाँ जी राम राम साहब।
4: राम राम जी, बंदी से बोल रहे ठाकुर।
1: हाँ जी समस्या पूछो।
4: समस्या जी है साहब, भैंस ब्याई और शाम को 2-3 दिन पीछे बढ़िया धार खा रही है मैंने, और सुबह वाकई सूझ गई ठंडे पर सूजन आई गई दो।
3: इसको आपके पशु को थनैला रोग हुआ है, तो आप थनैला रोग का उपचार कराएंगे तो पशु आपका ठीक हो जाएगा।
4: सुनो तो सही उपचार हमने कहा करियो थे।
3: जी जी
4: हमने करियो MX बोलस और मेगुलाइट मेगुलास्ट
3: जी जी जी

0: ढाई सौ डॉलर थी।
1: जी
0: और मैंने जाए दयो तो जाके आराम तो करे सूजन सब पटक गई तरह जो भैंस पहले 10-12 लीटर दूध देते खाई हुआ दूध बनाया आई है भाई।
1: जी, इसका पूरी तरीके से इन्फेक्शन ख़त्म नहीं हुआ होगा, ये आपको जैसे बाहर से उसकी सूजन और उसमें आपको आराम दिख रहा होगा, इसके अंदर
0: हाँ
1: इन्फेक्शन होगा अभी इसको, तो आपको इसका और उपचार कराना पड़ेगा आपका। आप उपचार कराएंगे तो पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगी, क्योंकि बहुत पुराना इन्फेक्शन नहीं है, जैसे आप बता रहे हो अभी 2-3 दिन पहले भी आई है, तो आप अगर इसका
0: हाँ
1: अभी इलाज और
0: किसी
1: कराएंगे तो
0: पशु
1: ठीक हो
0: चिकित्सक को
1: जाएगी,
0: दिखा
1: किसी
0: दें।
1: पशु चिकित्सक
0: अब
1: से
0: कौन सा
1: दिखाएं।
0: इलाज कराओ हमें फिर अब बताओ,
1: नहीं, ऐसे इलाज, डायरेक्ट इलाज
0: पशु
1: बताना
0: देख के इलाज,
1: वो नहीं है।
0: डॉक्टर की लिखी हुई दवाई है, आप जैसे महानुभाव की उनने वृद्धि का दवा देने की जरूरत ना है, कुछ सही है पता।
1: आप पशु चिकित्सालय वेटनरी कॉलेज में लेके आ सकते हैं, वहाँ उसकी जांच होगी उसके दूध की, कौन सी उस पर दवाई काम करेगी, उसी का हम दवाई उसको कर सकते हैं। तो अभी आप पे अभी स्कोप है इलाज कराने का, ऐसा नहीं है कि सारा इलाज इसका हो चुका है, तो आप वेटनरी
0: देखो
1: कॉलेज ला सकते हैं उसको, वहाँ उसका जाँच के साथ इलाज हो जाएगा।
0: हमारे दूध में कोई ब्लड नहीं आयो, कोई खेचरा नहीं आयो, कोई परेशानी नहीं आई,
1: जी,
0: और वो एक ही मतलब पहली खुराक पर ही हमें आराम पड़े, वो हमें वाके बाद हमने 4 खुराक और देंगे भैंस। और
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: सूजन हो कोई ना कोई गांठ हटी ना कोई सूजन न कोई भैंस एकदम पहली जैसी नॉर्मल है,
1: बिल्कुल
0: पर
1: बिल्कुल
0: दूध पहना है।
1: आ जाएगी वो, कई बार एंटीबायोटिक लगने से भी दूध कम हो जाता है पशु का, तो वो आ जाएगी, धीरे धीरे आ जाएगी।
0: तो डॉक्टर साहब जैसे ये समस्या बता रहे हैं, जब तक पशु चिकित्सक को, आजकल ये नई चीज़ और है कि आदमी अपने हिसाब से,
1: बिल्कुल बिल्कुल, कहीं गूगल पे देख लेते हैं, आजकल तो AI का इतना वो चल रहा है, तो ChatGPT पे भी कई बार इलाज देख लेते हैं।
0: हेलो
1: हाँ
0: हेलो
1: जी, राम राम सर,
0: डॉक्टर अरुण,
1: कहाँ से बोल रहे भैया,
0: डॉक्टर हम ऊल से बोल रहे साहब,
1: बोलिए समस्या।
0: ये दैयल में साहब ये लंपी रोग तन्नों का ही कैसे सही होगा।
1: बिल्कुल, आपने बहुत मतलब ये आज के समय का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, लंपी के बारे में। लंपी की जो बीमारी है आज बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, प्रदेश क्या पूरे देश के लिए बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। तो अगर आपने पूछा कैसे ठीक होगा, देखो अगर पशु को हो गया तो उसको आपको उपचार कराना पड़ेगा, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि इसका बचाव किया जाए, तो इस टाइम पे यूपी गवर्नमेंट की तरफ से टीकाकरण की सुविधा चल रही है, तो आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सालय पे जाके आप टीकाकरण कराइए। टीकाकरण को आपको रोकना नहीं है, आपको मना नहीं करना है कि पशु दूध सूख जाएगा या बुखार आ जाएगा, तो आप पशु का टीकाकरण कराइए, टीकाकरण से रोग को पूर्ण रूप से बचाया जा सकता है, तो आप पशु को टीका लगवाइए। अगर बीमारी हो गई है तो फिर आप उसका इलाज कराइए, पशु चिकित्सालय पर जाके आप पशु चिकित्सक से संपर्क करें, या 1962 नंबर, जैसे कि यूपी गवर्नमेंट की एक योजना है जिसमें एम्बुलेंस आपके घर आके पशु का इलाज करती है, तो आप उस एम्बुलेंस को बुला के उसका इलाज करा सकते हैं।
0: तो डॉक्टर साहब ये आपने एक नई अच्छी जानकारी दी कि 1962 जो नंबर है,
1: जी
0: मतलब तो जैसे अभी हमने फोन करो हमारा पशु बीमार है तो
1: जी
0: कितनी देर में यह सुविधा मिल
1: जैसे
0: जाएगी।
1: जैसे जैसे 100, अगर मैं उदाहरण की तरह बताऊं, जैसे 112 नंबर होता है, तो वो पहले जैसे लखनऊ पे कॉल जाती है, उसके बाद हेडक्वार्टर से आता है, सेम
0: जी
1: ऐसे ही होता है
0: एक फोन
1: इसमें
0: आ
1: भी।
0: रहा है। हाँ भैया हेलो, हेलो डॉक्टर, राम राम, मैं
1: राम राम जी, कहाँ से बोल रहे हैं जी?
0: बोल रहा था मोहली से, देवी सिंह।
1: हाँ जी देवी सिंह जी, पूछो।
0: डॉक्टर मेरी समस्या ये डॉक्टर साहब ऐसी है, फिर जैसे भी आएंगे 1 साल 1 महीना
1: जी
0: प्रसाद करने क्या बने वो,
1: जी
0: और
1: जी
0: डॉक्टर 7 महीना थे बाकी, जैसे हमारी जैसे नौरो बढ़िया को सफाई सफाई रहा तो बढ़िया को,
1: जी
0: तो वह नाली में ऐसे दिखे तो सफेद सफेद सब बिल्कुल।
1: जी
0: अच्छा
1: जी
0: बताओ तो खिलाने के बाद खिलाने में खाता हूँ खिलाता हूँ तो दलिया से ये बदल लिया
1: जी जी
0: विधवा को, ये रूम 3-4 रुपया में ना निकाल के साथ में करेंगे।
1: नहीं, सफेद जैसा उसके पेशाब में आ रहा है, सफेद सफेद।
0: आप पिता जिस नाली पिसाब के थे तो
1: जी,
0: फॉर्म खत्म से जब जाना पूरी नाली।
1: मैं आपको अभी यही सलाह दूंगा कि आप एक बार ना इसका, जैसे आप इसकी जांच कराएंगे, इसकी पहले एक बार बच्चे की जांच कराइए, तो क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि पशु गया बन है, आपने मान लो चेक भी कराया होगा, कई बार क्या होता है कि बच्चेदानी में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है, तो वो बच्चे की तरह लगता है, तो आप एक बार इसका अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, आप वेटनरी कॉलेज में पशु को ले जाके इसका
0: डॉक्टर मैं सुनो मैं बता दूं अपनी बात में सूचना सब लाके परफेक्ट करा दूं सब चेक कर जाओ आप पेटी बोले में
1: क्या जी?
0: पेशाब में सफाई इसका चेक हो जाएगा।
1: हाँ, पेशाब में भी इन्फेक्शन हो सकता है, पेशाब भी चेक हो
0: ये कह
1: जाएगा।
0: रहे पेशाब ले आए तो पेशाब
1: हाँ,
0: भी चेक हो जाएगा।
1: पेशाब आप ले आओगे, पेशाब से भी वो हो जाएगी
0: डॉक्टर
1: उसकी।
0: साहब जामन तो पक्की है, मेरे को
1: क्या जी?
0: जामन तो पक्की है।
1: हाँ, तो अब
0: हाँ
1: पेश
0: चेक हो
1: उसके
0: जाएगी।
1: उसके पेशाब में भी, पेशाब की थैली में भी इन्फेक्शन हो सकता है, तो पेशाब की आप
0: डॉक्टर
1: लाओगे उसमें भी हो जाएगा।
0: डॉक्टर 1 मिनट एक सलाह दे दूंगा, आप कितने पैसे लगेंगे पेशाब के।
1: पैसे ज़्यादा नहीं, सरकारी में पैसे बहुत नॉमिनल उस पर करते हैं, पैसे ज़्यादा नहीं लगेंगे आपको, बहुत कम पैसे के उसमें आपकी
0: आप
1: जांच हो
0: एक
1: जाएगी।
0: बार, आपको सलाह यह है कि एक बार जब पशु लेके

0: और आप कोठारी पशु चिकित्सालय वेटनरी कॉलेज में संपर्क कर सको तो वहां आपको या को समाधान मिल जाएगा। हेलो,
1: हेलो
0: हाँ जी,
1: राधे जी।
0: राम राम साहब, कौन सा बोल रहे
1: मैं
0: हैं?
1: अजय बोल रहा हूँ जी।
0: समस्या बताओ अपनी।
1: समस्या ये है जी, दो समस्या है, एक तो भैंस है। हेलो
0: हाँ जी, बोलिए
1: सुन
0: बोलिए।
1: पा रहे हैं?
0: हाँ जी, सुन पा रहे हैं आप, बताइए समस्या।
1: हाँ, एक भैंस है,
0: जी
1: वो 7-8 महीने दूध देते हो गए, लेकिन वो ग्यामन नहीं भैया उठ नहीं रही है। क्या चक्कर है? गर्मी में नहीं आ रही है।
2: जी जी देखिए, जैसे आपने बताया 7-8 महीने पहले ब्याई थी वो, तो उसमें क्या होता है कि अभी कौन सा ब्यांत हुआ है उसका? ये
1: ये कम से कम 5वां ब्यांत है उसका।
2: तो कितना दूध दिया उसने पिछले ब्यांत, मतलब अभी कितना दूध दे रही थी वो 6-7 महीने से?
1: दूध 10-12 लीटर था उसके नीचे।
2: आप इसको कीड़ों की दवाई देते हैं? इसको
1: कीड़ों की?
2: कीड़ों की दवाई? हाँ, पेट के कीड़ों की
1: नहीं
2: दवाई,
1: नहीं दवाई तो कोई नहीं दी, तो
2: कैल्शियम,
1: कुछ
2: कैल्शियम देते हैं, कैल्शियम वगैरह?
1: कैल्शियम भी नहीं दे
2: हाँ, तो
1: रही है।
2: ये यही समस्या है। इससे क्या होता है, जैसे अभी पशु क्या है, जब पशु अपने शुरुआती उसमें होता है, मतलब उम्र के उसमें, तो वो दूध देता है, तो उसके शरीर से बहुत सारे मतलब कैल्शियम और बहुत सारे खनिजों की वो दूध में आते हैं उसके, तो तब तो वो अपने शरीर से पूर्ति करता है उसकी। लेकिन जब लंबा समय हो जाता है, जैसे 3-4 ब्यांत निकल जाते हैं, तो उसके शरीर में भी कमी हो जाती है इन सब चीज़ों की, जिसकी वजह से उसकी जो मतलब जो रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है, मतलब आप ये कहो कि उसके जो मतलब जैसे हीट, गर्मी में आना, वो सब आना उसका, वो सब उसका प्रभावित होना शुरू हो जाता है। तो
1: हम
2: आपको
1: क्या
2: मेरी,
1: करें ऐसा
2: आप इसको हर 4 महीने पर तो कीड़ों की दवाई दीजिए उसको,
1: जी?
2: ठीक है? और बहुत सारे मतलब बाजार में खनिज और विटामिन के पाउडर आते हैं, वो आप उसको खिलाइए, ठीक है? तो वो धीरे धीरे करके अपने आप आ जाएगी उसकी। और थोड़ा उसकी उस पर ध्यान रखिए, जैसे वो गर्मी में आ रही, क्यों हर पशु चिल्ला के गर्मी में नहीं आता है। भैंसों में जनरली देखा गया है कि उनमें आप उनकी जेरी देखिए, वो जेरी डालती है नहीं डालती, आप चिल्लाने के भरोसे रहेंगे कि वो चिल्लाएगी?
1: नहीं, जेरी जेरी भी देख रहे हैं डॉक्टर साहब,
2: जी
1: बहुत
2: जी
1: ध्यान है, लेकिन जेरी भी नहीं गिर रही है।
2: कोई नहीं, आप पशु को अपना ये मैंने बताया था विटामिन और मिनरल के बहुत सारे पाउडर आते हैं, और कीड़ों की दवाई दीजिए इससे, तो आपको इससे लाभ मिलेगा इस चीज़ से।
0: हेलो हेलो,
1: हेलो हेलो,
0: हाँ जी, राम राम साहब, पहले
1: गुप्ता
0: पहले
1: जी।
0: तो अपने रेडियो अब दूर करो, आपका जो रेडियो है आपके फोन से थोड़ी दूरी बना के बात करो।
1: अच्छा जी, हाँ
0: हाँ जी,
1: जी,
0: हाँ जी, बताओ
1: नमस्ते डॉक्टर साहब, मैं गाम भाई से बोल रहा हूँ, राजा राम।
0: जी, बताओ
1: ये 1962 आप नंबर बता रहे हैं,
2: जी।
1: उसका उसमें क्या डॉक्टर साहब फीस लेते हैं या फ्री इलाज करते हैं?
2: नहीं, वो आते उसमें फीस का वो नहीं है उसमें, वो जो भी चार्जेज हैं वो सरकारी उसमें है, मतलब कोई ऐसा चार्जेज नहीं है, कोई भारी भरकम कुछ नहीं है उसका, ठीक है? उसमें दवाइयाँ कुछ हो सकती हैं, जैसे उनके पास ना हो तो हो सकता है वो दवाई आपको लेनी पड़े, क्योंकि सारी दवाइयाँ तो ऐसा नहीं है कि सारी बीमारियों की दवाई लेके चल सकें, लेकिन उन पर काफ़ी दवाइयाँ रहती हैं, तो वो
1: जी
2: निःशुल्क है, मतलब वो डॉक्टर की फीस नहीं है उसमें कोई। लेकिन हो सकता है एक आध दवाई जैसे कोई नहीं मिले, तो हो सकता है वो आपको बाहर से कहीं से लेनी पड़े, लेकिन
1: वो तो खरीद सकते हैं। हाँ सही
2: जी
1: है
2: जी जी जी
1: जी, धन्यवाद।
2: तो बहुत अच्छी उसका वो है, लाभ योजना है उसकी सरकार की, उसका आप लाभ उठा सकते हैं।
0: हेलो हेलो, हाँ जी, राम राम साहब, हाँ जी, नमस्कार, कहाँ थे बोल रहे हैं साहब?
1: मैं नासिर खान बोल रहा हूँ।
0: आज अपने रेडियो है, मोबाइल से दूर करो तब बात करो।
1: अच्छा जी, ये बोल रहा हूँ। हेलो
0: हाँ जी, बोलिए बोलिए,
1: सर, मेरे बकरियां
0: दोबारा बोलो, आपकी आवाज़ साफ नहीं है, बताओ।
1: जी, हमारे पास 3-4 बकरियां हैं।
0: बकरी? हाँ
1: हाँ सर, वो दूध कम देती है, ऐसा इलाज बता दो जो दूध ज्यादा नहीं हो।
0: दूध ज़्यादा कैसे दें?
2: दूध देखो, दूध ज़्यादा देना ये उस पर नस्ल पे भी उस पर डिपेंड करता है, और क्या आप चारा खिला रहे हैं उस पर। अगर पशु स्वस्थ है, आपका बीमार नहीं है, तो सबका ना दूध देने की एक कैपेसिटी होती है, जैसे सारी भैंस एक जैसा दूध नहीं देती हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि उसकी वो किस तरह की नस्ल है उसकी, और अगर वो बीमार नहीं है तो आप उसके खाने उस पर ध्यान दीजिए। अगर आप वो उसको दोगे भरपूर मात्रा में उसको, जैसे अगर आप उसका वो दोगे तो उसमें उसका दूध आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन किसी किसी प्रजाति में क्या होता है कि दूध का ज़्यादा वो है नहीं कि वो ज़्यादा दूध दे, तो हो सकता है वो दूध ज़्यादा ना आए।
0: हेलो,
1: हेलो,
0: हाँ जी, राम राम साहब,
1: ये बात पूछ रहा हूँ।
0: आप, हाँ पूछो, लेकिन अपने मोबाइल से अपने रेडियो की दूरी कर दो थोड़ी सी, आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही।
1: अच्छा, मतलब अस्पताल से गोली लाए थे कीड़ा नहीं, तो वो झूली भैंसी को दे सकते करने झूली?
2: जी,
0: गोली कह रहे हैं, गोली दे सकते हैं कि नहीं दे सकते?
2: मतलब आपका पशु ग्यावन है?
1: हाँ, 51 है, झूल रहा पशु।

0: देखो गोली कई तरह की गोलियां आती हैं, तो कुछ गोली ऐसी आती हैं जिनको आप पशु को दे सकते हो झूलने के टाइम पे भी, ठीक है। तो वो जो अस्पताल से आप लेके आ रहे हो गोली, उससे
1: हाँ
0: आपको वहीं पता करके आना पड़ेगा कौन सी, क्योंकि गोली कीड़ों की एक तरह की नहीं आती है, कई तरह की
1: अच्छा
0: गोलियां
1: अच्छा
0: आती हैं। अब वो कौन से तरह की आप ले रहे हो वो आपको वहीं जो पशु चिकित्सक अस्पताल पे होंगे उन्हीं से पता करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप गोली का नाम बताएंगे तो हम ये बता
1: अच्छा
0: सकते हैं कि आपने ये गोली, क्योंकि कुछ गोली ऐसी
1: नाम
0: आती हैं,
1: नाम फार्म का नाम पता था, सफेद सफेद सी बोलियां
0: जी
1: बड़ी
0: जी
1: हुई
0: जी
1: थी।
0: जी जी अगर कुछ गोली ऐसी आती है जिनको पशु को आप दे सकते हो, ज्ञावन पशु को भी,
1: हाँ
0: तो ऐसा अब उसका नाम नहीं पता होगा
1: सही
0: तो ऐसा नहीं
1: जानकारी के
0: कहना।
1: बगैर सही सलाह
0: बिल्कुल
1: नहीं दे
0: बिल्कुल
1: सकते।
0: बिल्कुल
1: नाम ना पता साहब, मैं जाना पड़ेगा तो ठीक
0: बिल्कुल जी।
1: है साहब, धन्यवाद।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपने एक बहुत अच्छी सुविधा बताई कि जैसे कि अभी एक नई बात जो हमारे किसान भैया ने अभी सुनी कि घर पे एम्बुलेंस आके इलाज
1: जी
0: हो जाए,
1: जी जी
0: तो यह के बारे में थोड़ी सी नेक जानकारी आपकी तरफ से और नेक मिल जाए।
1: जी, ये हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना थी और काफ़ी अच्छा मतलब इनिशिएटिव रहा है ये सरकार का।
0: हेलो हेलो,
2: भाभी नमस्कार,
0: नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं जी?
2: हम गुलाबी से बोल रहे हैं सर, ठीक है।
0: हाँ जी बोलिए, समस्या बताओ अपनी।
2: हाँ साहब, ये पड़िया है उसके
0: जी जी
2: कीड़ियों की दवाई भी दे दी, पाउडर भी दे दिया, लेकिन वो न झरीगे न वही हरी हरे पड़िया
0: अच्छा, इसका वजन,
2: थी काफी,
0: इसका वजन कितना होगा? इसका वजन
2: वो 3 क्विंटल से ज्यादा है।
0: 3 क्विंटल से ज़्यादा है ना?
2: हाँ
0: देखो इसमें जैसे आप बता रहे हो कि आपने इसको कीड़ों की भी दवाई दी है और आपने इसको मतलब मिनरल मिक्सचर भी खिलाया गया है इसको, तो कई बार क्या होता है देखो पशुओं में उसके अंगों में भी समस्या हो सकती है, उसके जो गर्भाशय और उसके अंग होते हैं अंदरूनी जिनमें बच्चा मतलब पैदा करने की वो होती है, कई बार उनमें भी समस्या हो सकती है। तो हो सकता है आप इसको अगर अल्ट्रासाउंड वगैरह कराएं इसका पशु चिकित्सालय वेटनरी कॉलेज में आके, तो आपको उसकी संपूर्ण, क्योंकि आपने अपनी तरफ से कीड़ों की दवाई दे दी तो आपने जो इलाज कर सकते हैं वो आपने करा लिया है, तो इसका अल्ट्रासाउंड कराए। कई बार इनमें क्या होता है रसौली वगैरह भी होती है इनके, इनकी उसमें, तो आप उसका इलाज अगर अल्ट्रासाउंड करा के देख लेंगे तो कंफर्म हो जाएगा। ऐसे मतलब बताना मतलब वो नहीं है इसका बिना उसके जांच मतलब
1: किए
0: कुल
1: इसका।
0: मिला के यह है कि अगर आप अपने पशु वेटनरी चिकित्सालय में ले जाकर दिखाओ
1: जी
0: तो
1: जी तो
0: आपको ये।
1: अल्ट्रासाउंड करेंगे तो एक उसका पता चल जाएगा कि बीमारी एग्जैक्टली है क्या।
0: जी एक और भैया जुड़ रहे हैं हमसे। हेलो
2: हेलो डॉक्टर साहब, नमस्कार जी। सर
0: नमस्कार जी।
2: हम बोल रहे हैं जिला राजस्थान से।
0: जी जी जी बताएं।
2: सर हमारे पास एक 30 दिन का पट्टा आया, यानी 2 महीने का,
0: जी जी जी
2: और उसके पूरे बदन में जो है इतनी विशेष खुजली हो गई है, बार बार गिर गए हैं और निशान से बन गए हैं उसके बदन।
0: जी जी जी तो इसमें आप एक तो कलीली वगैरह का पता करिए, उसमें कलीली वगैरह तो बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर कलीली हैं तो कलीलियों का आप उपचार कराइए।
2: कलीली वगैरह एक भी नहीं है, एक भी।
0: हाँ तो उसमें अगर एलर्जी वगैरह है, क्योंकि इसमें ना डायरेक्ट देखो दवाई तो बिना देखे बताना मुश्किल होगा, आप
2: हाँ
0: आपके आसपास जो नज़दीकी पशु चिकित्सालय हो वहाँ जाके, क्योंकि बीमारी तो देख के देखो पता चलती है, आप जैसे जो आप जो देखेंगे और एक पशु चिकित्सक देखेगा दोनों के देखने में डिफरेंस होता है, ठीक है।
2: कोई देसी देसी उपचार हो जैसे।
0: नहीं देसी उपचार बीमारी का जैसे पता चलेगा, देसी उपचार में तो आप जैसे नीम वगैरह का लेप कर सकते हैं उस पर, लेकिन उस पर
2: अच्छा
0: अगर आपको आराम नहीं मिलता जैसे गर्म पानी में जैसे नीम की पत्ती डाल के आप उसका लेप कर सकते हो।
2: आपने आपने आपने पहले भी यही बताया था, उसको आराम मिल गया था।
0: हाँ तो मतलब ये ऐसा है देखो, ये चीज़ मान लो काम करेगी तो कर जाती है, अगर नहीं करती है तो कई बार ऐसा होता है फिर आपको फिर उसकी अलग से जाँच करानी पड़ेगी, तो
2: हाँ
0: नीम की पत्ती लेके गर्म पानी में उसको आप लगा सकते हो, उससे आराम मिलता है तो ये तो और अच्छा है फिर। हेलो हेलो, एक और भाई। हेलो हाँ
3: हेलो, नमस्कार सर।
0: जी नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं साहब?
3: मैं साहब यहाँ लाल के पास रामपाट पास पोस्ट गाँव है साहब।
0: अच्छा बताइए।
3: साहब हमारी एक पड़ी आज 2 महीना की, 2 साल की, तो
0: अच्छा
3: वो डॉक्टर साहब से बीज रखवा दिए वाने, तो वो 21 दिन बाद बदल गई साहब।
0: जी,
3: फिर वो जब ये तो फिर हमने आपके भैंसा पे करा दी साहब।
0: जी जी जी
3: तो साहब अब भैंसा से कराने के बाद अब करीब 21 दिन थोड़ी सी रैंकिंग वो करी,
0: जी जी
3: और रैंकने के बाद फिर आपने अब कुछ नहीं है साहब, गाड़ी गाड़ी जेड़ी है और महीने भर की हो गई है साहब।
0: गाड़ी
3: तो
0: जेरी दे
3: साहब
0: रही है, गाड़ी जेरी दे रही है मतलब सफ़ेद सफ़ेद जेरी दे रही है।
3: हाँ साहब,
0: देखो
3: थोड़ी
0: इसमें
3: थोड़ी कभी
0: जैसे
3: पीटते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, चुप्पी नहीं है ना लाने की।
0: जी, जैसे अगर आप बता रहे हैं सफ़ेद जेरी दे रही है वो, तो उसमें चांसेस हैं कि उसमें इन्फेक्शन हो सकता है उसकी बच्चेदानी में, तो अगर आप चेक करा लेना उसको इसके जैसे मान लो 35-40 दिन बाद, जैसे आपने उसको एक बार उससे कराया है भैंसे से बता रहे हैं आप कराया है,

0: उसको आप जांच कराना, उसकी चांसेस तो हो सकते हैं कि इन्फेक्शन है इसमें, क्योंकि गाड़ी जेरी आती है तो इन्फेक्शन होता है उसमें, नहीं तो जेरी बहुत साफ़ आती है, तो उसका इन्फेक्शन चेक कराइएगा। अगर इन्फेक्शन निकलता है तो आप पहले एक, अगर अगली बार हीट में आती है तो पहले आपको उसका इन्फेक्शन का इलाज कराना है, उसमें दवाई रखवानी है उसके गर्भाशय में, और अगर वो रुक जाती है तो ये तो फिर अच्छी बात है, आप उससे चेक करा के आपको 35-40 दिन में पता चल जाएगा उसके, जैसे आपने जब कराई है उससे, उस
1: रुक रुक भी सकती है सर।
0: रुकने के चांस कम है, क्योंकि जेरी डाल रही है तो रुकी नहीं होगी फिर इसका मतलब।
2: हेलो हेलो, तो डॉक्टर साहब जैसे यह समय जो बीमारी सबसे ज़्यादा चल रही है, जो हमारे पशु जो पालक हैं वो सबसे ज़्यादा परेशान हैं, चिंतित हैं, लंपी से
0: जी जी
2: परेशान,
0: जी बिल्कुल
2: तो लंपी की जैसे कुछ लक्षण और बाकी क्या सावधानी और क्या हमें रखना चाहिए,
0: जी जी
2: क्योंकि ये जानकारी भी हमारे किसी काम हम आवे की बात तो है भाई, गईयन में समस्या तो बहुत ज़्यादा देखने को
0: बिल्कुल
2: मिल रही
0: बिल्कुल,
2: थी।
0: गोविंस बहुत ज़्यादा प्रभावित है इस रोग से। जैसे मैं अभी इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताऊंगा, पशुपालकों को इसको लाभ होगा कि कैसे इसका हमें जानकारी, मतलब इससे हम कैसे इसके लक्षण पता कर सकते हैं और क्या इसका हम घरेलू उपचार कर सकते हैं।
2: जी
0: तो जैसे कि ये एक विषाणु जनित रोग होता है, तो विषाणु जनित रोग के साथ एक समस्या ये होती है कि इसके कोई मतलब दवाई नहीं होती जिस पे, जो इस पे काम करती हो, इसमें केवल इसके लक्षणों का इलाज किया जा सकता है। जैसे इसमें मुख्य लक्षण की अगर बात करोगे तो शुरुआती तौर पे उसकी जो पेशाब के रास्ते के आसपास जो एरिया होता है वहाँ पर नोडी मतलब कड़क गांठें देखने को मिलती हैं, और वो फिर आपके गर्दन की तरफ रहती हैं शुरुआत, मतलब शुरुआत में यहाँ पीछे के पेशाब के रास्ते के पास होती हैं और गर्दन और इसके नीचे के आसपास होती है उसके, तो शुरुआत वहाँ से होती है। तो जैसे ही ये धीरे धीरे करके फिर फैलता है तो पूरे शरीर पर फैल जाता है और इन गांठों का साइज़ बढ़ जाता है। ये गांठ होती हैं ये आधे सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर के साइज़ की हो सकती हैं। फिर ये गांठें क्या होती हैं, कुछ समय बाद ये गांठें फूट जाती हैं, तो इनमें से सफ़ेद सफ़ेद आपका इसमें से मवाद, इसमें से स्राव होता है उसका,
2: जी
0: फिर उस पर मक्खियाँ बैठती हैं और उसके बाद फिर उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। तो बड़ी मतलब गोवंश का मतलब रूप भी बड़ा वैसा होता है कि मतलब देख के बड़ा वो
2: डॉक्टर
0: होता
2: साहब
0: है
2: एक
0: उसमें।
2: भैया हमसे जुड़े हैं, फिर बाद में बात। हेलो हेलो, संपर्क नहीं है पाया। हाँ डॉक्टर साहब
0: तो उसमें क्या होता है कि उसमें इस पूरे शरीर पर उसकी गांठें बन जाती हैं और ये गांठें फूट के फिर उन पर आगे इन्फेक्शन होने का वो रहता है। अगर शरीर में और लक्षणों की बात करेंगे तो इसमें तेज़ बुखार आएगा। एक तो मैं बार बार बस यही विनती करूँगा पशुपालकों
2: हेलो,
0: से।
2: राम
0: हेलो
2: राम सर।
0: हाँ जी, राम राम सर, एक भैया है इनको फोन
2: जी
0: लेना।
2: मैं सर जोनावी के बोल रहा हूँ।
0: हाँ जी
2: जी
0: बोलो।
2: सर, एक भैंस हमारी ब्याजी है और 1 महीना पीछे वो उठाई है, वो
0: जी जी जी
2: अभी करा गई। हम
0: जी
2: सब
0: जी
2: जब
0: जी
2: भैंस जा रही है निकल रही है और अभी कराने के बाद भी आज
0: भैया अपने फोन है मोबाइल और दूरी रखो रेडियो की, बाकी फोन की।
2: सर मैं जोरावी से बोल रहा हूँ, ज्ञान सिंह।
0: हाँ जी,
2: अभी
0: आवाज तो आ रही है आपकी लेकिन साफ नहीं आ रही है आप।
2: भैंसे ब्याई
0: जी,
2: और बेली निकल रही थी भैंस के, अब
0: अच्छा
2: वो 1 महीना हो गया, फिर वो उठाई भैंस, वो
0: जी,
2: अभी करा गई सर।
0: जी,
2: अभी कराने के बाद में वो ना रुकी, फिर वो पानी से वो जरी डाल रही है,
0: जी,
2: अब बाकी बेली निकल आई है।
0: जी देखो मैं पहले तो आपको ये बताऊंगा कि आपको पहले 1 महीने में उसको ग्यावन नहीं कराना है ब्याने के, जो उसकी
2: अच्छा
0: बच्चादानी होती है वो जैसे बच्चा रहता है उसमें, तो बच्चे को जैसे इतने लंबे 9-10 महीने तक, मान लो भैंस है गाय है तो 9 महीने तक उसमें रखती है, तो उसका साइज़ बढ़ जाता है, तो उसको कम होने में 45 से 50 दिन लगते हैं। तो पहले ही हमेशा आपकी जो गर्मी होती है पशु की वो छोड़नी पड़ती है, दूसरी गर्मी में कराना होता है, तो लगभग मान के चलिए वो 50 से 60 दिन के बीच में ब्याने के करानी होती है। जी, तो आप पहले उसको 30 दिन में कराओगे तो वो ये मान के चलिए रुकेगी नहीं कभी।
2: बेली का कोई इलाज तो
0: जी,
2: बताओ।
0: बेली का देखो इलाज ये है कि कोई पशु को मान लो बेली उसकी शुरुआत से ही आना शुरू हो गई, मान लो पहले ब्याँत से ही उसको बेली आ रही है।
2: पहलो नहीं जाइए सर।
0: हाँ, तो किसी किसी पशु के क्या होता है कि आप ये मान के चलिए उसके जेनेटिक्स में होता है, जैसे किसी किसी को ये मतलब जन्मजात टाइप की वो होती है कि जब ये आगे जाके बच्चा होगा इसके, जब ये ग्यावन होगी तो उसको बेली की समस्या बनेगी। तो कुछ पशुओं में जिनमें ऐसी
2: इंजेक्शन भी लगवा दिए फिर भी नहीं
0: जी
2: रुकी।
0: जी मैं वही बता रहा हूँ, तो जिन पशुओं में अगर ये समस्या मान लो जन्मजात टाइप की है कि वो होगी होगी बिल्कुल आगे भविष्य में जाके, तो वो
2: हाँ
0: फिर नहीं ठीक होती है उनमें, उनमें फिर वो समस्या बनी रहती है। कई बार पशुओं में क्या होता है कि पेशाब की थैली में इन्फेक्शन होने की वजह से या फिर उसके गर्भाशय में इन्फेक्शन होने की वजह से बेली आती है, तो उसको तो इलाज से आप ठीक करा सकते हो। तो अगर आपको ये
2: हाँ
0: देखना
2: वो
0: है
2: सर,
0: उसको
2: अभी सर ये बैटरी कोरेज लाइन हो सकती है ठीक।
0: देखो कोशिश कर सकते हैं, मैं आपको बता दूं कोशिश कर सकते हैं हम, हो सकता है इसको समस्या इन्फेक्शन वाली हो, तो क्योंकि इन कई बार क्या होता है कि जब

0: निकलती है तो मतलब कि हमारे किसान भाई क्या करते हैं, उसको चप्पल से या उसके किसी गंदे कपड़े से अंदर घुसाते हैं उसके शरीर में, तो उससे क्या होता है, उसके इन्फेक्शन बन जाता है उसके। तो इन्फेक्शन अगर बना है तो उसको ठीक किया जा सकता है, तो उसमें कई बार आराम भी मिल जाता है पशु को। तो आप उसको एक बार पशु चिकित्सालय वेटनरी कॉलेज में लेके आएंगे तो उसको आराम मिल सकता है।
1: तो डॉक्टर साहब, जो जैसे बात कर रहे हैं हम, ये लंपी एक
0: जी
1: बहुत
0: जी
1: ही त्रासदी जैसी स्थिति बन
0: बिल्कुल
1: गई है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो अब मान लो टीकाकरण की बात है कि स्वच्छता की बात है कि अब आगे इलाज की बात, तो
0: जी
1: इलाज के
0: जी
1: लिए क्या सावधानी रखनी है?
0: जैसे इलाज की अगर बात करें, तो पशु को अगर तेज़ बुखार आ रहा है, जैसे मैंने सोचा इसमें 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार आता है, तो पशु को तो उसके बुखार का इलाज कराना है। उसके पैरों में सूजन आ जाती है, पूरे पैरों में सूजन आ जाती है और उसके फेफड़ों में पानी भर जाता है, इसके उसकी नाक से मतलब उसकी नाक बहना शुरू हो जाती है, तो उससे क्या उसे सांस लेने में तकलीफ़ होती है। तो उसमें आपके पशु को आपको उसकी जैसे निमोनिया जैसे लक्षण होते हैं, उसको निमोनिया जैसे लक्षण बोल सकते हैं, उसका इलाज कराना है। नहीं, पशु सांस की समस्या से बड़ा ग्रसित होकर बड़ा परेशान रहता है, तो उसमें एक तो हमें जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं उसके उनका इलाज कराना है। दूसरा, अगर घरेलू उपचार की अगर बात करेंगे हम, इसमें जैसे उसके फोड़े हो जाते हैं शरीर पे, तो उसमें क्या करना है, हमें नीम की पत्ती लेनी है एक मुट्ठी, एक मुट्ठी तुलसी की पत्ती लेनी है, और उसमें आप थोड़ा सा उसमें आप उसमें हल्दी मिलाएंगे, 20 ग्राम हल्दी मिलाएंगे उसमें, और उसका पेस्ट बना के और उसमें नारियल तेल मिला के उसको उसके स्किन पर लेप कर सकते हैं।
2: डॉक्टर साहब, आपने हमारे पशुपालन करवे वाले भैयान को बहुत ही अच्छी जानकारी दी कि पशुपालन करवे वाले भैयान के सामने जो समस्या आवे पशुओं की, रोगन की, गर्भधारण की, गर्भाशय की, बहुत सारी ऐसी परेशानी आती है जिनको वो कभी कभी नहीं जा पाते गांव से दूर, लेकिन हमारे फोन इन कार्यक्रम के जरिए वो आपसे समस्या का समाधान कर लेते हैं। तो भैयाओ, आपने जानकारी लेनी है आज डॉक्टर जितेंद्र सिंह गंधारते, पशुपालन एवं पशु रोगों पर आधारित। अगले बुधवार को हम पुनः उपस्थित होंगे आपके लिए नई जानकारी और नए विशेषज्ञ के साथ अपने हेलो ब्रजग्रामीण कार्यक्रम में। तो अब कार्यक्रम को हम यहीं संपन्न करते हैं। सभी भैया बहनान को राम
1: राम राम।
2: राम।
0: हो गया, बंद हो गया।

अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम हेलो ब्रज ग्रामीण। आज का विषय था पशुपालन एवं पशु रोगों पर आधारित। विशेषज्ञ थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह गंधार। इनसे बातचीत कर रहे थे मृणालिनी दीक्षित और दीपक गोस्वामी। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने लखनऊ में भारत टैक्सी सेवा का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा, भारत की गति को प्रगति में बदलने का काम करेगी यह सेवा। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा गबन मामले में 8 आरोपितों के खिलाफ आज पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट। अयोध्या दीपोत्सव में इस बार 26,50,101 दिए प्रज्वलित करने का रखा गया लक्ष्य। 35,000 वॉलंटियर संभालेंगे जिम्मेदारी। और राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई स्थानों पर आज हुई हल्की बूंदाबांदी। मौसम विभाग ने 27 सितंबर तक भारी बारिश का जारी किया येलो अलर्ट। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय सहकारिता एवं नागर विमानन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने आज लखनऊ में भारत टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया। लखनऊ के साथ गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज में यह सेवा शुरू की गई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि टैक्सी, टू व्हीलर और थ्री व्हीलर चालक रजिस्ट्रेशन के साथ जीरो कमीशन पर भारत टैक्सी का हिस्सा बनेंगे और 5 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा पाएंगे। उन्होंने कहा कि यह पूरे भारत की टैक्सी है जो भारत की गति को प्रगति में बदलने का काम करेगी।
1: जिन लोगों के बारे में कोई सोचता नहीं था, टैक्सी ड्राइवर के बारे में, टू व्हीलर के बारे में, थ्री व्हीलर के बारे में, अब वह रजिस्ट्रेशन के साथ जीरो कमीशन पर वे भारत टैक्सी का हिस्सा बनेंगे और बदले में उनको सामाजिक सुरक्षा की कवरेज मिलेगी 5 लाख रुपए की।
0: कार्यक्रम में श्री योगी ने मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के ई पोर्टल, सहकारिता विभाग के उर्वरक सेतु मोबाइल ऐप और उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव डेटा बेस सेंटर के मोबाइल ऐप यूपीसीडीसी का भी शुभारंभ किया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में करीब 42,000 सहकारी समितियां कार्यरत हैं। पैक्स के कंप्यूटरीकरण और ग्रामीण बैंकों के डिजिटलीकरण का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का सहकारिता मॉडल देश के अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणादायी बन सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में 8 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बने राजकीय महिला शरणालय का लोकार्पण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटी के जन्म से लेकर उसकी पढ़ाई, विवाह, सुरक्षा और स्वावलंबन तक सरकार साथ खड़ी है।
1: सरकार हर नारी की सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए, हर युवा की अच्छी एजुकेशन के लिए और उसके एम्प्लॉयमेंट के लिए पूरी सजगता के साथ कार्य कर रही है, पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है।
0: मुख्यमंत्री आज गोरखनाथ मंदिर में महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की 57वीं और ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ महाराज की 52वीं 12वीं पुण्यतिथि समारोह के उपलक्ष्य में आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ के शुभारंभ कार्यक्रम में भी शामिल हुए। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी प्रकरण की जांच पूरी होने के बाद आज पुलिस ने 8 आरोपितों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी। अभियोजन का आधार जांच में सामने आए सीसीटीवी फुटेज, आरोपितों के बयान, बरामदगी और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को बनाया गया है। मामले के विवेचक और क्षेत्राधिकारी अयोध्या आशुतोष तिवारी ने बताया कि 27 अप्रैल से 5 जून के बीच चढ़ावे की रकम को कथित तौर पर निकालने या छिपाने से जुड़ी 105 से ज्यादा घटनाएं सीसीटीवी में सामने आई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। यह यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर

0: निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण से प्रेरित सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से यह समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हम अपनी विशेष श्रृंखला में लोगों के लिए घर खरीद को आसान और भरोसेमंद बनाने वाले रेरा कानून की जानकारी दे रहे हैं।
1: वर्ष 2016 में संसद ने रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट पारित किया। इसके तहत राज्य रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की स्थापना की गई। रेरा लागू होने के बाद किसी भी फ्लैट के बेचने से पहले प्रोजेक्ट को रजिस्टर करना अनिवार्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रेरा के माध्यम से ग्राहक और डेवलपर्स के बीच का भरोसा मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई है।
2: कानून ने पूरे हाउसिंग सेक्टर को अविश्वास और धोखाधड़ी से बाहर निकालने में बहुत बड़ी मदद की। इस कानून के बनने से घर खरीदारों को समय पर न्याय भी मिल रहा है।
1: गौतमबुद्ध नगर निवासी अनिल तिवारी ने बताया कि रेरा के कारण बिल्डर समय से प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं और समय पर लोगों को मकान पर कब्जा मिल रहा है।
3: हमारे जो पैसे हम लगाते हैं डेवलपर के साथ, वो हमारा सुरक्षित पाया जाता है और हमें कोई भी आपत्ति यदि रियल एस्टेट के माध्यम से होती है तो हम रेरा के पास अपनी शिकायत लेके जाते हैं।
1: रेरा ने डेवलपर्स और क्लाइंट के बीच संबंध को बेहतर बनाया है और खरीदारों के अधिकारों को वैधानिक बल दिया है। विशाल धर दुबे, आकाशवाणी समाचार, गौतमबुद्ध नगर।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के आज 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2018 में इस योजना का शुभारंभ किया था। यह विश्व की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना से चिकित्सा खर्च में रिकॉर्ड बचत हुई है और गरीब तथा मध्यम वर्ग को लाभ मिला है। एक रिपोर्ट।
4: आयुष्मान भारत योजना के तहत पिछले 8 वर्षों में 13 करोड़ से अधिक लोगों ने मुफ्त इलाज का लाभ उठाया है, जिस पर सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं। इस योजना के तहत 38,000 सरकारी और निजी अस्पतालों को जोड़ा गया है और यह योजना देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। इससे देश भर में लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से मिल रही है और गंभीर बीमारियों के इलाज की सुविधा भी मिल रही है। हाल ही में मोदी सरकार ने इस योजना का लाभ 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों के साथ साथ 37 लाख से अधिक आशा कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के परिवारों तक भी बढ़ाया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब, जरूरतमंद और कमजोर वर्ग के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: आगामी दीपावली के अवसर पर अयोध्या धाम में दीपोत्सव के दौरान 26,50,101 दीयों को प्रज्वलित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए राम की पैड़ी, लक्ष्मण किला घाट, चौधरी चरण सिंह घाट और भजन संध्या स्थल घाट सहित कुल 56 घाटों पर दीप प्रज्वलित करने की कार्ययोजना तैयार की गई है। प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने विभागीय अधिकारियों को आज समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि दीपोत्सव 2026 का आयोजन भव्य व अलौकिक ढंग से किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि दीप प्रज्वलन का कार्य 35,000 वॉलंटियर्स द्वारा किया जाएगा। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई स्थानों पर आज हल्की से मध्यम बारिश होने के साथ ही एक बार फिर वर्षा का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने 27 सितंबर तक प्रदेश के कई जगहों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक प्रदेश में 24 से 27 सितंबर के दौरान तेज झोंकेदार सतही हवाएं चलने और भारी बारिश की संभावना है। वहीं 25 और 26 सितंबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। विभाग के मुताबिक बारिश के कारण तापमान में 6 से 9 डिग्री सेल्सियस की कमी हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने लखनऊ में भारत टैक्सी सेवा का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा, भारत की गति को प्रगति में बदलने का काम करेगी यह सेवा। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा गबन मामले में 8 आरोपितों के खिलाफ आज पुलिस ने दाखिल

ई चार्ज शीट। अयोध्या दीपोत्सव में इस बार 26,50,101 दिए प्रज्वलित करने का रखा गया लक्ष्य। 35,000 वॉलंटियर संभालेंगे जिम्मेदारी। और राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई स्थानों पर आज हुई हल्की बूंदाबांदी। मौसम विभाग ने 27 सितंबर तक भारी बारिश का जारी किया येलो अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
1: FM 102.2 MHz पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शाम सुहानी।

शाम सुहानी प्रोग्राम में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत। ढलते सूरज की सुनहरी आभा, शाम की ठंडी ठंडी हवाएं और दिन भर की भागदौड़ के बाद कुछ पल सुकून के, ऐसे ही खुशनुमा पलों में आपका अपना रेडियो हम सफर अरविंद कुमार लेकर हाजिर है कार्यक्रम शाम सुहानी। तो आइए आज की इस सुहाने शाम को गीतों के नाम करते हैं, आपके संदेश, आपकी फरमाइशें और आपकी पसंद के गीत, और इन्हीं से सजती है हमारी और आपकी ये संगीत यात्रा। जो श्रोता भी अभी हमसे जुड़े हैं उनके लिए हम अपना व्हाट्सएप नंबर बता देते हैं ताकि वो हमें संदेश भेज सकें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9412225575, यानी 9412225575। तो फिर देरी किस बात की, शाम है सुहानी, मौसम भी है रवानी, और अब बारी है एक ऐसे गीत की जो शायद आपके दिल की बात भी कह जाए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की ये पहली पेशकश।

दिलराज कौर की आवाज में जय करोली माँ फिल्म का गीत आपने सुना। रविंद्र जैन की रचना थी, इनका संगीत निर्देशन था। और इस गीत को सुनने के लिए नरवेल महाराष्ट्र से वीएस नवानकर, निर्मला विशाल नवानकर का संदेश में मिला है। नारायण इंगले, सोपान ताड़े, आशीष मुर्रेकर मलकापुर महाराष्ट्र से इसी संदेश में। जज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीता रजत और मयंक भाटिया का संदेश में मिला है। खंडवा मध्य प्रदेश से जुड़े हैं दुर्गा प्रसाद सैनी, अनीता और गौरव सैनी। पुरानी बागपत, इलियास मुस्कान कुरैशी, रानी कुरैशी और बाबा जैत कुरैशी। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु आशी और शिवन्या गोस्वामी।

फणेश कुमार चंदन, सावित्री, मोहित, देविका, गजेंद्र, हिंश, सौगा, धमतरी से छत्तीसगढ़ के श्रोता हैं। कल्याण मुंबई से किशोर हिवराले, सुजाता और प्रतीक हिवराले। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा। दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजुनी रजमत, मुरली नीरा, ज्योति और प्रहलाद वर्मा। कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर, विजयलक्ष्मी सावनकर, राजेश, राकेश और रिश्ता। वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदी, शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। दरभंगा से शबीर आलम, जालौन उत्तर प्रदेश के श्रोता हैं सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक चंसोलिया। हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मणिराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु और हिमांशु। रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरभ निषाद, प्रकाश निषाद, बल्लू निषाद, तरुण और श्रीनिका इनके साथ हैं श्रीनिजा। गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर, मंजुला, विशाल और निशा। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली शाहदरा के श्रोता हैं तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेघा मस्किन, डब्बू सम्राट। पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी ने संदेश भेजा। और अब बढ़ते हैं गीत संगीत की ओर। श्रोताओं, कुछ गीत सीधे दिल तक पहुंच जाते हैं और कुछ गीतों में प्रेम, अपनापन और समर्पण की ऐसी खुशबू होती है जो मन को देर तक महकाती रहती है। पेश है ऐसा ही एक गीत, आवाज लता मंगेशकर की है, फिल्म का नाम है वासना।

लता मंगेशकर की आवाज़ में आप सुन रहे थे वासना फिल्म का गीत। साहिर लुधियानवी की रचना थी, चित्रगुप्त का संगीत निर्देशन था। गांव गोपी की नगरिया मथुरा से मिठन लाल सारस्वत, नेहा नीरज, निकिता, नगला पोला से विजय सिंह, पवन भानु प्रताप, रामानुज, राधिका भोला, करण नमन, अनुराधा, कोमल मास्टर, शिवानी, संजना, यशोदा, सूरज, सुनील गव्वर रचना और इनके परिवारीजन।

पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से शिवागोप, प्रेमगोप, कपिलगोप, शिवांग, संगीता, लिपि और दीपाली को। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता, किसितासु, अर्णव, सत्यमानंद, मुन्ना, गुरगुड्डी भगत।

उत्तम नगर दिल्ली से मानसी कविता अनिल ग्रोवर सेक्टर 5 सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान मोहनी कल्पित और गर्वी हिमाक्ष इनके साथ बिजनौर से वक्कार फरीदी इकबाल फरीदी सितारा बेगम नसरीन परवीन रोजी परवीन बिट्टू साजदा रानी और हिना कौसर बागरी मोहल्ला रटलाई झालावाड़ राजस्थान से मन भवन नैना सत्यनारायण कपिल शुभा और फुंदीबाई बागरी मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश वर्मा प्रीति वर्मा कार्तिक आर्यन वर्मा मुन्ना स्वर्णकार पिंकी आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज रोहित और पीयूष कुमार चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला मेजर खंडवा मध्य प्रदेश से कैलाश फूलमाली दीपक समर और वैदिका फूलमाली

श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता कीर्ति और भूमिका अरोड़ा। श्रोताओ, मोहब्बत भी कितनी खूबसूरत चीज होती है। कभी खामोशी में दिल की बात कह जाती है, तो कभी किसी गीत की धुन बनकर रात के सन्नाटे में सितारों की बतियाती है।

में सितारों की बतियाती है। आज की इस सुहाने शाम में कैसा ही नगमा आपके नाम कर रहे हैं, जिसमें प्यार का एहसास है, ख्वाबों की चमक है और दिल की अनकही कहानी भी। किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें हैं चलती का नाम गाड़ी फिल्म से।

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में चलती का नाम गाड़ी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। कलानौर हरियाणा से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा का संदेश में मिला है। खोरजा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश चंदन और अंकुश अरोड़ा। जबलपुर मध्य प्रदेश से सोनाली दुबे, मोनिका तिवारी और रानू। खंडवा मध्य प्रदेश से विजय महोबिया, कविता महोबिया, विशाल विवेक, सोनू मोनू रानू, सपना शिवी और पेंटर बाबू। भाटापारा छत्तीसगढ़ से के आर साहू, आकाश कमलेश, कन्नूलाल रजक, मुरली छत्री। बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार और मनीष पवार। रायपुर से नीलू मेघ, डॉक्टर वंदना कुमार, विट्टू कुमार और इनके परिवारीजन। भाटापारा छत्तीसगढ़ से मोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला और इनके ढेर सारे साथीगण। बुलढाणा महाराष्ट्र से शब्बीर हुसैन, शहजाद, मंजू, आयजा और मुदस्सिर हुसैन। सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़ का संदेश। और अब आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला और आखिरी गीत, प्रीति सागर की आवाज में, प्रेरणा फिल्म से।

प्रीति सागर की गाय प्रेरणा फिल्म के इस गीत के साथ ही श्याम सहनी प्रोग्राम से अब अरविंद को इजाजत दीजिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्याम सुहानी। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल। क्षमा करें, कविता कृष्णमूर्ति और सुखविंदर सिंह की आवाजों में ताल फिल्म का गीत। और अब हम आपको सुनवा रहे हैं ऐतराज फिल्म से उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में कार्यक्रम का ये अगला गीत।

अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में ऐतराज फिल्म का गीत। समीर का लिखा हुआ गीत था, हिमेश रेशमिया का संगीत निर्देशन था।

कार्यक्रम का अगला और आखिरी गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म दिल परदेसी हो गया सी सुनिधि चौहान की आवाज़ में। गीतकार हैं सावन कुमार, संगीत उषा खन्ना का है।

सुनिधि चौहान की आवाज़ में दिल परदेसी हो गया फिल्म का गीत आपने सुना, और इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। कार्यक्रम संबंधी एक सूचना, श्रोताओं, स्वास्थ्य जागरूकता के नियमित कार्यक्रम आकाश सिम्स हेलो डॉक्टर में इस गुरुवार 24 सितंबर 2026 में 12 बजे दोपहर में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है कमर एवं रीढ़ की हड्डी का दर्द, कारण, लक्षण और निवारण। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता, वरिष्ठ न्यूरोसर्जन आकाश सिटी

इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। हमारा टेलीफोन नंबर होगा 2530135। टेलीफोन करने से पहले 0565 कोड अवश्य लगाएं। व्हाट्सएप नंबर होगा 9412225575। विषय एक बार पुनः सुन लें। कमर एवं रीढ़ की हड्डी का दर्द, कारण, लक्षण और निवारण। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम देश कान।

संवेद स्वरों में अभी आप सुन रहे थे पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये देशभक्ति परक रचना। इसी के साथ देशगान का ये कार्यक्रम अभी यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं बंटी और बबली फिल्म के कुछ गाने हैं।

आलिशा चुनाए और शंकर महादेवन की आवाजों में बंटी और बबली फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं। रचनाकार थे गुलजार, शंकर एहसान लॉय का संगीत।

0: आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आइए अब आपको सुनवा रहे हैं बंटी और बबली फिल्म का अगला गीत शंकर महादेवन और सौम्या राव की आवाज में।
1: कृपया ध्यान दें, दिल्ली से मुंबई आने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 12 के बदली प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी।
0: गुलजार के बोल हैं शंकर एहसान लॉय का संगीत निर्देशन।

0: शंकर महादेवन और सौम्या राव की आवाज़ों में बंटी और बबली फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। रचना गुलजार की थी, संगीत शंकर एहसान लॉय का था। बंटी और बबली फिल्म का अगला और आखिरी गीत, फिल्म का टाइटल सॉन्ग। सुखविंदर सिंह और जसविंदर नरुला की आवाजें।
1: चल चल चल चल चल चल जब ठाट दिखाए और बाट दिखाए ओए बांटे पल पल पल पल पलट पलट जब कमर घुमाए और

0: सुखविंदर सिंह और जसविंदर नरूला की आवाज़ों में बंटी और बबली फिल्म का टाइटल सॉन्ग आप सुन रहे थे, और इसी के साथ एक ही फिल्म से कार्यक्रम भी समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8:44 और 51 सेकंड हो रहे हैं। ठीक 8:45 से आप सुनेंगे कार्यक्रम समाचार संध्या, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार। भारत ने रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने के अमरीकी फैसले

0: फैसले पर अपने हितों और चिंताओं को दोहराया। भारत ने इस्लामिक सहयोग संगठन के जम्मू कश्मीर के संदर्भ को खारिज किया, कहा इसका भारत के आंतरिक मामलों से कोई लेना देना नहीं। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियारों के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 800 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध किया। भाजपा ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारी की घोषणा की। बंगाल की खाड़ी में बना गहरा कम दबाव का क्षेत्र और करीब आया। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में तेज बारिश हुई। और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। भारत ने अब तक 1 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य सहित 12 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। भारत ने रूस और ईरान से तेल खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने के अमरीकी कानून पर अपने हितों और चिंताओं को एक बार फिर दोहराया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने इस कानून पर भारत की चिंताएं स्पष्ट की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ खाड़ी देशों और यूक्रेन के हालात पर भी व्यापक चर्चा की। न्यूयॉर्क पहुंचे विदेश मंत्री जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि भारत और अमेरिका प्रमुख क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश रणनीतिक साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं। भारत ने इस्लामी सहयोग संगठन के तथाकथित जम्मू कश्मीर संपर्क समूह के संयुक्त घोषणा पत्र में भारत पर की गई निराधार और तथ्यात्मक रूप से गलत टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का ओआईसी को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और राजनीतिक रूप से प्रेरित झूठे प्रचार को बार बार दोहराने से ये वास्तविकता नहीं बदल सकती। इस तरह के प्रेरित बयानों का बार बार समर्थन करना संगठन की विश्वसनीयता पर ही गंभीर सवाल खड़े करता है। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार और उससे जुड़े उपकरणों की खरीद के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 810 करोड़ रुपए से अधिक का समझौता किया है। इसकी आपूर्ति वर्ष 2027-28 और 2028-29 के बीच की जाएगी।
1: ये सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार हवा से जमीन पर मार करने वाला एक सटीक निर्देशित ग्लाइड बॉम्ब है। इसे जैगुआर, हॉक और सुखोई 30 MKI जैसे विमानों से दागा जा सकता है। ये लंबी दूरी से दुश्मन के हवाई ठिकानों को निष्क्रिय करने में सक्षम है और इस प्रणाली को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने देश में ही डिजाइन और विकसित किया है। इसमें 60% सामग्री स्वदेशी होगी। इससे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को और बढ़ावा मिलेगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इसके वायुसेना में शामिल किए जाने से उसकी परिचालन क्षमता और बढ़ जाएगी। इससे देश की रक्षा तैयारियों को भी मजबूती मिलेगी। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के वडोदरा में ब्रह्म कुमारियों के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का लोकार्पण किया। उन्होंने विकसित भारत के लिए युवा, राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति की जागृति अभियान का भी शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश को युवा शक्ति की आवश्यकता है।
3: युवाओं को सशक्त, संस्कारवान, आत्मनिर्भर, शांतिपूर्ण और जिम्मेदार बनाना हम सब की जिम्मेदारी। हमें ऐसे युवा तैयार करना है जो ज्ञान, टेक्निक और कौशल से युक्त, साथ ही वे आत्मविश्वास, आत्म अनुशासन, सकारात्मक सोच, संवेदनशीलता और नैतिक मूल्यों से भी परिपूर्ण।
0: इससे पहले राष्ट्रपति वडोदरा के महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने पिछले 12 वर्ष में 23,000 से अधिक पदोन्नतियों को स्वीकृति दी है। डॉ सिंह ने कहा कि सरकार कर्मचारियों को काम के लिए एक बेहतर और अनुकूल माहौल देने के लिए प्रतिबद्ध है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची में संशोधन सहित सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए हैं। आयोग ने हाल के महीनों

में देशभर में 40 नई पहल शुरू की है और विशेष गहन पुनरीक्षण सहित कई चुनावी सुधार किए हैं। आयोग ने कहा कि उसके सभी अधिकारी चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए सुझाव देने के लिए पूरी तरह से अधिकृत हैं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ और हरियाणा का और हरीश द्विवेदी को बिहार का प्रभारी बनाया गया है। विनय सहस्रबुद्धे को दिल्ली का और विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। राम माधव तमिलनाडु और उत्तराखंड के और तरुण चुग गुजरात के प्रभारी होंगे। सतीश पुनिया को जम्मू कश्मीर और पंजाब का और अनिल एंटनी गोवा और नागालैंड का दायित्व संभालेंगे। माई भारत प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत युवाओं की संख्या

0: करेंगे। माय भारत प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत युवाओं की संख्या 3 करोड़ से अधिक हो गई है। वर्ष 2023 में शुरू किए गए इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवा सीखने, स्वयं सेवा, नेतृत्व, नागरिक भागीदारी और युवा केंद्रित गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के आज 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2018 में झारखंड के रांची में इस योजना का शुभारंभ किया था। ये विश्व की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस योजना से चिकित्सा खर्च में रिकॉर्ड बचत हुई है और गरीब तथा मध्यम वर्ग को लाभ मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर समर्पण से जुड़ी रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रतिबद्धता लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। विशेष श्रृंखला में आज अटल इनोवेशन मिशन की।
1: अटल इनोवेशन मिशन, जिसे वर्ष 2016 में स्थापित किया गया था, देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है। नीति आयोग के अंतर्गत यह मिशन एक समग्र दृष्टिकोण के साथ काम कर रहा है। इसका उद्देश्य स्कूलों में समस्या के समाधान और नवाचार की सोच विकसित करना तथा विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, निजी क्षेत्र और MSME में उद्यमिता का एक सशक्त इकोसिस्टम तैयार करना है। वर्ष 2016 में आकाशवाणी पर प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन के माध्यम से नई पीढ़ी को विज्ञान और अनुसंधान की ओर आकर्षित करने के लिए कदम उठाए हैं।
2: नई पीढ़ी में विज्ञान के प्रति आकर्षण, टेक्नोलॉजी के प्रति रिसर्च और इनोवेशन, और इसी के लिए सरकार ने भी कई कदम उठाए। और इसलिए तो मैं कहता हूँ लेटेस्ट एम टू इनोवेट। और जब मैं लेटेस्ट एम टू इनोवेट कहता हूँ तो मेरा एम का मतलब है अटल इनोवेट मिशन। नीति आयोग के द्वारा अटल इनोवेशन मिशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक इरादा है कि इस एम के द्वारा, अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा, पूरे देश में एक इकोसिस्टम तैयार हो। इनोवेशन, एक्सपेरिमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, ये एक सिलसिला चले।
1: आकाशवाणी समाचार से बातचीत में स्कूल छात्र सार्थक गुप्ता ने बताया कि पिछले 3 वर्षों से अटल इनोवेशन मिशन के अटल टिंकरिंग लैब्स के माध्यम से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है।
3: पिछले 3 वर्षों से अटल टिंकरिंग लैब्स का हिस्सा बनना मेरे लिए एक बहुत ही खास लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है। इस दौरान मैंने सिर्फ नई टेक्नोलॉजीज नहीं बल्कि उन्हें प्रैक्टिकली इस्तेमाल करना सीखा, नए आइडियाज पर काम करा और अपने हाथों से प्रोटोटाइप्स बनाए।
1: अटल इनोवेशन मिशन देश भर में नवाचार और उद्यमिता की एक जीवंत संस्कृति विकसित करने और उसको बढ़ावा देने का काम कर रहा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
4: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरे दबाव का क्षेत्र उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा तट की ओर बढ़ रहा है। इसके आज रात तट से टकराने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
5: IMD ने दक्षिणी जिलों के लिए रेड वार्निंग जारी की है। कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है और 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी भी दी गई है। उम्मीद है कि डीप डिप्रेशन आज रात और कल सुबह के बीच कलिंगपट्टनम के पास से गुजरेगा और कोरापुट और रायगढ़ समेत दक्षिणी उड़ीसा के अंदरूनी इलाकों की ओर बढ़ेगा। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज भुवनेश्वर में हालात का जायजा लिया और प्रशासन को पूरी तरह तैयार रहने का निर्देश दिया। कई संवेदनशील जिलों में स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र बंद कर दिए गए हैं, जबकि प्रभावित इलाकों में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, विदर्भ और सिक्किम में भी मूसलाधार बारिश की आशंका है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका

0: केरलम, माहे और मराठवाड़ा में भी तेज बारिश का अनुमान है। वहीं छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में कल आंधी चल सकती है। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में आज दो महिलाओं समेत तीन शीर्ष माओवादी कमांडरों ने आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस के अनुसार ये तीनों पिछले दो दशकों से अधिक समय से माओवादी आंदोलन में सक्रिय थे और कथित तौर पर लगभग 80 हिंसक घटनाओं से जुड़े हुए थे। सरकार पश्चिम बंगाल में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है। प्याज लेकर चलने वाली कांदा एक्सप्रेस कल कोलकाता पहुंचेगी। त्योहारों के मौसम को देखते हुए ये कदम महत्वपूर्ण है। राज्य में मोबाइल वैन के जरिए करीब 1400 मीट्रिक टन प्याज वितरित किया जा चुका है। इनकी बिक्री 35 रुपए प्रति किलो की दर से की जा रही है। आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम जिले के रविवलसा के पास रानी एक्सप्रेस की चपेट में आने से चार विद्यार्थी मारे गए और एक अन्य घायल हो गया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। श्री नायडू ने अधिकारियों से दुर्घटना के बारे में जानकारी ली और घायलों को बेहतर उपचार की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है और विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहे हैं। जबरन गुमशुदगी के मामलों में कथित तौर पर वृद्धि हुई है। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर आंदोलन को दबाने के लिए अत्यधिक बल प्रयोग करने का आरोप लगाया है। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ है विशेष शुक्ला।
1: एशियाई खेलों में रोशोबिना देवी वुशु के फाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। मीराबाई ने 28 वर्ष का सूखा खत्म करते हुए भारत को पदक दिलाया।
2: बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि एशियन गेम्स में मेरा मेडल नहीं थे, पर आज फाइनली मुझे मिल गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद में काफी इंजुरी हुई थी तो यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल होते। मैं इधर आके मैंने सिल्वर मेडल जीते तो इससे अच्छा खुशी क्या हो सकता है।
1: वहीं जय मीणा ने सॉफ्ट टेनिस के सिंगल्स का कांस्य पदक जीतकर नया इतिहास रचा। निशानेबाजी में स्कीट स्पर्धा में माहेश्वरी सिंह, परिणाज धालीवाल और राइजा ढिल्लों की महिला टीम और अनंतजीत सिंह नरुका, महराज अहमद खान और भवतेक सिंह गिल की पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीते। भारत एक स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य सहित 12 पदकों के साथ 13वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है।
0: प्रधानमंत्री स्मृति चिन्हों की ई नीलामी में इस वर्ष बिहार की सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक परंपराओं को दर्शाने वाले 65 स्मृति चिन्ह शामिल किए गए हैं। इनमें मधुबनी और मिथिला चित्रकला, सिक्की और मंजूषा कला, ऐतिहासिक व्यक्तित्व तथा राज्य से जुड़े धार्मिक स्थल शामिल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने की अमरीकी कानून पर अपने हितों और चिंताओं को दोहराया। भारत ने इस्लामिक सहयोग संगठन के जम्मू कश्मीर के संदर्भ को खारिज किया, कहा इसका भारत के आंतरिक मामलों से कोई लेना देना नहीं। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियारों के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 800 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध किया। भाजपा ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारी की घोषणा की। बंगाल की खाड़ी में बना गहरा कम दबाव का क्षेत्र और करीब आया। ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में तेज बारिश हुई। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, this is Akashwani. I am VC Pramod with the news at 9. The headlines. India reiterates its interests and concerns with the United States regarding act imposing tariffs on countries buying Russian oil and gas. New Delhi rejects Organization of Islamic Cooperation's Jammu and Kashmir reference. Says it has nothing to do with internal matters of India. Defence Ministry signs over 810 crore rupees contract with Bharat Dynamics Limited for 160 satellite smart anti-airfield weapons for Indian Air Force. BJP announces party in-charges and co-in-charges for all 36 states and union territories. Deep depression over Bay of Bengal intensifies. Heavy rains lash coastal Odisha and Andhra Pradesh. And in Asian Games, Indian men's badminton team settle for bronze, taking overall tally to 12 medals, including one gold.

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में सरस्वती चंद्र फिल्म का गीत। गीतकार थे इंदिवर, संगीत कल्याण जी, आनंद जी का था। सुहाने तराने कार्यक्रम की अगली पेशकश हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मंथन से, आवाज़ प्रीति सागर की है।

लता मंगेशकर की आवाज में अभिमान फिल्म का गीत आपने सुना। इसी के साथ सुहाने तराने कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है भारत में समग्र स्वास्थ्य की पहल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार बर्नवाल और पत्रकार सौरभ शुक्ला।
2: चर्चा में आपका स्वागत है, मैं हूं सौरभ शुक्ला। आयुष्मान भारत को शुरू हुए 8 साल पूरे हो गए हैं। योजना के विस्तार के साथ अब 70 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों को भी इस दायरे में लाया गया है। ऐसे में सवाल ये है कि 8 साल में आयुष्मान भारत ने आम लोगों के स्वास्थ्य सुविधाओं और इलाज के खर्च को किस हद तक बदला है और आगे इसकी दिशा क्या रहेगी, इन मुद्दों पर नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के CEO डॉक्टर सुनील कुमार बर्नवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आयुष्मान भारत को 8 साल पूरे हो चुके हैं, सरकार 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों

0: की बात कर रही है। इनमें से आप क्या मानते हैं कि असल में फायदा कितने लोगों को, कितने परिवारों को हुआ है, कितने लोगों को इस योजना का लाभ मिला है?
1: अभी तक के जो आंकड़े हैं जो 8 साल पूरे होने पे उपलब्ध हैं, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जैसा अधिकतर लोग जानते होंगे, ये विश्व की सबसे बड़ी गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ एश्योरेंस प्रोग्राम है। इसके तहत भारत सरकार देश की आबादी के बॉटम 40% पॉपुलेशन को 5 लाख रुपए की प्रति परिवार प्रति वर्ष हेल्थ कवर उपलब्ध कराती है, और आज तक 13 करोड़ से अधिक लोगों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। तो 13 करोड़ से अधिक लोगों ने विभिन्न अस्पतालों में, जो सूचीबद्ध अस्पताल हैं, हमारे 38,000 से ज्यादा अस्पताल हैं जहां इनका इलाज हुआ है, और विभिन्न प्रकार की बीमारियों के लिए इसके इलाज हुए हैं। तो 13 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लाभ उठाया है, और अगर इसे मनी के टर्म्स में देखें तो 2 लाख करोड़ से ज्यादा की बचत इन 13 लाख लोगों के परिवारों को हुई है। तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा है जो सरकार के माध्यम से गरीब परिवारों तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है।
0: आम आदमी के लिए सर सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आयुष्मान कार्ड होने पर 5 लाख रुपए तक का एक कवर मिलता है उसे, तो ये कवर वास्तव में काम कैसे करता है और किन किन बीमारियों के इलाज में फायदा होता है? क्या कुछ ऐसा भी है जहां ये कार्ड काम नहीं आता है?
1: देखिए, सबसे पहले तो ये कार्ड काम ही करता है जहाँ जो सूचीबद्ध अस्पताल है। तो जो 38,000 सूचीबद्ध अस्पताल हैं, जिसमें लगभग 18,000 प्राइवेट अस्पताल हैं और 20,000 करीब सरकारी अस्पताल हैं। दूसरा, ये जो कार्ड है ये केवल इंडोर पेशेंट के लिए कार्य करता है। ये सर्दी खांसी के इलाज की तरह आउटडोर पेशेंट के लिए नहीं है, बल्कि इसके लिए एडमिट होना होता है, भले ही वो एडमिशन केवल एक दिन भर के लिए ही हो। जैसे एनिमल बाइट है या फिर डायलिसिस है, इसमें जरूरी नहीं है कि पूरे 24 घंटा एडमिट होते हैं, लेकिन एडमिशन लेना होता है। आईपीडी पेशेंट के रूप में ही इसमें ट्रीटमेंट हो सकता है। तीसरा, ये कार्ड जिनको मिला है, जो लाभार्थी की सूची में है, इन्हें एडमिशन के समय, रादर रजिस्ट्रेशन के समय, अपने आप को आइडेंटिफाई करना होता है बायोमेट्रिक के माध्यम से। वो चाहे फिंगरप्रिंट के माध्यम से हो, फेस ऑथ के माध्यम से हो, और जहां कहीं नेटवर्क नहीं उपलब्ध हो पाता है, इवन ओटीपी के माध्यम से हो, परंतु उसे ऑथेंटिकेट होना पड़ता है कि ये जेन्यून पेशेंट है जिसकी पहले से लाभार्थी की सूची में नाम है और इन्हें उस इलाज की जरूरत है। इसके बाद ये जैसे ही इलाज की जरूरत है, अगर वो सर्टिफाई करते हैं डॉक्टर, तो उससे संबंधित कागजातों को अपलोड करना होता है एनएचए के आईटी सिस्टम पे, ताकि ये वेरीफाई हो सके कि इन्हें उस इलाज की जरूरत है। और तभी जब प्लेटफॉर्म से हम उसे ऑथराइज करते हैं, जिसे प्री ऑथराइजेशन कहा जाता है, जब ऑथराइज करते हैं तब वो ट्रीटमेंट शुरू होता है। इमरजेंसी के मामलों में जहां पे ट्रीटमेंट शुरू करना अत्यंत आवश्यक है, वैसे में ये फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है कि आप एडमिशन ले लें, ट्रीटमेंट शुरू कर दें, उसके बाद आप प्री ऑथराइज कर दें, जो कि ट्रीटमेंट शुरू होने के 3 दिन के अंदर का होना चाहिए। तो इस तरह की व्यवस्था की गई है। व्यवस्था इसलिए की गई है कि वो लाभार्थियों का सही आइडेंटिफिकेशन हो सके, दूसरा एक्सेस या अंडर ट्रीटमेंट नहीं हो, तीसरा ये है कि ट्रीटमेंट जो है वो जितने पैकेजेज हैं, जितने हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं, और अभी तक जो हमारा लेटेस्ट पैकेज है उसके अनुसार 1961 लगभग 2,000 ट्रीटमेंट प्रोसीजर हैं जो कि इसके तहत एडमिसिबल हैं, और इसमें अधिकतर बीमारियां शामिल हैं, कैंसर, हार्ट डिजीज, लीवर, किडनी, इवन जो फीवर होते हैं जिसमें एडमिशन कराना होता है, डायलिसिस, ये सारे अधिकतर पैकेजेस शामिल हैं। कैंसर के ही काफी सारे पैकेजेज हैं जिसमें है, इसमें शामिल है। कई ऑर्गन ट्रांसप्लांट के भी पैकेजेज हैं, कैटरेक्ट है, नी ट्रांसप्लांट है, इस तरह के भी पैकेजेज इसमें शामिल है। तो ये बहुत बड़ा लाभ है, जिस बीमारी की इलाज गरीब आदमी कभी सोच नहीं पाता था, और रीजन ये था कि उस बीमारी के इलाज के लिए कोई ना कोई चीजें उन्हें छोड़नी पड़ती थी, चाहे वो जमीन बेचना होता था या बच्चों की पढ़ाई छोड़नी होती थी, और कई बार तो बुजुर्गों के लिए इलाज छोड़ ही देना होता था और सारी आवश्यकताओं को देखते हुए। इसके साथ ही साथ कई बार महिलाओं का इलाज पोस्टपोन होता रहता था, जो कि इस योजना के आने के बाद से, और योजना के आंकड़ों से भी पता चलता है कि लगभग 50

0: 50% इलाज महिलाओं के द्वारा लिया गया। तो ये शो करता है कि बहुत सारी बीमारियां जो कि दबा दी जाती थी, पोस्टपोन कर दी जाती थी, उनका इलाज इस योजना के आने के बाद संभव हो सका है। तो एक बहुत बड़ी सुविधा सरकार के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई जा रही है और लोग भी इसका लाभ उठा रहे हैं और हमारी सिस्टम भी ऐसी है जिसमें कि आईटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये सारे ट्रांजेक्शन संभव हो पाते हैं।
1: सर, इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल था कि जब अस्पताल व्यक्ति पहुंचता है तो बहुत ही इमरजेंसी होती है, उसे अंदाजा नहीं होता है कि हम सही अस्पताल में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, आयुष्मान में कवर है ये हॉस्पिटल नहीं, तो ये वो कैसे पता कर सकता है?
0: इसके लिए हम लोगों ने सिटीजन इंगेजमेंट के लिए एक अच्छे पुख्ता व्यवस्था किया है, जो रोबस्ट सिस्टम है, और इसके चार मेजर चैनल है जिससे ये सारी जानकारियां मिल सकती है, न केवल अस्पताल की और बीमारी की, इस योजना से संबंधित कोई भी जानकारी इससे ली जा सकती है। सबसे पहला तो जो सिटीजन के लिए सबसे आसान भी है, 1455 टोल फ्री नंबर है पूरे देश के लिए, और इस नंबर पे फोन करने से हमारा कॉल सेंटर जो 24/7 काम करता है, इसके माध्यम से योजना की सारी जानकारी ले सकते हैं, कौन सा हॉस्पिटल इम्पैनल्ड है, कौन सी बीमारी कवर्ड है, किस अपने जहां उपस्थित हैं उसके आसपास का कौन सा हॉस्पिटल है, ये भी जानकारी ले सकते हैं कि अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो हार्ट स्पेशलिटी वाली कौन सी सूचीबद्ध हॉस्पिटल है, तो ये सारी जानकारी उससे ली। सिमिलर जानकारी ये पोर्टल पे भी उपलब्ध रहती है, तो जिनको पोर्टल का एक्सेस है, खास करके नए जनरेशन के लोगों को जो देख पाते हैं, वो आसानी से उस पे भी सर्च कर सकते हैं। हम लोगों ने एक आयुष्मान ऐप बनाया है, जो आयुष्मान ऐप को अपग्रेड करके ऐसा सिस्टम बनाया है कि व्यक्ति अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकता है, अपना कार्ड डाउनलोड कर सकता है, अपने नियर बाय हॉस्पिटल की जानकारी ले सकता है और इसके साथ साथ अपना फीडबैक भी दे सकता है। और सेम चीज हम लोगों ने व्हाट्सएप जो है चैटबॉट के माध्यम से एक आयुष्मान सारथी भी शुरू किया है कि अगर चैटबॉट पे जैसे ही हाई करेंगे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाएगा।
1: तो आइए सुनते हैं आयुष्मान भारत के 8 साल पूरे होने पर ये खास रिपोर्ट।
2: आयुष्मान भारत योजना के आज 8 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो भारत सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की अपनी यात्रा में एक बड़ा पड़ाव पार कर रहा है। नगद रहित अस्पताल उपचार से लेकर डिजिटल स्वास्थ्य आईडी तक, यह योजना लाखों लोगों के इलाज तक पहुँचने के तरीके को बदल रही है। 8वें वर्ष में प्रवेश करते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJ भारत की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना के रूप में उभरी है, जो हर परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक का नगद रहित अस्पताल उपचार कवर देती है। 23 सितंबर 2018 को शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक देश की लगभग 33% आबादी शामिल है और 21 सितंबर 2026 तक 48 करोड़ 51 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। 38,000 से अधिक सरकारी और निजी अस्पतालों के नेटवर्क के जरिए ABPMJ अब तक 13 करोड़ 25 लाख अस्पताल भर्तियों को कवर कर चुका है, जिनकी कुल लागत 2.03 लाख करोड़ रुपए है। इससे कमजोर तबके के परिवारों पर पड़ने वाला निजी स्वास्थ्य खर्च काफी कम हुआ है। योजना 27 विशेषताओं में 1961 प्रक्रियाओं को कवर करती है और अब आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी स्टाफ, 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों समेत कई अन्य वंचित समूहों को भी शामिल करती है। लेकिन आयुष्मान भारत सिर्फ अस्पताल कवर नहीं है, यह 4 स्तंभों पर टिका है जो मिलकर काम कर रहे हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को समुदायों के करीब लाते हैं, जहां मुफ्त दवाएं, जांच और डेली परामर्श उपलब्ध हैं। इन केंद्रों पर अब तक 540 करोड़ से अधिक फुटफॉल और 50 करोड़ टेली परामर्श दर्ज किए गए हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत 97 करोड़ 61 लाख से अधिक आभा स्वास्थ्य आईडी बनाई गई है, जिनसे लगभग 120 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड जुड़े हैं, ताकि अस्पतालों में कागज रहित और सुचारू इलाज संभव हो सके। वहीं पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन 64,180 करोड़ रुपए के बजट के साथ शहरी और ग्रामीण भारत में लैबों, क्रिटिकल केयर ब्लॉक और रोग निगरानी प्रणालियों को मजबूत कर रहा है। इन सभी पहलों के जरिए गांव के स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर जिला अस्पतालों और डिजिटल प्लेटफॉर्म तक एक सतत देखभाल प्रणाली तैयार हो रही है, जो भारत को सबके लिए

0: स्वास्थ्य के लक्ष्य के करीब ले जा रही है। 8 साल बाद आयुष्मान भारत सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि लाखों लोगों के लिए एक सुरक्षा कवच बन चुका है, जो यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी परिवार को स्वास्थ्य और वित्तीय सुरक्षा के बीच चुनाव ना करना पड़े।
1: कई बार लोगों की शिकायत ये होती है कि योजना का दायरा तो उन्हें पता है, लेकिन अस्पताल में उनसे ज्यादा पैसे मांग लिए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या मैकेनिज्म हमने बनाया है कि उनकी शिकायतों को का निपटारा हो सके या शिकायतें सही जगह पहुंचे? कैसे?
2: 4 माध्यम रखा है जिससे कोई भी व्यक्ति न केवल जानकारी प्राप्त कर सकता है बल्कि शिकायत भी कर सकता है। तो शिकायत के लिए भी ये 4 चैनल्स ओपन है। दूसरी बात कि ये जो शिकायत स्पेसिफिक केस है जिसमें किसी व्यक्ति को एलिजिबल रहने के बावजूद ट्रीटमेंट डिनाई कर दिया गया या फिर पैसे मांगे गए या कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसे केसेस को हम लोग SOS कैटेगरी में रखते हैं और इन केसेस को 5 घंटे के अंदर ही निपटारा करना होता है, क्योंकि अगर ये ज्यादा समय लगेगा तो वो एक तरह से जो शिकायत है वो चाहे उसका रिजल्ट आउट मतलब ऑलरेडी हो जाएगा, चाहे तो ट्रीटमेंट नहीं होगा या फिर पैसे दे देगा या कुछ इस तरह का होगा। तो इसलिए इन्हें SOS कैटेगरी में रखा गया है और 5 घंटे के अंदर इसका निपटारा करना है। और ऐसे केसेस को हम लोग न केवल ये IT सिस्टम में रखते हैं बल्कि हम डायरेक्टली नेशनल लेवल से स्टेट को और डिस्ट्रिक्ट को कॉल करते हैं, साथ ही साथ हॉस्पिटल को भी कॉल करते हैं ताकि उन्हें पता चले कि इस तरह का कंप्लेन आया है। और हमने देखा है कि 90% से ज्यादा केसेस में ये चीजें रिजॉल्व हो गई हैं। और ये मैं नागरिकों को भी अवगत कराना चाहता हूं कि ये सुविधा उन्हें उपलब्ध है। जहां भी आयुष्मान कार्ड देने के बावजूद 1 रुपये की भी मांग की जाती है तो वो पहले तो उनसे रसीद मांगे ताकि ये पता चला किस चीज के लिए उन्होंने पैसे मांगे हैं। वो इलाज अगर आयुष्मान भारत में कवर्ड है तो 1 रुपये भी नहीं लगने चाहिए। और अगर वो रसीद दिए बिना पैसे की मांग कर रहा है तो निश्चित रूप से इस पे शिकायत की जाए और इसका निपटारा 5 घंटे के अंदर नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की जो पूरी टीम है कॉल सेंटर और ये लग करके करती है और हमें अधिकतर मामलों में सफलता मिल जाती है।
1: आज के दौर में तकरीबन कितने सरकारी और निजी क्षेत्र के अस्पताल आयुष्मान योजना से जुड़े हुए हैं और क्या ग्रामीण और छोटे शहरों में इसे और बढ़ाने की योजना है हमारी?
2: देखिए, ये जो अब तक की स्थिति है 38,000 से ज्यादा हॉस्पिटल जो है ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में सूचीबद्ध है, इम्पैनल्ड है। इसमें से 18,000 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, 20,000 के आसपास सरकारी अस्पताल हैं जिसमें मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिविजनल हॉस्पिटल, CHCs ये सारे इम्पैनल्ड हैं। ये 38,000 हॉस्पिटल पूरे देश में स्प्रेड आउट हैं। जाहिर सी बात है कि शहरों में ज्यादा हॉस्पिटल हैं, परंतु इस योजना के माध्यम से जिसको सरकार फंड कर रही है हमने इवन रूरल एरिया में बहुत ज्यादा हेल्थ सर्विस की डिमांड बढ़ाई है। मतलब लोग जो है अब इलाज करने आ रहे हैं जो पहले इलाज नहीं कर पा रहे थे, और जब इलाज करने आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि जिस क्षेत्र में डिमांड है वहां हॉस्पिटल स्थापित करें। तो इस योजना के माध्यम से रिमोट एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में काफी हॉस्पिटल्स खुले हैं, कई खुलने की भी प्रक्रिया में है। शायद ही कुछ जिले बचे हों जहां पे कोई प्राइवेट हॉस्पिटल अभी तक ना पहुंचा। सरकारी अस्पताल तो निश्चित रूप से सरकार की योजना के तहत ही खुल रही हैं, परंतु ये सुविधा इस योजना के आने के बाद से बढ़ी है। इवन सरकारी अस्पताल जो इसमें सूचीबद्ध है वो ऐसे तो निःशुल्क इलाज सभी लोगों की करते हैं, लेकिन वो आयुष्मान कार्ड धारी को आयुष्मान कार्ड मांग करके इलाज करना है ताकि इलाज तो उन्हें निःशुल्क मिलेगा लेकिन सरकारी अस्पताल को बाद में इस योजना के तहत राशि मिल जाएगी, क्लेम अमाउंट मिलेगा, और इसका उपयोग करके सरकारी अस्पताल अपने आप को ज्यादा सुदृढ़ कर सकते हैं। जो आकांक्षी जिले हैं उसमें जो हॉस्पिटल स्थापित हैं वहां अगर कोई इलाज करता है तो जो क्लेम अमाउंट होता है उस पे हम एक्स्ट्रा इंसेंटिव देते हैं ताकि वो वहां पे न केवल सर्वाइव करे वो बेहतर कार्य कर सके।
1: इन अस्पतालों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी होता है किसी इलाज के लिए उसकी मॉनिटरिंग नेशनल हेल्थ अथॉरिटी किस तरह से करती है?
2: देखिए, हम लोग जब भी किसी हॉस्पिटल को सूचीबद्ध करते हैं, इम्पैनल करते हैं, तो उसके विभिन्न क्राइटेरियाज रखे हैं। जैसे मिनिमम नंबर ऑफ बेड्स होने चाहिए, ज्यादातर स्पेशलिटी में 20 बेड है। दूसरा, हमें ये पता होना चाहिए कि क्या क्या

0: स्पेशलिटीज़ हैं जिसके लिए वो इम्पैनल कर रहे हैं। मतलब अगर एक हॉस्पिटल में चार स्पेशलिटी है तो उन्हें चारों के लिए इम्पैनल होना पड़ेगा। एक चूज नहीं कर सकते कि जिसमें ज़्यादा फायदा है, जिस बीमारी के इलाज में, उसको चूज नहीं कर सकते, बल्कि जो स्पेशलिटी है सभी को रखना पड़ेगा। स्पेशलिटी जैसे ही डालेंगे उन्हें बताना पड़ेगा डॉक्टर्स कौन कौन हैं, उनके क्वालिफिकेशंस क्या हैं, ये जो डॉक्टर्स हैं ये फुल टाइम है या पार्ट टाइम है। और ये चीज हम लोगों ने अब इवन हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री पे उन डॉक्टरों का रजिस्टर होना मैंडेटरी किया है, ताकि वहां से हम सारे इंफॉर्मेशन निकाल पाए कि जो डॉक्टर की ये नाम बता रहे हैं वो डॉक्टर सच में वेरीफाइड है, वो डॉक्टर और कहाँ कहाँ है। इसके अलावा हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री पे भी उसे रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, जिन राज्यों में क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है उसके तहत रजिस्टर होना चाहिए, फायर की जो क्लियरेंसेस हैं, बिल्डिंग लॉज के क्लियरेंसेस हैं, बायोमेडिकल वेस्ट के क्लियरेंसेस हैं, ये सब मैंडेटरीली जो रिक्वायर्ड है वो उसमें निश्चित रूप से होना चाहिए। साथ ही साथ हमने इस वर्ष अब नए हॉस्पिटल इम्पैनल करने के लिए हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसे भी मैंडेटरी किया है।
1: सर, इस योजना में रोज आपने बताया कि किस तरह से 70-80 हजार का आंकड़ा रहता है, जहां पर इलाज चल रहा होता है, दावे आ रहे होते हैं आप लोगों के पास में क्लेम्स में, तो ऐसे में एक आशंका ये भी रहती है कि कहीं ये दावे फर्जी तो नहीं आ रहे हैं, कहीं अनावश्यक इलाज तो नहीं किया जा रहा है।
0: अच्छी बात है इस आयुष्मान भारत पीएमजे में कि हर इलाज को बंडल्ड पैकेज के रूप में बनाया गया है। मतलब अगर आपने कैटरेक्ट सर्जरी कराई है तो उसमें दवा का कॉस्ट अलग और कंज्यूमेबल्स का अलग, ऑपरेशन का अलग नहीं है, वो सब मिला करके एक बंडल्ड कॉस्ट है। नी ट्रांसप्लांट का बंडल्ड कॉस्ट है, डायलिसिस का बंडल्ड कॉस्ट है। तो अगर आपने ज्यादा इलाज कराया तो भी आपको ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। मतलब अगर कोई हॉस्पिटल सोचता है कि इसे ज्यादा इलाज करा दें, ज्यादा दिन रख लें, तो उससे ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे क्योंकि उसके कॉस्ट फिक्स्ड हैं। दूसरी बात यह है कि अब जब वो क्लेम सबमिट करते हैं तो ऐसे कई शिकायतें आई और कई ऐसे पाए भी गए जिसमें हॉस्पिटल्स ने क्लेम गलत सबमिट किए, एक्स्ट्रा सबमिट किए, गलत डॉक्यूमेंट सबमिट किए। इसमें तीन कैटेगरी आता है। एक तो है जिसमें एरर्स मिल जाते हैं, दूसरा है जिसमें एब्यूज हुआ है, मतलब कि ट्रीटमेंट चाहिए था थोड़ा सा, उसको और दो तीन पैकेज बुक करके ट्रीटमेंट कर दिया, इलाज एक चीज के लिए गए थे साथ में दो और इलाज कर दिए, एक्स्ट्रा बुक कर दिए, इस तरह के एब्यूज हैं। थर्ड है फ्रॉड है, जिसमें पेशेंट कोई और है, ऑथराइजेशन किसी का है, फोटो किसी और का लगाया है, डॉक्यूमेंट जो लगाया कैटरेक्ट में लेंस या नी ट्रांसप्लांट में जो इम्प्लांट लगाया है वो पता चला कि वो लगा ही नहीं है, या लगा है तो एक ही इम्प्लांट चार जगह लगाए हैं या एक ही लेंस चार जगह लगाए हैं, वो पकड़ना जरूरी है।
1: जी, डुप्लीकेसी हो गई,
0: डुप्लीकेसी हो गई,
1: या कह लीजिए
0: तो
1: डबल विनिंग।
0: हम लोगों ने एक नेशनल एंटी फ्रॉड यूनिट बनाया और जिस तरह से वो दिमाग लगा रहे किस तरह से चीट कर सकते हैं, हमारी टीम ने इस पे टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बहुत सारे ऐसे केसेस को सबसे पहले क्लेम प्रोसेसिंग शुरू होने के पहले इसे नाफू ट्रिगर से गुजरना पड़ता है, और ऐसे हम लोगों ने 61 ट्रिगर्स लगाए हैं। और इसमें वो सारे चीजें जिसमें फोटोग्राफ्स बदले गए हैं, डॉक्यूमेंट गलत लगाए गए हैं, इम्प्लांट के बार कोड मिसमैच हो रहे हैं या बार कोड कई जगह यूज हुए हैं, ऐसे करके हम लोगों ने कई सारे केसेस को पकड़े हैं और अब तक 670 करोड़ के आसपास का क्लेम हम लोगों ने प्रिवेंट किया है। वो क्लेम को हम पे नहीं करके उसे रिजेक्ट किए, और ऐसे मामले को हम लगातार वॉच करते हैं। जो भी हमारा ट्रिगर जो है सस्पिशियस बताता है उनसे हम स्टेट्स को भेजते हैं कि उसे वेरीफाई किया जाए। उनके यहाँ भी स्टेट एंटी फ्रॉड यूनिट है जिसमें डॉक्टर्स होते हैं जो चेक करते हैं फिर से, या जरूरत पड़ने पे हॉस्पिटल इंस्पेक्ट भी करते हैं, और अगर वो फ्रॉड निकलता है तो उसे न केवल क्लेम रिजेक्ट होता है, फ्रॉड के केस में वो डी इम्पैनल हो सकते हैं, 5 टाइम्स तक उस पे पेनाल्टी लग जाती है क्लेम के अमाउंट पे। तो इस तरह की कार्रवाइयां भी होती है, कुछ केसेस में इवन FIR भी दर्ज होते हैं। तो ये चेक्स है, अब इसमें हमारे ट्रिगर्स और ज्यादा एक्यूरेट हो रहे हैं बिकॉज हम अब मशीन लर्निंग और AI का यूज कर रहे हैं, जिससे कि टूल भी ये समझने लगता है कि इस तरह की टेंडेंसी बढ़ रही है, इस तरह के क्लेम्स ज्यादा आ रहे हैं, और हम जो डॉक्यूमेंट हैं उसको OCR टेक्नोलॉजी से पढ़ पाते हैं और इसलिए इस तरह के ट्रिगर्स को अप्लाई कर पाते हैं। तो ऐसी कई व्यवस्थाएं की गई है। इसके अलावा हम लोगों ने एक नई चीजें और शुरू

की है, जिसमें हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्लेम हैं जो बहुत छोटे अमाउंट के हैं, मतलब वॉल्यूम बहुत है, वैल्यू बहुत कम है। तो अब हम लोगों ने AI को यूज करके ऑटो एडजुडिकेशन करना शुरू किया है कि सिस्टम ही उसको एडजुडिकेट कर देती है बेस्ड ऑन जो रिपोर्ट्स देते हैं। तो ऑटो एडजुडिकेशन के बाद से लगभग 30% ऑफ द क्लेम्स इन वॉल्यूम टर्म्स अब ये ऑटो एडजुडिकेशन से क्रॉस कर रहा है। तो ये एक अच्छा सिस्टम बना है, आने वाले दिनों में और भी सारे पैकेजेस जो कि हाई वैल्यू भी हों उनको भी ऑटो एडजुडिकेशन के माध्यम से ले जाने का प्रयास किया जाएगा। और इसके लिए हम लोगों ने एक हैकाथॉन किया था जिससे हमें अच्छे सॉल्यूशंस मिले और तभी हम इस चीज को लागू कर पाए हैं। आने वाले वर्षों में जब हम 9th ईयर में जा रहे हैं इस योजना के,

0: आने वाले वर्षों में जब हम 9th ईयर में जा रहे हैं इस योजना के, इसका उपयोग और बढ़ाएंगे।
1: सर, कोई ऐसा भी जिला या राज्य है जहां पे लग रहा है आपको कि इस योजना को लागू करना चुनौतीपूर्ण है? उन जगहों पे किस तरह से काम कर रहे हैं क्या? और
0: हमारे लिए जो एक तो अब पूरा देश इस योजना से लाभान्वित हो रहा है, जो अंतिम राज्य था वो पश्चिम बंगाल था, जो कि 16 अगस्त को इस योजना पे आ गया है, तो अब तो पूरे देश में इसे लागू किया गया है। जो हमारी कठिनाई आती है वो किसी राज्य विशेष में ज्यादा नहीं है, बट कुछ क्षेत्र जरूर हैं जो काफी रिमोट हैं, वो ट्राइबल एरियाज में भी हो सकते हैं, हिली रीजन्स में आते हैं, फॉरेस्ट रीजन्स में आते हैं, जहां पे नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है। और ये नेटवर्क की प्रॉब्लम, हॉस्पिटल्स तो जब बनाते हैं तो हॉस्पिटल किसी न किसी व्यवस्था से नेटवर्क सुनिश्चित कर लेती है, बट हमें आयुष्मान कार्ड बनाने में कई बार कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कार्ड भी ऑनलाइन ही ऑथेंटिकेशन के बाद बनता है, तो हम लोगों ने ऐसे केसेस में ऑफलाइन भी व्यवस्था की है। इसके अलावा जो चैलेंज ये आ रही है कि कुछ रिमोट क्षेत्रों में अभी भी सभी स्पेशलिटी के हॉस्पिटल्स नहीं मिल पाते हैं, जो हमारी सुपर स्पेशलिटी है, जैसे कैंसर है, हार्ट डिजीज है, किडनी, लीवर, कई दूरस्थ क्षेत्रों में ये स्पेशलिटी नहीं हो पाती है, और इसलिए लोगों का डिपेंडेंस फिर दूसरे बाहर जाकर के इलाज कराने पे हो जाता है। तो ये चैलेंजेज हैं, बट इसको धीरे धीरे हम ओवरकम कर रहे हैं और हमें लगता है आने वाले दिनों में ये बेहतर ही होता चला जाएगा। दूसरी एक ये स्थिति है कि हम डिजिटल मिशन जो रखे हैं, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इसके माध्यम से पेशेंट को हम एम्पावर कर रहे हैं, सो दैट कि दे हैव ऑल हेल्थ रिकॉर्ड्स ऑन देयर मोबाइल। अब ऐसा होने से इनका लाभ ये हो रहा है कि वो कहीं भी इलाज करते हैं तो उन्हें रिकॉर्ड कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो मोबाइल से शेयर कर पाते हैं। इससे ये बेहतर डायग्नोसिस में फायदा होता है और ये पीएमजे के भी बेनिफिशियरीज को बहुत लाभ हो रहा है। तो हम इसके माध्यम से लोगों को ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जो पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड ऐप है और भारत सरकार ने जो लॉन्च किया है आरोग्य सेतु 2.0, ये लोगों के लिए बहुत बड़ा सुविधा है, जिसके माध्यम से सारे रिकॉर्ड अपने मोबाइल में रहता है और उससे हिस्ट्री भी बनती जाती है, इलाज भी बेहतर हो पाता है, डायग्नोसिस बेहतर हो पाता है। तो ऐसे थोड़े बहुत अभी चैलेंजेज हैं, परंतु हमारा देश काफी बड़ा है, आबादी बहुत है, क्षेत्र भी अलग अलग तरह का है, चैलेंजेज अलग है, कल्चरली डिफरेंट है, ज्योग्राफिकली डिफरेंट है, इसलिए इस योजना में हमेशा थोड़ी बहुत तो चैलेंज रहेगी, परंतु हम उसे इतने बड़े सिस्टम में नेशनल लेवल पे काफी हद तक सॉल्व करने में सफल रह रहे हैं।
1: सर, 70 साल और उससे ज्यादा की उम्र के लोगों को भी योजना के दायरे में लाया गया है अब, तो ये क्या मुश्किल रहा, कुछ चैलेंजेस आए यहाँ भी?
0: एक तरह से चैलेंज से ज्यादा ये अपॉर्चुनिटी है। हम 70 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को, जबकि ऐसे उम्र में प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज भी इंश्योरेंस देना बंद कर देती है,
1: बिल्कुल,
0: कई घरों में परिवार वाले भी इलाज कराना नहीं चाहते हैं और वो बुजुर्ग व्यक्ति भी छोड़ देता है कि अब हमारा समय आ गया, बच्चों पे ध्यान दो, इस तरह की बात करने लगते हैं। ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने ये योजना वय वंदना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अधीन लाई है और ये अब 2 वर्ष पूरा होने को है, अक्टूबर 2024 में चालू किया गया था। 6 करोड़ से ज्यादा बुजुर्ग को इसमें लाभ मिलेगा ऐसी उम्मीद की जा रही है। 1.36 करोड़ कार्ड लोगों ने क्रिएट कर लिया है। लगभग 20 लाख से ज्यादा लोगों ने, 70 वर्ष से ज्यादा के लोगों ने इलाज का लाभ भी लिया है और 5,000 करोड़ तक की राशि का उनका बचत भी हो चुका है जो सरकारें खर्च कर रही है। तो ये देख के लग रहा है कि जिन लोगों को स्वास्थ्य की सबसे जरूरत है, सबसे ज्यादा, उनके लिए सरकार उनके साथ खड़ी हुई है। और हमें सबसे ज्यादा क्वेरी ऐसे ही लोगों से आती है जो कि 70 वर्ष से ज्यादा है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, किसी भी आय वर्ग से हो, उनको ये लाभ मिल पा रहा है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसमें चैलेंजेस थोड़ी आती है क्योंकि काफी बुजुर्ग लोग जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो कई बार उनका फिंगरप्रिंट नहीं काम करता, तो हम लोगों ने फेस ऑथ की व्यवस्था की है। इस तरह से हमें छोटे मोटे व्यवस्थाएं और इम्प्रूव कर रहे हैं। हॉस्पिटल में जैसे वो पहुंचते हैं तो उनकी बैठने की व्यवस्था, उन्हें ऐसा सुविधा हो जिससे वो अनकंफर्टेबल नहीं हो हॉस्पिटल में जाकर के ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि कई बुजुर्ग है, कई बार अकेले ही आते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो ये जरूरी है कि हम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जो सूचीबद्ध अस्पताल है उनमें भी उनकी आवश्यकता के अनुरूप व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। तो ये कार्य भी NHA

0: कोशिश कर रहा है करने का।
1: एक आखिरी सवाल सर, जल्दी से उसका जवाब आपसे चाहूंगा कि 8 सालों में क्या सीखने को मिला हमें, और अगले 4-5 सालों की अगर बात करें तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी?
0: पिछले 8 वर्षों की जर्नी में ये पता चला कि हमें अगर इतने बड़े स्केल पे लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करानी है तो आईटी सिस्टम रोबस्ट होना चाहिए, जिससे कि हम हर तरह के डिफरेंट टाइप के केसेस को हैंडल कर सकें। अब जो आने वाले समय में हमें ये अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि पिछले 8 सालों में जैसे हम लोगों ने 13 करोड़ पेशेंट का इलाज कराया, इनके ट्रीटमेंट की हिस्ट्री से रिलेटेड आंकड़े उपलब्ध हैं। इन आंकड़ों को एनोनिमाइज करके, इससे पर्सनल इन्फॉर्मेशन हटा करके, इन आंकड़ों की बहुत ज्यादा वैल्यू है रिसर्च के लिए, डिजीज सर्विलेंस के लिए, पूरे देश की डिजीज मैपिंग के लिए, किस क्षेत्र में किस तरह की बीमारियां बढ़ी है या हैं, किस एज ग्रुप में किस तरह की बीमारी है, किस जेंडर में कौन सी बीमारी बढ़ रही है, ऐसी तरह की एक्सरसाइज की जा सकती है। और हम जल्द ही एक ऐसा सिस्टम ला रहे हैं जिससे कि जो सिक्योर डेटा एनवायरनमेंट कहलाता है, जिसमें हम इन आंकड़ों को बिना दिए, बिना इसका एक्सेस किए, हम रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस को, यहाँ तक कि जो प्राइवेट कंपनीज भी हो सकती हैं, टर्म्स कंडीशन ऑफ कोर्स अलग से डिसाइड की जाएगी, मतलब ये डेटा पे अपने एल्गोरिदम रन करके रिजल्ट्स ले सकते हैं। ये आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आई है, और ये फर्दर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को लेवरेज करने में फायदा आएगा, जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने, इसके माध्यम से नए नए टूल्स, चाहे वो स्क्रीनिंग का हो, डायग्नोसिस का हो, डेवलप करने में भी सुविधा होगी। तो आने वाले वर्षों में हम नेशनल हेल्थ अथॉरिटी एक बहुत ही डेटा ड्रिवन आईटी एक्सपर्टीज हासिल करेगा, और इसका उपयोग इस योजना के बेहतर और क्वालिटी हेल्थ केयर डिलीवरी में कर पाएगा।
1: जाहिर है इसका फायदा आम लोगों को भी होगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया।
0: थैंक यू।
2: अभी आप सुन रहे थे भारत में समग्र स्वास्थ्य की पहल, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार बर्नवाल और पत्रकार सौरभ शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: चर्चा का विषय है।
4: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

अभी आप सुन रहे थे गीता रॉय की आवाज़ में जोगन फिल्म का गीत। आइए आप सुनते हैं फिल्म नागिन से कार्यक्रम का अगला गीत, आवाज़ लता मंगेशकर की है।

लता मंगेशकर की आवाज में नागिन फिल्म का किताब सुन रहे थे। आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।

अभी आप सुन रहे थे मुबारक बेगम और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में हमराही फिल्म का गीत। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म गीत से, महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाज़ों में ये गीत।

महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाज़ों में गीत फिल्म का गीत आपने सुना। इस गीत को लिखा था हसरत जयपुरी ने और संगीत तैयार किया था कल्याण जी आनंद जी ने।

लता मंगेशकर और यशुदास की आवाजों में त्रिशूल फिल्म का गीत आपने सुना। फिल्म संगीत की अगली पेशकश फिल्म ब्लफ मास्टर से आवाजें मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की हैं।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में ब्लफ मास्टर फिल्म का गीत आपने सुना। आइए अब आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले की आवाज़ में काला बाजार फिल्म का ये अगला और आखिरी गीत।

आशा भोसले की आवाज़ में काला बाजार फिल्म का गीत आपने सुना, और इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अभी यहीं समाप्त होता है।

FM 102.2 मेगा हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 10:30 हो चुके हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं उस्ताद मुनव्वर अली खां का ख्याल गायन। हम आपको सुनवा रहे हैं इनका छोटा ख्याल, राग है मालकौंस।

भी आप सुन रहे थे उस्ताद मुनव्वर अली खां का ख्याल गायन। आपने सुना इनका छोटा ख्याल, राग था मालकॉन्स। अब लीजिए सुनिए पंडित मोहित कुमार का गिटार वादन। ये गिटार वादन धुन पहाड़ी पर आधारित है।

0: पंडित मोहित कुमार के गिटार पर बजाई ये पहाड़ी धुन के साथ ही शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। भारत ने रूस और ईरान से तेल खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने के अमरीकी कानून पर अपने हितों और चिंताओं को एक बार फिर दोहराया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने इस कानून पर भारत की चिंताएं स्पष्ट की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ खाड़ी देशों और यूक्रेन के हालात पर भी व्यापक चर्चा की। श्री रूबियो ने कहा कि भारत और अमरीका प्रमुख क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश रणनीतिक साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं। भारत ने इस्लामी सहयोग संगठन के तथाकथित जम्मू कश्मीर संपर्क समूह के संयुक्त घोषणा पत्र में भारत पर की गई निराधार और तथ्यात्मक रूप से गलत टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का ओआईसी को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और राजनीतिक रूप से प्रेरित झूठे प्रचार को बार बार दोहराने से ये वास्तविकता नहीं बदल सकती। इस तरह से के प्रेरित बयानों का बार बार समर्थन करना संगठन की विश्वसनीयता पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सेंट लूसिया के विदेश मंत्री अल्वा बैप्टिस्ट के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार को लेकर L69 परामर्शी मंत्री स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉ जयशंकर ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया में हो रहे अभूतपूर्व बदलावों का सबसे अधिक असर विकासशील देशों पर पड़ रहा है, जबकि संयुक्त राष्ट्र इन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में विफल रहा है। L69 परामर्शी मंत्री स्तरीय बैठक एक उच्च स्तरीय राजनयिक बैठक है जिसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधार पर विशेष रूप से चर्चा की जाती है। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार और उससे जुड़े उपकरणों की खरीद के लिए भारत डायनेमिक्स

0: लिमिटेड के साथ 810 करोड़ रुपए के से अधिक का समझौता किया है। इसकी आपूर्ति वर्ष 2027-28 और 2028-29 के बीच की जाएगी। ये सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार हवा से जमीन पर मार करने वाले सटीक निर्देशित ग्लाइड बम है। इसे जगुआर, हॉक और सुखोई 30 MKI जैसे विमानों से दागा जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के वडोदरा में ब्रह्म कुमारियों के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का लोकार्पण किया। उन्होंने विकसित भारत के लिए युवा, राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति की जागृति अभियान का भी शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश को युवा शक्ति की आवश्यकता है।
1: युवाओं को सशक्त, संस्कारवान, आत्मनिर्भर, शांतिपूर्ण और जिम्मेदार बनाना हम सब की जिम्मेदारी। हमें ऐसे युवा तैयार करना है जो ज्ञान, टेक्निक और कौशल से युक्त, साथ ही वे आत्मविश्वास, आत्म अनुशासन, सकारात्मक सोच, संवेदनशीलता और नैतिक मूल्यों से भी परिपूर्ण।
0: भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ और हरियाणा का और हरीश द्विवेदी को बिहार का प्रभारी बनाया गया है। विनय सहस्त्रबुद्धे को दिल्ली का और विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। राम माधव तमिलनाडु और उत्तराखंड के और तरुण चुग गुजरात के प्रभारी होंगे। सतीश पुनिया को जम्मू कश्मीर और पंजाब का और अनिल एंटनी गोवा और नागालैंड का दायित्व संभालेंगे। भारत ने आज ओमान के पूर्वी तट के पास वाणिज्यिक जहाज एमवी केप डाओ पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जहाज पर सवार 20 भारतीय नाविकों में से 19 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय नागरिक की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई। मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। एशियाई खेलों में रोशिबीना देवी ना ओरेम वुशू के फाइनल में पहुंच गई हैं। 60 किलो ग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में उन्होंने इंडोनेशिया की थानिया कुसुनेत्यास को हराया। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। सेमीफाइनल में भारतीय टीम को चीन से हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले भारतोलक मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। मीराबाई ने 28 वर्ष का सूखा खत्म करते हुए भारत को पदक दिलाया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Ashish P. Abraham. India today reiterated its interests and concerns with regard to sanctioning Russia and Iran Act. External Affairs Minister S. Jaishankar met U.S. Secretary of State Marco Rubio on the sidelines of the UN General Assembly session this evening and raised concerns regarding the act. Both leaders also discussed India-US bilateral relations and Gulf and Ukraine situations. US President Donald Trump signed into law the Sanctioning Russia and Iran Act last week, which authorizes him to impose tariffs of up to 100% on countries buying Russian oil and gas. In response, New Delhi said that it will take all necessary steps to protect its economic interests and ensure energy security for the nation. Jaishankar, who arrived in New York City on Sunday, is leading the Indian delegation for the 81st session of the UN General Assembly. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar co-chaired the L.69 Consultative Ministerial Interaction on UNSC Reform along with his Saint Lucian counterpart Alva Baptist. Addressing the meeting, Dr. Jaishankar noted that the Global South is at the receiving end of the unprecedented changes that the world is undergoing, with the UN falling short of expectations. He also underlined the inability of the UN Security Council to address ongoing conflicts and threats to international peace and security, only highlight the urgency of reform. New Delhi has categorically rejected the unwarranted and factually incorrect references to India in the joint communique of the so-called Organization of Islamic Cooperation, OIC, contact group on Jammu and Kashmir. In a statement, Ministry of External Affairs said the OIC has no locus standi to pronounce on matters that are strictly internal to India. It said the entire Union Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are integral and inalienable part of India, and no amount of repetition of politically motivated propaganda can change this reality. The Defence Ministry has signed a contract of over 810 crore rupees with Bharat Dynamics Limited for the procurement of 160 satellite smart anti-airfield weapons SAT